0: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वक्ता देवी चित्रलेखा जी के विचार।
1: नारद जी आए हैं, देवी लक्ष्मी आई हैं, बाबा भोलेनाथ भी आए हैं। बाबा भोलेनाथ जी पूरे परिवार के साथ आए, लेकिन अब इनको वहां जगह कौन देगा जाने के लिए? इतनी भीड़ भाड़ में कोई नहीं देखता कौन वीआईपी है कौन नहीं है, सबको ही लगता हम ही आगे बढ़े। दर्शन नहीं करने दिया। बाबा जी ने सोचा अब तो दर्शन नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, दोबारा दर्शन करने आएंगे। तो बाबा भोलेनाथ दोबारा दर्शन करने आए, कब? जब भगवान 4 दिन के थे। बड़ा अद्भुत वर्णन है, ध्यान से सुनिएगा। आज ठाकुर जी 4 दिन के हैं, 4 दिन का लाला है, बड़ा सुंदर रूप है। भोलेनाथ जी पहुंच गए, आकर के मैया के द्वार पर सबसे पहले कैलाश से निकले हैं बाबा भोलेनाथ। कैलाश से निकल ही रहे थे कि इतने में ही पार्वती जी ने आवाज दिया, अरे अजी कहां जा रहे हो? माताओं बहनों का ये थोड़ा सा स्वभाव होता है, जब पतिदेव किसी काम से बाहर निकले ना तो भले बात नहीं करेंगे, लेकिन जब निकलने ही वाले होंगे तब जरूर कहेंगे, अजी जा रहे हो, अच्छा आते टाइम 2 किलो आलू ले आना। तो चलते टाइम मैया टोकती जरूर है। तो भोलेनाथ जी बोले, कहीं नहीं, वो क्या है ना, लाला का जन्म हुआ है नंद महल, तो उनके दर्शन करने जा रहा हूं। पार्वती जी बोले, ऐसे दर्शन करने जा रहे हो? रूप देखा अपना, कोई घुसने नहीं देगा? नंद बाबा की सिक्योरिटी बड़ी टाइट रहती है, आपको मालूम है वहां कोई घुस नहीं सकता बिना आज्ञा को। ऐसे रूप से आपको कोई घुसने देगा वो तो भला हो, जो ब्याह पे आप ऐसे आए हो, मेरे माता पिता ने आपको ऐसे ही ब्याह दिया। क्योंकि भोलेनाथ जी तो भोलेनाथ जी है, ब्याह में देवताओं ने खूब काम हराज, थोड़ा आज तो थोड़ा सा ड्रेसअप चेंज कर लीजिए। जैसे कैसे कर लेंगे, किसी को अपनी छोरी देनी हो तो ऐसे ही दो जैसे हम हैं, हम किसी के लिए नहीं बदलने वाले। वही सांप सब पूरे गले में लटकाए, बोले महाराज कम से कम घोड़े पे तो बैठ जाओ, और कुछ नहीं तो कम से कम घोड़े पे बैठ जाओ। बाबा भोलेनाथ कहते, हमको घोड़े वोड़े की जरूरत नहीं, हमारा नंदी है, यही हमारा साथी और यही अंत तक साथ देगा, हम तो इसी पे बैठ के जाएंगे। नंदी पे बैठ गए, और नंदी पे भी बैठे उल्टा मुंह करके, इधर की तरफ मुंह करके, और बारात लेके जा रहे। देवताओं ने सोचा कि अजीब, ये तो शंभू हैं, इनको तो ना सम्मान से मतलब ना अपमान से, लेकिन अपमान तो हमारा होगा कि देखो देवता किसकी बारात में आए। इसलिए देवताओं ने क्या किया, बोले ये पीछे आते रहेंगे, हम सब पहले पहुंच जाते, और दूल्हा को छोड़ के ही सारी बारात आगे बढ़ गई। बाबा भोलेनाथ ने देखा ये तो छोड़ के चले गए हमको, अब हमारी बारात का क्या होगा? भोलेनाथ जी ने कहा, चिंता मत करो, हमारे पास बरातियों की कमी नहीं। उठाया डमरू और एक बार बजाया, डमरू बजाते ही दुनिया में जितने शमशान के भूत प्रेत हैं सब बाबा भोलेनाथ के सामने प्रकट हो गए। बोले कहिए महाराज, बोले कहिए नहीं, तैयार हो जाइए, बरात में चलना है। तो बोले महाराज हम तो तैयार हैं एकदम। और कैसे तैयार है? कोई है किसी का मुंह ही नहीं है, कई है किसी के 4-4 हाथ हैं, किसी के 10-10 पांव हैं, ऐसी अद्भुत बारात बाबा भोलेनाथ चल पड़ी। अब जैसे पहुंचे, बारात पहुंची हिमालय राजा के घर, तो सारी सखियां और सारी माताएं बाहर खड़ी थी आरती थाल लेके, बोले बारात आ रही है, दामाद जी आ रहे होंगे। सबसे पहले बरातियों की लाइन में चल रहे इंद्र देवता, लगा अरे वाह वाह वाह क्या बात है, कितना सुंदर दामाद मिला है, इसका रूप तो देखो। देवता बोले नहीं जी नहीं, ये दामाद जी नहीं, ये दामाद जी तो पीछे आ रहे हैं, ये तो दामाद जी के दास हैं। सखिया बोली, जब दास इतना सुंदर सौंदर्यवान है तो मालिक कितना होगा? तो बोले चिंता मत करो, आ ही रहे, देख ही लेना आप, वो भी बस पीछे ही पीछे बस पहुंचने ही वाले हैं। फिर आया कामदेव, बड़े बड़े सौंदर्य को पछाड़ दे ऐसा कामदेव, फिर आरती की थाली लेके खड़ी हो गई, मैना जी कि दामाद जी आ गए। दामाद बोले ये भी नहीं है दामाद जी, ये तो बस उनके यहाँ थोड़ा बहुत कोई झाड़ू पोछा का काम कर लेते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ। अच्छा अब तो बस बस आ जाए दामाद जी, कैसे भी एक बार झलक देख ले कैसे दामाद जी। नारद जी ने ऐसा कौन सा अद्भुत दामाद बता दिया हमें। नारद जी ने ही विवाह का प्रस्ताव रखा था। अब देवताओं की बारात खत्म हुई और भोलेनाथ जी की बारात हुई चालू। डम डम डम डम।

अरे माता जी नहीं, आपकी सासू जी है। बाबा बोले, सासू कौन सा पदार्थ होता है? ले बाबा पूछो मत, बड़ा अद्भुत पदार्थ होता है, आपको इन्हीं से लेना देना है, आगे यही अपनी छोड़ी देंगे। अपने ब्याह में ये नहीं बदले। पार्वती जी कह रही हैं, आज जब मिलने जा रहे हो ठाकुर जी से, तो आज तो कम से कम अपना रूप बदलो। बाबा को लगा कि बात तो ठीक कह रही है पार्वती, क्या पता कोई घुसने दे नहीं घुसने दे। बाबा ने तुरंत कपड़े बदले, धोती पहनी, पगड़ी बांधी, गले में मोतियों की माला पहनी, चलने ही वाले थे कि तभी अपने गले से नाग उतार रहे थे, तभी एक नाग फुसफुसा के हाथ जोड़ करके कहता, बाबा जी एक प्रार्थना है, कहूं अगर आपकी आज्ञा हो तो। बाबा जी बोले, हाँ बिल्कुल कहिए, क्यों नहीं। ए बाबा जी, छोटी मुंह बड़ी बात है, लेकिन देखो हमने एक बात सुनी है संतों के मुख से कि जब भगवान के सामने जाओ ना भगवान का दर्शन करने, तो दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसे आप हो वैसे ही जाना चाहिए, और हो कुछ और बन के कुछ और जाओगे तुम्हारा उससे तो कोई लाभ नहीं है। बाबा भोलेनाथ बोले, वाह मेरे बेटे, ये तू ही मेरा सच्चा साथी और मैं तुझे ही छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसे कैसे जा सकता हूँ। बोले बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो पार्वती की बातों में फंस गया, तुरंत अपने वो कपड़े उतारे और वही भस्म लगा के मुंडों की माला पहन के, और बाबा एकदम तैयार, अब तो यही रूप में जाएंगे, दर्शन करा दे तो करा दे, नहीं कराए तो वो जाने। और लेके अपना त्रिशूल बाबा भोलेनाथ आ गए मैया के घर, और आकर के जोर जोर से आवाज लगाई, अलख निरंजन अलख निरंजन, अरियो मैया दरवाजा खोल दरवाजा खोल। मैया को लगा कोई द्वार पर साधु आए, गोपी को कहा, दासी को कहा, अरे जरा जइयो देखियो कौन बाबा जी आयो द्वार पे। गोपी दौड़ के गई, जाके देखा, बोला मैया एक ऐसो बाबा जी आयो, ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी देखियो होगो मैया तेने, ना कभी देखेगी। ऐसो कौन सो बाबा जी आगो, बोले मैया तू ही चली जा। मैया बड़े भाव से गई द्वार पर, संत आए घर में तो इससे बड़ा क्या हो सकता। मैया पहुंच गई, और जैसे मैया बाहर गई बाबा का दर्शन किया, बस मैया खड़ी खड़ी कांप रही है। बोले बाबा जी कहां थे पधारे हो? बोले मैया बड़ी दूर से आए हैं, हिमालय की गुफा में थे आए। अच्छा बाबा जी कहां लोगे, भोजन पाओगे कि सोना लोगे कि चांदी लोगे, कहां लोगे? बोले अरे मैया, तो को हमारे स्वरूप पे देख के लग रहे हो कि हमको सोने चांदी की जरूरत है? अरे मैया हमको सोने चांदी की आवश्यकता नहीं, तो फिर बाबा कहाँ चाहिए? ले मैया मैं तो बड़ी दूर से तेरे लाला को दर्शन करने आयो, मैं तेरे, हमने सुनो है तेरे घर लाला भयो है, एक बार वाको हमको दर्शन करवा दे। मैया ने कही, कहा बाबा आपके कहियो, कहा मांगने आयो तू? बोले मैया मांग नहीं रहे हो, तेरे लाला के दर्शन की इच्छा लेके आयो। मैया बोली, बाबा देख तू जो कहेगो मैं तो कु दे दूंगी, तू कहेगो मुकु मैया एक बड़ो महल दे दे तो बाबा महल भी दे दूंगी, पर अपने छोरा के दर्शन नहीं करूंगा। बाबा बोले नहीं कराएगी, क्यों नहीं कराएगी? मैया बोली, बाबा तेने अपनो रूप देखियो है, तेरे रूप पे देख के मो 80 बरस की बूढ़ी डोकरी है, डर लग रहे है, तो मेरे 4 दिन के छोरा की का हालत होगी? इतनो छोटो सो लाला और तेरे सामने लाऊं, कहां पर तो तेरे गले में ते कोई सांप सपूर उतर के मेरे छोरा पे चढ़ गए तो। अरे मैया तू नहीं जाने, तेरो छोरा ऐसो वैसो नहीं है, सांपन ते नहीं डर पे वो। अरे मैया वो तो सांप पे सोवे है, और कहा बताऊं मैया, आगे भविष्य में चल के तो वो 100 पनवारे सांप के ऊपर नाचेगो, सांप तो वाके वश में रहे। मैया बोली, बाबा मेरो छोरा जो है ना, ग्वारिया को छोरा है, सपेरा को छोरा नहीं है कि सांपन पे नाचेगो। और वैसे भी बाबा है सके तेरे, जहाँ तू आयो है, जहाँ लाला ते मिलने आयो है, शायद तू गलत एड्रेस पे आ गयो, कहीं और जानो चाहिए तो, क्योंकि मेरे घर में जो लाला रहे ना, वो सांप वापन ते नहीं खेले, वो तो 4 दिन को लाला है, भूख लगे तो रोवे।

0: हंसे बात करे तो बाबा लगे तू गलत जगह आ गया।
1: बाबा बोले, नारी मैया
0: मैं गलत जगह नहीं आयो, एकदम सही जगह आयो, तेरे लाला के दर्शन करने आयो हूँ। भैया बोली, या ब्रज में बहुत लाला है, जा काई के भी दर्शन कर ले। बाबा बोले, ना दर्शन तो तेरे ही लाला के करूंगा। भैया बोली, देख बाबा तू हमको जाने नहीं है, हम बड़ी हटीली अम्मा है, एक बार अगर जिद कर ली ना तो फिर हमारी बात से हम हटेंगी नहीं। बाबा बोले, तो मैया तू भी हमको नहीं जाने, हम भी बड़े हटीले बाबा हैं, एक बार तेरे आंगन में धूनी रमा के बैठ गए ना तो सब दास दासियों को भी लगा दे तो भी हटेंगे नहीं। मैया यशोदा बोली, बाबा तू धूनी रमा च धूना रमा, मैं तो को दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाबा बोले, कब तक नहीं कराएगी, कभी तो अपने छोरा को बाहर लेके आएगी दरवाजे पे ते तब देख लूंगो। मैया बोली, मेरे घर में एक नहीं कितने दरवाजे कितने द्वार है, कहीं से भी ले जाऊंगी पर जहां तू बैठे होगो वहां ते नहीं लेके जाऊंगी। बाबा बोले, अपने छोरा को खेलवे तो बाहर भेजेगी? बोले, नहीं भेजूंगी, या के ग्वाल बालन को घरन में ही बुला लूंगी पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले, अपने छोरा को ब्याह तो करेगी, ब्याह करेगी, छोरा घोड़ी पे तो चढ़ेगो तब तो बाहर निकालेगी घर से, तब दर्शन कर लूंगो। मैया बोली, छोरा कुआरो रख लूंगी पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले, बड़ी हटीली अम्मा है, हम तो सोचे हम ही है जो कछे पर ये तो हमारी गुरु है। अच्छो तुम्हें, हम भी यही बैठे, जब तक दर्शन नहीं कराएगी हटेंगे नहीं, अंतिम सांस तक मर जाएंगे पर यहां से हटेंगे नहीं। मैया बोली, बैठो रे, मैं अपनो काम धंधो संभाल। और मैया भीतर चली। भोलेनाथ जी ने सोचा कि तो गड़बड़ है, मैया तो पूरी एकदम पूरे रोल में है, ये तो दर्शन नहीं कराएगी। फिर सोचा कि चलो जिनसे मिलने आए हैं थोड़ा सा उनसे भी तो अप्रोच लगा लें, कुछ क्या पता काम ही बन जाए। भोलेनाथ जी मन ही मन ठाकुर जी को कहते, अरे प्रभु ये कोई बात हुई, हम इतने दूर से आपका दर्शन करने और आप भीतर झुक के बैठ गए, अरे कुछ लीला करके कुछ एक बार कुछ करो ना। अब बेचारे ठाकुर जी बीच में फंस गए, एक तरफ मैया एक तरफ बाबा, किसकी माने। लेकिन बाबा, अरे बाबा अगर दर्शन करना है तो कुछ दिन बाद आ जाते, हमको थोड़ा बड़ा हो जान देते, कुछ बोलते, हम अपने पांव से चल के बाहर आ जाते, अब तो चार दिन के कुछ कर भी नहीं सकते रोने के अलावा। बोले, हाँ प्रभु बस यही कर दो, यही करो, यही नाटक आपका सबसे बढ़िया रहे। बोले, क्या? बोले, रोना आरंभ करो। ठाकुर जी ने सोचा ये एकदम बढ़िया नाटक रहेगा, और श्री ठाकुर जी ने पल्ले में पड़े पड़े रोना आरंभ किया, रोना आरंभ किया, जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। अब देखो कभी कभी बच्चे रोते हैं ना, एक तो होता सचमुच रोना, एक होता नाटक करके रोना। एक नाटक करके जब बच्चे रोते हैं ना तो बड़े ट्यून में रोते हैं, इसका मतलब पक्का नाटक कर रहा है, वो एकदम रिदम में रोते हैं, एकदम ताल में। तो ऐसे ही ठाकुर जी रो रहे हैं। अब जैसे रोने की आवाज आई तो आवाज बाहर गई, अब बाहर गई तो एक गोपी बाहर से भीतर आ, अरे मैया कहा कर रही है, तो कु तो लगे छोरा भी पाल लो नहीं आवे, देख छोरा रो रहा है और तू आराम से बैठी है। मैया बोली, गोपी कहा करो? बोले, रो रहे हो है तो या कछु दूध पिला, कछु माखन मिश्री खिला। मैया ने दूध पिला दियो, अब भी चुप नहीं हुए। मैया खिलौना लेकर के झनझन झन हिलाई, तब भी चुप नहीं हुए। मैया ने पल्ला में झुलाए, तब भी चुप नहीं हुए। गोपी तो चुप ही नहीं है, अब कहा करे। गोपी बोली, मैया मोकु तो लगे तेरे छोरा पे काई गोपी ने नजर लगा दी, क्योंकि मैया भूखो हो तो दूध भी पिला दियो चुप है जातो, मैया कछु खेल खिलौना चाहिए तो चुप है जातो, पर मैया ये तो काई गोपी ने नजर लगाई है। मैया बोली, अब कहा करे? बोले, कहा करे का नजर उतारो या की? बोले, कैसे नजर उतारे? बोले, जा रसोई ते वो लेके आ, राई नोन लेके अभी तड़के। मैया गई, नमक लाई, राई मिर्ची लाई, और लाला की नजर उतारी। आय की पलाय की अड़ोसन की पड़ोसन की भूतनी पिसाचनी यहाँ की वहां की इधर की उधर की सब मेरे लाला के ऊपर से उतर जाए। अब नजर उतारी, अब नजर उतारने के बाद तो कान्हा कम रोने चाहिए पर ये और उल्टा डबल हो गए और जोर जोर से रोने लगे। गोपी अब कहा करे, ये तो अब भी चुप नहीं हुए। अब गोपी नए नए आइडिया देती जा रही है। बोली मैया देख दूध भी पिला दियो तब भी चुप नहीं भयो, या को खिलौना भी दियो तो भी चुप नहीं हो, नजर उतारी तो भी चुप नहीं भयो। अब तो मैया वो पक्की पतो चल गई बीमारी कहा है। मैया बोली कहा बीमारी है, बड़ी भयंकर बीमारी है मैया। अरे पर बीमारी है का? बोले मैया मोकू तो समझ आ गई या के ऊपर कोई भूतनी चढ़ गई। ओ मैया अब आप भूतनी को उतारवे के खातिर जब तक प्रयास नहीं करोगी तब तक ये छोरा चुप नहीं होगा। अरे गोपी भूतनी चढ़ गई है तो भूतनी कैसे उतरेगी? बोले मैं थोड़ी उतारूंगी, वाकई यहाँ तो कोई बाबा जी कोई तंत्र मंत्र जानने वालों कोई बुलानो पड़ेगा वो भूत उतारेगा। तो गोपी अब कौन को बुला के लाए, मैं तो काय को जानू नहीं हूँ, भूत प्रेत मो तो पतो भी नहीं कैसे रहे। गोपी बोले मैया टेंशन मतलब मैं हूं ना, अभी काय को बुला के लाती हूँ। तुरंत घर से निकली थी कि दरवाजे पर बाबा भोलेनाथ धूना रमा के बैठे। गोपी ने देखी नजदीक गई, बाबा का रूप भी कुछ तंत्र मंत्र जैसा ही है तो जाके पूछी बाबा एक बात बताओ तुमको भूत उतारने आते हैं? बाबा बोले पहले ये बताओ किसको चढ़े उस पे डिपेंड करता है। बोले हमारी मैया है ना वह को लाला है चार दिन को बड़े जोड़ते रो रहे हो, हमने सोची कोई भूत चढ़ रहे हैं तो भूत उतारवे वारो कोई बाबा चाहिए तो तुम तो सीधी बात पे आओ ना, तुम बताओ तुमको आते हैं कि नहीं आते। बाबा बोले हाँ, मन में सोचा कि उधर से नाटक चालू हो चुका अब तुम भी कर दो। बाबा जी बोले अरे गोपी क्या बात करती है तू, हमसे पूछ रही भूत उतारने आते कि नहीं आते? अरे गोपी मेरो तो नाम ही भूतनाथ है, मैंने ऐसे बड़े बड़े भूत उतारे हैं तेरे छोरा के ऊपर, इतनो कोई बड़ी बात है? अभी लेके आई चुटकी बजाएंगे और सब भूत उतर जाएंगे। गोपी राजी हो गई और खुश होती होती मैया ओ मैया बाबा जी मिल गयो भूत उतार देगो, एक मंत्र पढ़ोगे और सब भूत प्रेत उतर जाएंगे। और कौन सो बाबा जी? बोले मैया कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, यहीं तेरे आंगन में बैठो। मैया बोले ले कराई काम खराब, मैं कब ते वाते लड़ रही हूँ, दर्शन नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी, और तू वाकू जाके क्या ही के छोरा के भूत उतार दे। तेने वाको रूप देखियो है, कैसो रूप है वाको? गोपी बोली मैया तो वाके रूप ते कहा लेनो देनो, तू ला जाके लाला को लेके गोद में दूर ठाड़ी है जाइयो, नजदीक मत जाइयो, और बाबा दूर ते ही मंत्र फूंक देंगे और तेरो लाला एकदम स्वस्थ है जाओ। अब तो को बाबा अपनो अहम ज्यादा प्यारो है या लाला को स्वास्थ्य ज्यादा प्यारो बता। भैया बोली मोको तो लाला प्यारो, तो बस फिर ले अपनी गोद में लाला को और चल मेरे साथ बाहर, डर मत दूर जाके ठाड़ी है जाइयो। माँ यशोदा लाला को गोदी में उठाई, ऊपर से काला कपड़ा ढक दिया, कहीं छोरा को बड़ी भोली है मैया बड़ी भोली है, ढक करके चल पड़ी। आगे बढ़ती बढ़ती डर डर के बढ़ रही है और डरती जा रही है बढ़ती जा रही है, गोपी पीछे से मैया को आगे बढ़ा रही है। वहां भोलेनाथ खड़े हैं, यहाँ ठाकुर जी खड़े, और जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने ठाकुर जी को देखा और श्री बाल कृष्ण लाल ने बाबा भोलेनाथ को देखा और जैसे नजर से नजर दोनों की मिली, मिलते ही श्री ठाकुर जी ने रोना बंद कर दिया, एकदम रोना बंद कर दिया। क्या बोली लगे बाबा जी जानकार तो है, इतनी दूर ते ही मंत्र फूके और छोरा चुप कर दियो। अब मैया को थोड़ा सा और इच्छा जागी और नजदीक जाने की, और नजदीक चली गई बाबा के और पास गई माँ यशोदा मैया से पूछ रही है, मैया बाबा को दर्शन कराती है, बाबा ने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद बोलते हैं कि मैया तेरे झोरा के ऊपर ते भूत

और जैसे मंत्र बोला श्री ठाकुर जी जोर जोर से खिल खिला करके हंस दे। किसी ने पूछा ब्रजवासियों से कि भैया आप बताओ ऐसा कौन सा मंत्र बोला था कान में, तो बोले भैया मंत्र भंत्र कुछ नहीं बोला, चाचा वृंदावन दास जी का पद है और उसमें कहा कि कान में मंत्र नहीं बोला, बाबा भोलेनाथ ने कान में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोल दिया और राधा बोलते ही श्री ठाकुर जी खिलखिला के हंस दी, जोर से हंस दी। भैया बोली हाँ बाबा जी तो बड़ा, देखो अभी तक छोरा रो रहे हो हंसन लगे। अब मैया की इच्छा और बड़ी, अच्छा बाबा एक बात बता, भूत तो तोपे उतारने आवे पर तो को हाथ देखनो आवे भविष्य बतानो आवे। मैया ना ऐसी होती है एक काम में 10 काम करना चाहती है, कोई एक आयोजन हो एक कार्यक्रम हो उसमें एकादशी का उद्यापन भी कर लेंगी, उसमें गृह प्रवेश भी कर लेंगी, एक ही काम में सब हो जाए ऐसा कुछ महाराज मुहूर्त बता दो। तो यहाँ पूछ रही है बाबा से, बाबा अच्छा भविष्य देखना आता है? बाबा बोले क्यों नहीं आता, किसका देखना है? बोले लाला को देखना। बोले वाके ताई तो लाला को मेरी गोद में देना पड़ेगा। मैया बोली ऐसे कैसे, तेरी गोद में कैसे दे दूंगी? बाबा बोले तो ठीक है मत दो हम चलते हैं। बोले ना ना ना ना बाबा रुक रुक जा रुक जा, तेरी गोद में दे दूंगी पर देख बाबा जरा संभाल के अपने नागन्ने ने थोड़ो संवार के रख समझा के रख। बाबा ने लाला को गोदी में लिया और हाथ का दर्शन करते करते बोले मैया अरे यशोदा मैया तेरे तो मैया भाग्य खुल गए, कैसो लाला पायो है तेने मैया, तो कु पतो नहीं तेरो कितनो नाम रोशन करेगो मैया, तो कु पतो नहीं यू बड़ो है के बहुत बड़ो राजा बनेगो मैया, बड़ो है के या के सोने के महल होंगे और तो और मैया हजारों लाखों या के दास दासी होंगे। मैया बोली बाबा मैंने तो कु काम की बात पूछी और तू कहा उल्टी सीधी बात बता तो जा रहे हो, अरे राजा बनेगो नाम रोशन करेगो बड़ो होगो महल बनाएगो तो वो तो याके ना ही होगो, मेरे निया का होगो, मेरे निया भी तो कुछ बता। बाबा बोले मैया तू बता तो कु तेरे निया कहा चाहिए? बोले मोकू तो बस इतनो बता दे कि मेरे घर बहू कब आएगी, मेरे लाला को ब्याह कब होगो। बाबा बोले 4 दिन को तेरो छोरा है, अभी यहाँ पे आंख खोलनी आवे नहीं और तो बहू की पड़ी है। बोले ना ना बाबा अब देखना यू कालो कलूटो सो है तो सारी ब्रज की गोपी कहें कि या को कोई अपनी छोरी नहीं देगो, तो बाबा तू ही बता छोरी नहीं, अब मैंने तो कितने सपने सजाए बहू आएगी मेरे पाम दबाएगी वो को रोज नए नए व्यंजन खवाएगी और बाबा बता ना या को ब्याह होगो भी के नहीं होगो, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है। बाबा ने हाथ देख करके मैया को बता रही मैया कैसी बात करती है तू, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है पूछ रही है? अरे मैया या के हाथ में इतनी लंबी ब्याह की रेखा है कि यहाँ तक नहीं समा रही। बोले मतलब? बोले मतलब मैया तेरे छोरा की 1, 2, 10, 50, 100 नहीं 16,108 ब्याह होंगे। जैसे मैया ने सुनी तो बस वहीं खड़ी की खड़ी। बाबा बोले कहाँ सोच रही है मैया? बोले बाबा न्यू सोच रही हूँ अगर दिवाली वाले दिन मेरी सबरी बहू मेरे पाम छीने खट्टी आ गई तो मेरी का हालत होगी। बाबा वहीं बैठे बैठे मेरे तो 16,108। अरे बाबा काय को पागल बना रहे हो, या कलुआ को तो एक बहू नहीं मिलेगी तू 16,108 की बात कर रहे हो, कौन देगो या को अपनी छोरी? बाबा ने कहा मैया अब जैसा तू सोचे सोच, भविष्य है देख लेना। मैया ने सोचा कि बाबा ऐसे ही मजाक कर रहे, मजाक में बोल दिया, पर मैया उसको मजाक में ले गई, अब उसको क्या पता ये सत्यता है। अच्छो भैया अब मैं चलूं, समय है गयो है, भविष्य बता रहे हैं। ठाकुर जी कहते बाबा जी अब बहुत भविष्य बता लिया आपने, अब आप जाइए कैलाश पर्वत पर, मैया जी आपको याद कर रही होंगी, अब आप प्रस्थान करिए। तो भोलेनाथ जी मैया को प्रणाम करते हैं, कहते मैया अब मैं चलता हूँ। मैया कहती ना ना बाबा तू यहाँ ते मत जा, ब्रज

छोड़ के मत जा। क्यों? क्योंकि क्या का पतो कब मेरे छोड़ा को फिर नजर लग जाए, तो कोई तो चाहिए नजर उतारवे को। तब मैया कहती है, रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब लाल को नजर लगे तू तब तब दर्शन दीजे। यहीं रह जाओ बाबा। और बाबा भोलेनाथ वहीं ब्रज में अपने लाला के सानिध्य में रहे। आज भी ब्रज जाइए, चार स्थान पर चार रक्षक बन करके बाबा भोलेनाथ ब्रज में विराजमान।

0: ये सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के जमाने में कुछ वर्ड हमारे कान में ऐसे आते हैं जो माइंड में स्टक हो जाते हैं। 89.6 रेडियो महारानी पे तुषार है आपके साथ, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं। सिस्टर, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है जो बहुत कॉमन शब्द इंटरनेट के जमाने पे हम सुन रहे हैं, हीलिंग। अब हीलिंग का असली मतलब क्या है, हम शुरुआत यहीं से करते हैं क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हैं जो सोशल मीडिया पे इधर उधर चलते रहते हैं, बट रियल और एक्चुअल मीनिंग आज मैं आपसे जानना चाहूंगा।
1: जी, जो मैं समझती हूँ इसमें सबसे पहले ही लगा है, मींस आप, उसके बाद ऑल लगा है यानी सारा। तो आप अपने आप को सारा ही बिल्कुल फ्रेश कर सके, हील मींस पूरा का पूरा ही अपने आप को अपने ठीक कर लिया है। तो हीलिंग जो शब्द है बहुत ज़्यादा डीप है, जिसमें आपको अपने हायर लेवल को भी हील करना है। हम नॉर्मली समझते हैं कि फिजिकल जो पार्ट है, चलो और डीप हम आज जाने लगे हैं, हम EQ तक पहुंच चुके हैं, इमोशनल क्वेश्चन, जिसमें लोग इमोशंस के बारे में जागरूक हो चुके हैं और इमोशंस को हील करना चाहते हैं। लेकिन इससे भी और ऊपर जाने की जरूरत है अभी हमारे समाज को, जिसमें हम स्पिरिचुअल क्वेश्चन की बात करते हैं। जहां हम स्पिरिचुअली अपने आप को हील कर लेते हैं तो फिजिकल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इमोशनली अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको टैकल करने में हम काफ़ी हद तक बहुत सशक्त हो चुके होंगे, एम्पावर्ड हो चुके होंगे। और इसीलिए हीलिंग जो वर्ड है ये बहुत डीप है, इसको सिर्फ हल्के में ना लीजिए।
0: थैंक यू सो मच सिस्टर, पहले तो ये टॉपिक पे इतनी ब्रीफली हमको यहाँ पर बताने के लिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया का ज्ञान है वो मुझे लगता है आधा अधूरा ज्ञान है, और जो आपने यहाँ पर हमें एक्सप्लेन किया हीलिंग के बारे में वो एक कंप्लीट पैकेज के साथ, और जितने लिसनर्स हैं उन्हें बहुत हेल्प करेगा उनकी इस हीलिंग जर्नी में आगे। बट इससे रिलेटेड बहुत सारे और क्वेश्चन हैं जो मेरे माइंड में हैं, जो कुछ गानों के बाद, कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स के बाद हम अपने लिसनर्स के सामने रखेंगे, ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

मेरे ओपिनियन में स्ट्रेस की कोई भी मेडिसिन नहीं हो सकती। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ और मेरे साथ हैं सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया। सिस्टर, स्ट्रेस और एक इमोशनल पेन, ये दो टर्म्स हम अब इंटरनेट के जमाने में या गूगल सर्च के जमाने में हम बहुत सुन रहे हैं, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसकी कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है कि हमने दवाई दी और स्ट्रेस दूर हो गया, या हमने दवाई दे दी तो हमारा इमोशनल पेन जो है वो दूर हो गया। बट क्या मेडिटेशन वो टूल बन सकता है जो आपके इमोशनल पेन या स्ट्रेस को हील कर सके? क्योंकि हम हीलिंग की बात कर रहे हैं तो इसलिए ये टॉपिक।

0: ते ही अगर किसी ने कोई बात ऐसी कह दी तो वो हमें फील हो जाती है। अब उस फीलिंग से बचने के लिए अब हमारे को कैसे हम उससे बाहर आए, तो उसके लिए मेडिटेशन बेस्ट जो है वो टूल है कि हम उस समय पर अपने आप को कुछ ऐसी अफर्मेशन दे कि वो नेगेटिव जो बात मेरे पास आई है, जो मुझे फील हुई है, उसको हम छोड़ सके और अपनी हीलिंग की तरफ जाए। कुछ समय पहले ऐसा हुआ था, एक बहन जिसको कैंसर पेशेंट रही है, उन्होंने अपने, वो बहुत अच्छी डांसर रही, तो वो जब भी बैठती थी मेडिटेशन में, वो ये कहते थे कि मैं अपने कैंसर के जो जर्म्स हैं, जो कीटाणु हैं, उसको मैं ऐसे देखती हूँ कि ये असुर हैं और मैं देवी हूँ और मैं इनको मार रही हूँ और ये ख़त्म हो रहे हैं। और सच में ये उसने अपने कैंसर पर जीत पाई। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ उसके थॉट ने काम किया, लेकिन मेडिसिन भी अपना काम कर रही थी, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ उसकी जो थॉट थी, जो उसने हील के लिए प्रोसेस किया, और वो स्पेशली मेडिटेशन के ही टाइम पर जब वो मेडिटेट करती थी तभी वो अपने आप को ये थॉट देती थी कि मैं जो हूँ वो देवी हूँ और इन जो है जम्स को असुरों की तरह मैं मार रही हूँ। वो उस चीज़ को विजुलाइज करती थी और जैसे जैसे विजुलाइजेशन थी, टाइम कम टाइम में उसने अपने आप को हील कर लिया। तो मेडिटेशन तो बेस्ट टूल है।
1: इसका एक एग्जांपल हमने शायद स्कूल की टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, एक लास्ट लीफ करके एक पोइट्री होती थी कि वो एक पेशेंट था, वो बहुत बीमार हॉस्पिटल में था, तो उसने होप छोड़ दी थी, तो एक पेंटर ने उसके बेडरूम के सामने वाली दीवार पे एक आर्टिफिशियल पत्ती बना दी थी, लीफ बना दी थी, और ये कहा था कि जब तक ये पत्ती झड़ेगी नहीं तुम नहीं मरो, और वो पत्ती कभी झड़ती नहीं क्योंकि वो पेंट था, तो इसी बहाने वो सर्वाइव करके निकल आया।
0: वही थॉट था जो थॉट ने उसको हील कर दिया।
2: वैसे तो देखिए, आपका जो इमोशनल पेन है या आपका जो स्ट्रेस है वो पूरी तरह से कोई चीज रिलीफ नहीं कर सकती है, बट हाँ आपको थोड़े टाइम के लिए उससे दूर मेडिटेशन ले जा सकती है, जो यहाँ पर सिस्टर्स की बात से मेरे को लगा, और अगर हम उसे अपनी हैबिट बना लेंगे तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए मेडिसिन का काम भी करने लग जाए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

Hello everyone, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. To हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज़ नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी. अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफस्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है. तो व्हाटएवर द लाइफ ही इज चूजिंग उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा. और उसके मन में जो भी सवाल है एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ. थैंक यू.

0: आज मैं एक टिपिकल ह्यूमन इमोशन या ह्यूमन नेचर की बात आपसे करने वाला हूँ। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ, सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया इस वक्त मेरे साथ हैं यहाँ पर। सिस्टर, एक हीलिंग टर्म के साथ मैंने चीज और सुनी है कि इंसान जो होता है ना, वो बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे आके चीजें करने की आदत रखता है। तो हीलिंग के साथ भी सेम प्रोसेस होता है, जब वो बहुत बाल्टी में पानी ऊपर तक भर जाता है इमोशंस का, तब वो सोचता है कि नहीं, अब मैं हीलिंग को अपना लूं। बट तब तक क्या लेट हो चुका होता है? और ये हीलिंग प्रोसेस जो है वो एक इंसान की लाइफ में रेगुलर प्रोसेस होना चाहिए या वन टाइम में काम हो जाता है?
1: आज कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, क्योंकि वो खुद ही भरे हुए हैं और हम उनके आगे ही जाके ड्रेन आउट हो रहे हैं, जो पहले ऑलरेडी फुल हैं उन्हीं चीजों से जिनसे हम भरे हुए हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है पहले अपने लिए एक अच्छा बेस्ट अपना फ्रेंड बन जाएं, अपने आप का खुद का दोस्त बने। और दूसरा, हमें सबको, और हम सब भारत में हैं या किसी भी आप जगह पर जाके देखें तो सब जगह पर सबसे पहले गॉड को याद किया जाता है, परमात्मा को। दूसरा हीलिंग सोर्स, हमारी बातें सुनने वाला वो परमात्मा है। हम उन दोनों को छोड़ करके हम लोगों को हम सुना रहे हैं, इसीलिए आज हम शायद हीलिंग हो ही नहीं हो रही है, हमारी हीलिंग हो ही नहीं रही है। कहीं ना कहीं हम अपने आप को और ज्यादा, जिसके पास भी जाते हैं वो अपनी सुनाना शुरू कर देता है, हम भी बड़े परेशान हैं, हम भी बड़े दुखी हैं, हम भी ऐसे हैं, तो वो चीज़ हमें और इरिटेट कर देती है। इसलिए सुबह उठ करके सबसे पहले अपने आप से बातें करें, अपने आप को हील करें कि नहीं, मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई है, जो भी चीज़ें हैं मुझे वो सॉर्ट आउट करनी है। अपनी बातों को डायरी पे नोट करें, जो डायरी लिख सकते हैं वो लिखे, नहीं है तो जिसे भी आप अपने आप को ईष्ट मानते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, उसके पास जा कर के अपने मन की सारी बातें कर दें, तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा एक सोर्स मिलता है जो कहीं पर आपकी बात को बोलेगा भी नहीं, आपको सोल्यूशन भी उसका कहीं ना कहीं से अरेंज करके देगा। वो भले खुद नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन हमें देता है। और दूसरा, अपने आप के साथ पहले पॉजिटिव हों, हम अपने लिए नेगेटिव हैं, पहले अपने अच्छे दोस्त बने, फिर हमारे से अच्छा हीलिंग और कोई नहीं कर सकता।
0: वो एक कहावत आपने सुनी है कि एक आर्ट भी तब निखर के आती है जब आर्टिस्ट उसकी प्रैक्टिस करता है, तो सेम हीलिंग है। हीलिंग की अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आप सोचेंगे आप एक दिन में हील हो जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को वो पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

0: अब जो बात होने वाली है ना उसे आप बिल्कुल भी स्किप या मिस नहीं कर सकते हैं, वरना तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ और सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया से मैं अब यही जानना चाहूंगा। सिस्टर, आप हीलिंग प्रोसेस में या मेडिटेशन प्रोसेस में एक लंबे समय से हैं, तो क्या वो प्रो टिप्स आप अपनी तरफ से आज हमारे लिसनर्स को देना चाहेंगी उनके हीलिंग जर्नी के लिए या उनकी मेडिटेशन जर्नी के लिए? अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं या वो स्टार्ट कर चुके हैं बट वो कहीं फंस जा रहे हैं या रुक जा रहे हैं, तो उन्हें क्या ऐसी चीजें अपनानी चाहिए जो उनके लिए ये जर्नी थोड़ी आसान हो जाए?
1: बहुत अच्छा ये स्टेप तो मैं बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज़ कहूंगी कि जैसे अभी आपने कहा हम भाग रहे हैं,
2: हाँ।
1: तो भाग रहे हैं लेकिन भागते भागते भी जब हम बीमार होंगे तो क्या करेंगे? फिर रुकना पड़ेगा,
2: हाँ।
1: रुकना पड़ेगा ना। अगर हमें रुकना ही नहीं है, हम ये चाहते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपनी लाइफ में पॉज देना ज़रूरी है। और हर एक चीज़ के लिए, जैसे कोई भी बीमारी को हील करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, डॉक्टर दो चीज़ देते हैं, एक मेडिसिन और दूसरा आपकी कोई ना कोई परहेज बताते हैं कि आप इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। तो सेम हमारे अगर माइंड को हमें हील करना है और बहुत तेज़ गति से भागना है तो हमें कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है। वो अवॉइड क्या करना है? सिर्फ अपने नेगेटिव थाट्स को। और किन चीज़ों को लेके आना है? तो पॉजिटिव थाट्स, पॉजिटिव कुछ भी। भागते भागते भी आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि पहले तो लोग मेडिटेशन को ये सोचते हैं कि हमें शायद कहीं जाके एकांत में बैठना पड़ेगा, हमें छोड़ना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें भागना पड़ेगा या हमें छोड़ना पड़ेगा या हमें अपनी डेली रूटीन लाइफ से कुछ अलग करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने मन को कुछ ऐसे थॉट देने हैं जो कि हमें हील कर सके। इस चीज़ को सभी लिसनर्स के लिए मैं यही कहूँगी कि सब लिसनर्स सुबह उठते ही अपने लिए कुछ पांच अच्छी बातें बोलें। वो है कि आप एक पावरफुल सोल है, आप वो कर सकते हैं, पहला थॉट। दूसरा, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये थॉट मुझे उस काम को करने के लिए एक इंस्पिरेशन देते हैं। मेरे आसपास सभी लोग बहुत अच्छे हैं। जब हम इस थॉट को लेकर के आते हैं, आप पूरे दिन में आपको पता है चैलेंजेस आने हैं, तो आपको थॉट सुबह क्या देना है? आज जो भी चैलेंज आएंगे, मुझ में भगवान ने इतनी शक्ति भरी है, हम सब कुछ फेस कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ थॉट हम सब अपनी लाइफ में, किसी के सामने एग्जाम है और उसको एग्जाम पास आउट करना है, बच्चा है कोई एग्जाम देने जा रहा है, तो उसको माइंड में सुबह उठ के कि मैं जो भी आज एग्जाम आएगा मेरे को वो सारा आता है, बहुत इजी आएगा, आप मन को थॉट दें। तो ऐसे कुछ थॉट हम दें तो आप देखें अपनी लाइफ को आप कितना स्मूथ बना लेते हैं।
0: थैंक यू सो मच सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनको ये टिप देने के लिए, उन्हें हमेशा मोटिवेट रखने के लिए। और आज ये टॉपिक जो हीलिंग था, मुझे लगता है इससे बहुत सारे लोगों को एक पॉजिटिव चेंज उनकी लाइफ में मिलेगा। बट कल हम एक और नए टॉपिक के साथ सुबह 6 बजे यहीं पर 89.6 रेडियो महारानी पर आपका भी वेट करेंगे। कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

गुड मॉर्निंग फरीदाबाद, तुम्हें देखिए ट्यूसडे को बाय बाय कर दिया है और अब आ गए हैं वेडनेसडे में। और देखिए अभी वीकेंड थोड़ा सा दूर है, लेकिन टेंशन क्यों लेनी है, अंशली ऑन एयर है ना। तो देखिए आज मिलने वाला है आपको एंटरटेनमेंट का डबल डोज, वेदर, ट्रैफिक, फरीदाबाद की लोकल अपडेट से लेकर बॉलीवुड बस से लेकर हेल्थ का फंडा, तो सब कुछ लेकर आ गई हूँ मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर। तो देखिए बातें तो बहुत सारी है, लेकिन बातों को ना एंजॉय करने के लिए गर्मा गर्म चाय तो चाहिए ना। तो फटाफट से जाइए गर्मा गर्म चाय की गर्मा गर्म सिप लीजिए और एंजॉय कीजिए आज का ट्रैक, और साथ ही एंजॉय कीजिए सॉन्ग जो है खास आपके लिए मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस। ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766220036।

हेलो हेलो जी, तो चलिए बात कर लेते हैं मौसम की। और अगर मौसम की बात करूँ ना, तो भाई देखिए, मौसम का मूड आज थोड़ा सा मॉनसून वाला है। यानी कि आज आपको क्लाउड, कभी कभी आपको धूप भी मिलेगी और कभी मिलेगा आपको थंडरस्टॉर्म की एंट्री। तो सब कुछ आपको आज के दिन ही मिलने वाला है। और देखिए, अगर आज के हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करूँ 34 डिग्री रहने वाला है। इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 28 डिग्री है और विंड स्पीड भी आपको अच्छी खासी मिलने वाली है और ह्यूमिडिटी भी है आज 73%। तो बेसिकली डे आज मिक्स रहने वाला है, ह्यूमिड भी बहुत सारा मिलने वाला है। तो अपने साथ अम्ब्रेला, रेनकोट जरूर कैरी कीजिएगा। और अगर घर से बाहर जा रहे हैं ना, तो मूड अच्छा करके जाइएगा, क्योंकि ये जो मौसम है ना, ये आपका मूड थोड़ा सा खराब कर सकता है। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: हाय, आई एम डॉक्टर नितीश दीवान। आई एम प्रेजेंटली वर्किंग एज अ कंसल्टेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन एट अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद। वार्म अप एटलीस्ट 5 to 10 minutes मिनिमम होना ही चाहिए रनिंग से पहले। उसमें आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, जेंटल स्ट्रेचेस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हाइड्रेशन का है। हाइड्रेशन कंसिडरिंग डिपेंड करेगा मौसम कैसा है, गर्मी कितनी है, पर्सन टू पर्सन वेरिएबिलिटी है, उनको स्वेटिंग कितना आता है। हाइड्रेशन के लिए ये भी चीज़ फोकस करना जरूरी है, ये सडनली कोई न्यू एनर्जी ड्रिंक्स या कोई और ट्रायल नहीं करना है। जो रूटीन में आपका हाइड्रेशन की स्ट्रेटजीज है उसी को फॉलो करें।
0: डॉक्टर कॉलिंग।

0: सब कुछ स्मूथ चल रहा था। पूजा, जो प्रेम के भाई राजेश की पत्नी थी, एक ड्रामेटिक एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है और फिर होता है संस्कार वर्सेस प्यार का महायुद्ध।
1: मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है।
0: लेकिन राजश्री की फिल्म में ड्रामा ना हो ऐसा

बड़ी सिक्योरिटी है, नहीं बताता ना, कैसे ही पता होगा। सोशल मीडिया की दुनिया में हम इतना ज्यादा खो जो रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड को आजकल हकीकत समझ रहे हैं। चलिए फिर अब वक्त हो गया है आपको सोशली स्ट्रांग बनाने का, यानी कि आपको डिजिटल स्कैम के बारे में बताने का। और आज का स्कैम ये बताने वाला है कि अगर आपको कभी भी कोई कॉल करके खुद को सीबीआई, पुलिस, ईडी या फिर आईबीआई का ऑफिसर बताए तो उनकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिएगा, बिकॉज ये लोग कभी भी आपको डायरेक्ट कॉल करके ये नहीं बोलते हैं कि एक ही जगह पर बैठ जाइए। जी बिल्कुल, आज मैं बात कर रही हूँ डिजिटल अरेस्ट की, यानी कि एक ऐसा अरेस्ट जो सबसे पहले आपको कॉल करता है, और ये सिर्फ नॉर्मल कॉल नहीं, ये वीडियो कॉल हो सकता है। और वहां पर आपको बोला जाता है कि आपको स्पेसिफिक एक रूम के अंदर रहना है, एक ऑफिस के अंदर रहना है, यानी कि आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है। आप कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, इवन कुछ दिनों के लिए घर से बाहर नहीं जा सकते। जो भी एक्टिविटी है आपको इस वीडियो कॉल पर ही करनी पड़ेगी। तो अगर इस तरह का कॉल आपको आया तो समझ जाएगा ये एक तरह का डिजिटल अरेस्ट है, बिकॉज कभी भी ईडी या फिर आरबीआई के ऑफिसर्स आपको कभी कोई कॉल ही नहीं करते हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, अगर मैं डिजिटल अरेस्ट की बात करूं तो इंडिया में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी लीगल प्रोसेस होता ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्कैम है, और स्कैमर्स का एक नया तरीका है पैसे ठगने का। हाँ जी, तो ये तो बता दिया कि किस तरह का स्कैम मार्केट में आ गया। अब आपको क्या करना है ये जरूर सुनते हुए जाइए। अगर कोई भी कभी भी इस तरह का कॉल आपको करे तो आपको क्या करना है, सिंपली कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। पर्सनल या फिर बैंकिंग इन्फॉर्मेशन कभी भी शेयर मत कीजिएगा। और एक और चीज, साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट करने 1930 हेल्पलाइन है, इस हेल्पलाइन का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर कंप्लेंट कर दीजिएगा। बस अलर्ट रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, और साइबर क्रिमिनल से एक कदम आगे रहिए। बहुत सारी बातें हो गई हैं साइबर शील्ड को लेकर, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सुपर हिट गानों के बारे में। लेकिन तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

सिनेमा का कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर वालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहाँ सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का ये नया अवतार ऑडियंस को कितना सरप्राइज करने वाला है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।

हाँ जी, बहुत दिनों से सोच रहे हैं ना कि कहीं बाहर जाया जाए, खासकर इस फरीदाबाद से बाहर जाया जाए, क्योंकि यार बहुत टाइम हो गया ना यहाँ पर रहते हुए। तो चलिए फिर आपको थाईलैंड घुमा कर लाती हूँ। अगर आप सोच रहे हैं ना एक इंटरनेशनल ट्रिप हो जाए तो थाईलैंड कर रहे हैं ना आपका इंतजार, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना पासपोर्ट रेडी रखना है। बिकॉज 15 सितंबर से इंडिया ट्रेवलर्स थाईलैंड में अप टू 30 डेज वीजा फ्री एंट्री कर सकेंगे। और बस इस एंट्री के लिए आपको करना क्या है, आपके पास आपका एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग रेडी होनी चाहिए, और साथ ही इमिग्रेशन के लिए 20,000 थाई बात होने चाहिए। दैट्स इट, इतना काफी है आपको एक थाईलैंड की परफेक्ट ट्रिप के लिए। सो अगर जाने का प्लान कर रहे हैं ना, खुशखबरी आपके लिए है, अभी से बुकिंग करना शुरू कर दीजिए। और ये जो हॉलीडेज है ना, इन हॉलीडेज को एंजॉय कीजिएगा, बिकॉज भाई वीजा फ्री हॉलीडे है तो और क्या ही चाहिए। और इसके साथ एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलता है कुछ ही देर में।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हेलो हेलो जी, तो आ गई हूँ आज का बिजनेस बस लेकर। और आज का बिजनेस वाला आइडिया ना खासकर उन लोगों के लिए है जो हमेशा ये बोलते हैं बिजनेस करना है पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। तो भाई देखिए, आज का आइडिया आप लोगों के लिए, आपने करना क्या, जितने भी लोकल शॉप्स है ना उनके लिए व्हाट्सएप कैटलॉग बनाना और मैनेज करने का काम है। क्योंकि आपने देखा होगा आज भी बहुत सारे ऐसे नेबरहुड के बुटीक्स, बेकरीज, यहाँ तक कि सैलून है जिनके होम बिजनेसेस के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं लेकिन किसी को नजर ही नहीं आते। तो आपने क्या करना है, आपने ऑनलाइन दिखाने के लिए ना कैटलॉग्स बनानी है। तो भाई आपने करना है क्या है, उनके प्रोडक्ट्स की फोटो क्लिक करनी है, व्हाट्सएप बिजनेस कैटलॉग सेट करना है, साथ ही वीकली ऑफर स्टेटस लगाने हैं और ऑर्डर्स को ऑर्गेनाइज करना है, दैट्स इट। तो भाई देखिए, यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, शॉप उनकी डिजिटल दुकान है आपकी, यानी कि सर्विस है आपकी। और आपने इसकी शुरुआत अपने एक दो लोकल बिजनेसमैन से कर सकते हैं मंथली सर्विसेज चार्ज की। और देखिए इसके लिए ना आपके पास लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है, फोन से भी ये काम हो जाता है। तो आज की बिजनेस टिप याद रखिएगा, जहाँ किसी की प्रॉब्लम है वहीं किसी और का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो भाई आज जाइए अपने एरिया में, देखिए कौन सी दुकान अच्छी चल रही है, बस ऑनलाइन थोड़ी सी वीक है, वहीं से आपका क्लाइंट मिल जाएगा। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलूंगे आपसे इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस। ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

0: calling.
1: Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Regular running overall body में सिर्फ cardiovascular, pulmonary benefit के अलावा muscles, joint और आपके जो bones हैं उनके भी ऊपर भी काफ़ी फायदा देती है, क्योंकि running एक weight bearing exercise है, तो bones के ऊपर mechanical stress आता है तो वो bone density maintain करने में overall help करता है। Side by side जब running हो रही है तो muscles की strength और endurance भी increase होती है, जो कि joints के आसपास mobility help करती है increase करने में और joint को stability extra provide करती है।
0: Doctor calling.

तो चलिए फिर फरीदाबाद से निकलकर चलते हैं बिहार, क्योंकि बिहार की ना बात ही अलग है भाई। बिहार में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो फनी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? सो मैं लेकर आ गई हूँ सोशल स्यापा, और आज का स्यापा देखकर ना आप भी यही बोलेंगे कि वाह क्या किस्मत है ना, किस्मत हो तो इस चोर जैसी। दरअसल हुआ क्या, सोशल मीडिया पर ना इन दोनों एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें चोरी करने गया एक इंसान, लेकिन वहां ना हॉस्पिटैलिटी लेकर आ गया। बिहार से एक ऐसा वीडियो आया है जहां ना एक शख्स को चोरी करते हुए पकड़ा गया पहले, लेकिन गाँव वालों ने ना उसकी पिटाई नहीं की, बल्कि उसकी पिटाई करने के बजाय ना उसे पहले बिठा कर ना वहां पर खाना खिलाया, और फिर जाकर कहीं उससे पूछताछ की कि भाई ऐसी क्या मजबूरी थी जो आप इस गाँव में चोरी करने के लिए आ गए। तो भाई देखो, जब से ये वीडियो वायरल हुआ है ना, इंटरनेट पर लोगों ने इस मोमेंट को बहुत शेयर किया है और बहुत सारे रिएक्शंस भी दिए हैं। रिएक्शन देते हुए ना लोगों ने ये भी कहा, अतिथि देवो भवा। और ये तो अतिथि देवो भवा का ना नेक्स्ट लेवल था। सो किसी ने यहाँ पे ये भी बोला है कि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, और लेकिन काम दूजा यहाँ पर तब भी नहीं हुआ, पहले पेट पूजा कराई गई और फिर बहुत ही प्यार से इन्हें जो है छोड़ दिया गया है। लेकिन देखिए यहाँ पर जोक्स अपनी जगह, लेकिन अगर आप किसी गलत काम को सपोर्ट करने का सोच रहे हैं ना, तो ये स्टोरी जरूर याद रखिएगा, किसी को बिना सबक सिखाए नहीं छोड़ना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि सबक हमेशा वायलेंस से हो। आप अपनी बातों से भी किसी को ये बता सकते हैं कि उन्होंने गलत किया है। और इसी के साथ ही तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

जब से हम सबके लाइफ में सोशल मीडिया है, हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई है ना। अगर बात की जाए व्हाट्सएप की, तो भाई देखिए व्हाट्सएप पर कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना किसी को कितना इजी हो गया ना। सबसे पहले उसकी फोटो खींचनी है, सेंड करना है, डन, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर ये डॉक्यूमेंट आपका पैन, आधार या फिर आपके बैंक की कोई स्टेटमेंट है तो आपके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो सकता है? नहीं सोचा ना। और अक्सर ये सारी चीजें हम किसी को व्हाट्सएप के थ्रू सेंड भी कर देते हैं। तो देखिए आज का साइबर अलर्ट आपके लिए यही एक अपडेट लेकर आया है। कोई भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट अगर किसी एजेंट या फिर एम्प्लॉय के पर्सनल फोन पर चले गए, डिलीट कभी नहीं होते हैं। उनकी कॉपीज फोन पर, गैलरी पर या फिर आपके क्लाउड बैकअप में हमेशा रह सकती है। इसलिए KYC के लिए ऑफिशियल वेबसाइट या फिर अथॉरिटीज सिक्योर वेरिफिकेशन सिस्टम को ही प्रेफरेंस दें हमेशा। कभी भी किसी को पर्सनली अपने डॉक्यूमेंट्स मत भेजिए। और अगर मैं बात करूँ ना आधार की, तो भाई आधार की तरफ से तो ये एडवाइजरी भी जारी की गई है। आधार को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ओपनली शेयर नहीं करना चाहिए। जरूरत हो तो मास्क आधार जरूर बनवाए, ऑप्शन में रखिए। बिकॉज मास्क में होता क्या है, आपके जो 8 डिजिट है वो हमेशा हाइड रहते हैं और जो लास्ट के 4 डिजिट है सिर्फ वो ही दिखाई देते हैं। सो इससे जो फ्रॉड का चांस है ना वो कम हो जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आपसे बोलता है कि अपना आधार और पैन भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, तो पता है ना आपको क्या करना है। आपको बिल्कुल भी नहीं भेजना है। और इसी के साथ ये था आज का साइबर मंत्रा। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ और सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM।

बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्टर स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

हेलो हेलो जी। तो भाई देखिए, जितने भी सिंगल लोग हैं ना, अब आप मिंगल हो ही जाइए। बिकॉज पहले हम लोग ये सोचते थे ना, तो हम लोग, मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं भी सिंगल हूँ ना, पहले हम लोग ये सोचते थे ना कि रिलेशनशिप में आने के बाद ना जेब ढीली हो जाती है, और वाकई ऐसा होता है क्योंकि अपने पार्टनर को डेट पर ले जाना, उन्हें गिफ्ट देना, ना जाने बहुत सारी चीजें होती है ना। लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि भाई यहाँ भी ना इस चीज का एक शॉर्टकट निकाल सकते हैं, और वो शॉर्टकट निकाल डाला इन जेन ज़ीज़ ने। तो भाई जेन ज़ी ने बना दिए हैं इन्फ्ला डेटिंग। अब आप ये सोच रहे हो ना आखिर इन्फ्ला डेटिंग है क्या, तो देखिए इन्फ्लेशन प्लस डेटिंग से मिलकर बना है इन्फ्ला डेटिंग। यानी कि यहाँ ना आपके पॉकेट पर बहुत ज्यादा जोर नहीं पड़ने वाला। आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे इतने एक्सपेंसिव कैफे में लेकर जाना है, अपने पार्टनर को इतना ज्यादा बिल आ जाएगा, खाना थोड़ा सा होता है, बिल बहुत ज्यादा हो जाता है। सो इस डेटिंग में करना क्या होता है, जितने भी जेन ज़ी और मिलेनियल्स है ना, ये अपने एक्सपेंसिव डेट्स को कट बैक करने के लिए वॉक, पिकनिक या फिर घर पर कुकिंग करके ही ना एक कोजी सी डेट प्लान कर लेते हैं, जो कि पूरी तरह से बजट फ्रेंडली होती है और ना बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। बिकॉज आप साथ में मिलकर कुकिंग करते हैं, गेम्स खेलते हैं। सो ये वाली जो डेटिंग है ना बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इन दिनों। सो मैं देखिए ओवरऑल डेटिंग का आइडिया मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और इन केस अगर मैं फ्यूचर में कभी किसी को डेट करूंगी ना, तो मैं इन्फ्ला डेटिंग ही करने वाली हूँ। सो आप भी ऑप्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन को। अगर किसी ने किया है ना, तो मुझे जरूर बताएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है, और आपको बताना बताने के लिए कहां जाना, तो फटाफट से आ जाइए रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहां पर बताइएगा कि कैसा रहा आपका डेटिंग का एक्सपीरियंस। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हाँ जी तो हो जाए। हाँ जी फिर से आ गई हूँ मैं लेकर दिमाग की बत्ती जलाने वाला सेगमेंट, और वेलकम टू रेडियो महारानी, दिस इज अर्जेंटली इन द हाउस। तो भाई चलिए आपके दिमाग की ना थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप सभी को पता है जब मैं दिमाग की एक्सरसाइज कराने के लिए आती हूँ तो एक सेगमेंट लेकर आती हूँ, फरीदाबाद की पहेली। तो भाई टाइम हो गया है फरीदाबाद की पहेली का, और आज की पहेली है, मैं फरीदाबाद की एक ऐसी ऐतिहासिक जगह हूँ जिसे 18वीं सदी में बनाया गया था। अभी यहाँ राजा महाराजा रहते थे, और आज भी लोग मेरी खूबसूरती आर्किटेक्चर और इतिहास को देखने दूर से आते हैं। मेरा नाम एक वीर राजा के नाम से जुड़ा हुआ है। तो भाई देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक हिंट भी दे दी है, तो इस हिंट को जरूर पहचानिए। और तो फटाफट से मिलते हैं थोड़ी ही देर में, इस पहेली के जवाब का इंतजार खत्म होगा। लेकिन आपको पता है ना आपको क्या करना है, फटाफट से जाना है रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर अपना वॉइस मैसेज हमें भेजना है, देखते हैं कि आप फरीदाबाद को कितना जानते हैं। लेकिन तब तक के लिए एंजॉय कीजिए प्यासो ट्रैक, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

पूरा दिन इंस्टाग्राम पर रहते हैं ना, पूरा दिन सोशल मीडिया चलाते हैं और फिर कहते हैं कि यार बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा खराब हो गया। यहाँ सिर्फ आज मैं बैटरी बैकअप की बात नहीं करूंगी, आज आपको ये भी बताने आई हूँ अगर आप भी इंस्टाग्राम चला रहे हैं ना तो हो जाइए थोड़ा सा सावधान, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ना हमें पोस्ट के साथ साथ ना कुछ एड्स भी नजर आते हैं। कुछ एड तो इतने ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं ना कि हम उन्हें क्लिक करके देखते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपने ये एड क्लिक किया और आपका फोन हैंग हो गया और उसके बाद आपका अकाउंट खाली? नहीं सोचा था ना। तो देखिए भाई, ये नया स्कैम आ गया है मार्केट में, तो अगर आप किसी भी एड को देखते हैं तो उसे बिल्कुल भी ओपन मत कीजिएगा, बिकॉज ग्वालियर में एक ऐसा केस सामने आया जहां पर इंस्टाग्राम पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट की वजह से एक स्कैम हुआ है 98,000 का। तो भाई देखिए, यहाँ पर जो विक्टिम है ना, पहले उनके अकाउंट से 70,000 रुपए डिडक्ट हुए, फिर 20,000 एंड देन 8,000, इस तरह से पूरा टोटल अमाउंट हुआ 98,000। सो इसलिए कहा जाता है कि सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और वर्चुअल वर्ल्ड में दिखने वाली चीजें कभी भी रियल नहीं होती, इसलिए अननोन एड्स पर स्पेशली जो डिस्काउंट, इन्वेस्टमेंट, रिवॉर्ड या फिर अर्जेंट ऑफर का लालच आपको देते हैं ना, ऐसी चीजों से दूर रहिए, ऐसे एड्स को कभी भी क्लिक नहीं करना है। अगर गलती से आप कभी किसी ऐसे सस्पिशियस लिंक को क्लिक भी कर देते हैं और फोन आपका हैंग करने लगता है ना, तो आपको पैनिक करने से पहले ना आपको अपने बैंक को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। आपके जितने भी बैंकिंग एक्सेस है सबको सिक्योर कीजिए और साथ ही कंप्लेंट कीजिए साइबर सेल में, जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि साइबर सेल में आपको कंप्लेंट करने के लिए 1930 डायल करना है। और हमेशा याद रखिए कि जो इंस्टाग्राम है ना, जो सोशल मीडिया है, वो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए है, ना कि हमारे अकाउंट को खाली करने के लिए। तो बस स्टे अलर्ट, स्टे सेफ और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: हेलो, मैं डॉक्टर आकिब हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद से। सो मेंस हेल्थ के बारे में क्या आपको इन्वेस्टिगेशंस कर लेनी चाहिए, कैसे देखना चाहिए? जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि जब 40-45 की एज के बाद में एक ईयरली आप हेल्थ पैकेज कर लें, अपना जो भी रूटीन इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम कॉमन ब्लड टेस्ट आते हैं, किडनी रिलेटेड, प्रोस्टेट रिलेटेड और बाकी ऑर्गन्स रिलेटेड, इवन हार्ट एंड अदर थिंग्स, वो सारा कर लेना चाहिए, जिसमें बेसिकली CBC, KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, अल्ट्रासाउंड, ECG एंड समटाइम्स इफ रिक्वायर्ड एन एक्सरे हो जाना चाहिए। थैंक यू
1: डॉक्टर कॉलिंग। के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

हाँ जी, कल रक्षाबंधन आ गया और ना आप में से कई लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि कल रक्षाबंधन है तो क्यों ना जाके आज ही हेयर कट करा लो। तो भाई एक बार रुक जाइए, ठहर जाइए भाई, ठहर जाइए। कभी आपने सोचा है कि जब आप हेयर कट कराते हैं और दूसरे दिन आप कितने चंपू लगते हैं ना, आपको कॉम्प्लीमेंट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट नहीं, आपको ना हमेशा ये कॉमेंट जरूर करके जाते होंगे लोग कि भाई क्या क्या हेयर कट कराया है यार। तो देखिए भाई, यहाँ पर ना एक्सपर्ट्स कहते हैं, जो बात आपको नहीं पता थी वो मैं आज बताने आई हूँ। एक्सपर्ट्स एंड जितने भी स्टाइलिश है ना, वो पता क्या कहते हैं, कॉमनली सजेस्ट करते हैं कि किसी भी इम्पोर्टेंट फंक्शन या फिर जितने भी गेट टुगेदर्स होते हैं ना, उनसे कम से कम कुछ दिन पहले, आइडली अराउंड 5 से 7 दिन पहले हेयर कट कराना चाहिए। बिकॉज जब आप हेयर कट कराते हैं ना, तो एक हफ्ते में ना आपके बाल जो है पूरी शेप ले लेते हैं, पूरे डिजाइन में आ जाते हैं, पूरे स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो फेस है वो और ज्यादा इनहेंस दिखता है और आपके बाल सेटल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो माचो मैन वाला स्टाइल है ना वो उभर कर आता है। लेकिन कई बार ना हम ये गलती कर देते हैं, कई बार बहुत जल्दी में बाल कटवाते हैं और अगर वो बाल बहुत खराब कटते हैं ना, तो भाई देखिए आपका हो जाता है पूरा लुक खराब। ये बात नहीं बता दी ना तभी मैं ये बात लेकर आई हूँ। बिकॉज अगर बात करूँ ना मैं मेंस की, तो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते भाई, इसीलिए मेंस ग्रूमिंग डे मनाया जाता है कि एटलीस्ट एक मॉइस्चराइजर खरीद लो जब आप बहुत एक्सपेंसिव शूज खरीदते हो। तो देखिए, आज अगर बाल कटवाने जाने वाले हो ना, तो प्लीज मत जाना यार, आज मत जाना, रक्षाबंधन इन्हीं बालों में सेलिब्रेट कर लो, उसके बाद कट करा लेना। क्योंकि रक्षाबंधन की फोटोज अगर इन बालों में आई ना, तो बहन ने आपकी इवेंट बजा देनी है और अच्छा लगता है क्या पिटते हुए। तो इसी के साथ ना एंजॉय कीजिए ट्रैक, और हाँ बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को वो पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

0: कहाँ है वो लोग जो छोटी लड़कियों को देखकर सिर्फ ये बोलते हैं कि भाई ये तो किसी पोकेमोन से कम नहीं है। कहाँ है वो जिराफ जैसे लोग?
1: बिकॉज उन लोगों के लिए ना आज मैं इतनी बढ़िया इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ ना, जिसे सुनने के बाद ना भाई साहब आपको आपके लंबे होने पर अफसोस होगा। और आज मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है ये स्टोरी बताते हुए, क्योंकि यार अभी तक ना आपने सिर्फ मेरी आवाज सुनी है। जिस दिन आप मुझे देखेंगे ना तो आपको शायद यही लगेगा कि मैं अभी बिना 11th 12th क्लास की एक बच्ची हूँ, क्योंकि मेरी हाइट भी कम है। और कम हाइट होने का मतलब ये नहीं है कि मुझ में कोई कमी है, नहीं। तो भाई देखिए, मैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जो नहीं करते हैं ना यार, अपने आप से प्यार करो। सो जितनी भी शॉर्ट गर्लीज हैं जो मुझे सुन रही है, जरा सा वॉल्यूम तेज कर लो, क्योंकि यार इंटरनेट पर ना इन दिनों आपके फेवर में इंटरेस्टिंग क्लेम वायरल हो रहा है। और पता क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जितनी भी शॉर्ट गर्ल है टॉल गर्ल के कंपैरिजन में स्वीटर, स्मार्टर और ज्यादा केयरिंग होती है। इसीलिए कहा जाता है ही नहीं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्योंकि इस छोटे से पैकेट में ना बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी केयर है और बहुत सारा फन भी है। सो जितने भी अभी तक बड़े लोग ये अपनी हाइट पर इठाते थे ना यार, किसी काम की नहीं है आपकी हाइट। क्योंकि अगर आपको किसी से बचना होता है ना तो आपकी हाइट इतनी बड़ी है कहीं छुप नहीं सकते आप लोग। लेकिन हम जो छोटे हाइट वाले लोग है ना यार, कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। तो आज की स्टोरी मुझ जैसे छोटे लोगों के लिए थी, यानी कि जो हाइट में छोटे हैं। सो जितनी भी शॉर्ट गर्लीज आज मुझे सुन रही थी ना, फाइनली ये स्टोरी हम लोगों के लिए आ गई है। तो अब फ्लेक्स करना तो बनता है ना। तो आपके जितने भी लंबू फ्रेंड्स है ना, बस आज वाली स्टोरी ना इन्हें सुना दीजिएगा और इन्हें बताइएगा कि बेटा आपकी जो लंबी हाइट है ना सिर्फ दिखाने के लिए ही है, इसका काम कुछ नहीं है। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलते हैं कुछ ही देर में।

0: 89.6 FM कुछ छक्के।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

0: बातें तो बहुत सारी की हैं और इन्हीं बातों के बीच में मुझे याद आ गया है कि टाइम हो गया है फरीदाबाद की पहेली जानने का। तो भाई बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए हैं और थैंक यू सो मच, आप फरीदाबाद की पहेली को इतना प्यार दे रहे हैं। डेली आते हैं, डेली अपने जवाब देते हैं, कुछ सही होते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जो मैंने कभी सुने भी नहीं होते, लेकिन आप फरीदाबाद को बहुत प्यार करते हो, फरीदाबाद को बहुत अच्छे से जानते हो, ये सेगमेंट हमें ये बताता है। तो चलिए भाई टाइम हो गया है फरीदाबाद की पहेली जानने का। तो जो मैंने पहेली पूछी थी ना, आज मैंने एक हिंट भी दिया था, लेकिन पहेली थोड़ी सी टफ थी। तो चलिए देखते हैं किसने सही जवाब दिया है। तो मैं पहले इनका जवाब आपको सुनाती हूँ।
1: हाय अंजलि, मैं हूँ दीक्षा फरीदाबाद से, और आपकी आज की पहेली का सही जवाब है राजन हार सिंह बल्लभकर।
0: बिल्कुल सही पकड़े हैं दीक्षा, इतना सही जवाब, और ये हमें ये बता दे कि आप फरीदाबाद को कितना अच्छे से जानते हो। बिकॉज ये अगर मैं इस पहेली की बात करूँ ना, तो थोड़ा सा टफ था, ऐतिहासिक थी थोड़ी सी पहेली, लेकिन क्या गैस किया है भाई, तुम्हें मिलते हैं 1 करोड़ रुपए। नहीं, 1 करोड़ रुपए तो नहीं मिलेंगे तुम्हें, लेकिन हाँ ये जरूर बताता है कि फरीदाबाद को प्यार बहुत करते हो दिल से, क्योंकि आपने ये जगह बिल्कुल सही गैस की है, और इसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर से मिलेंगे एक और नई पहेली के साथ, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: फरीदाबाद गेम छो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
1: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
0: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
1: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
0: प्ले सेंट प्लेटर्स ग्रेटर फरीदाबाद में।
1: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
0: उठा लो डांडिया स्टिक्स और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
1: रास रंगीलो, दिल से दोस्ती क्लब के साथ।
2: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-00-36।

चलिए भाई फरीदाबाद को मिलकर बनाते हैं फिट फरीदाबाद। अंजलि बहुत ज्यादा परेशान है ना आजकल, और शायद डिप्रेशन में भी है। लेकिन आपको पता है टाइम ना सब कुछ हील कर देता है ऐसा कहते हैं, लेकिन जब तक टाइम कुछ हील नहीं करता तब तक आप अपने आप से कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो चलिए फिर इस डिप्रेशन को थोड़ा सा कम करते हैं, और कम करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट में 100% फ्रूट जूस और स्मूदीज इंक्लूड करनी है। फिर देखेगा 4 हफ्तों के बाद आपके डिप्रेशन के सिम्टम में ना थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी। और ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा कहती है न्यूकैसल यूनिवर्सिटी की स्टडी। तो रिसर्चर्स के मुताबिक एक स्टडी में जूस या स्मूदीज लेने से मेटाबॉलिक हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से जो हमारा डिप्रेशन वाला जोन है ना वो हल्का पड़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जूसेस से फ्रेश लेने हैं, वो पैक्ड जूस नहीं लेना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 100% आपको शुगर मिलती है। इस तरह के जूसेस से जो है आपको दूर रहना है, आपको फ्रेश एंड सीजनल फ्रूट्स लेना है। साथ ही आप इनके साथ इसका फाइबर भी ले सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्दी है। तो अगली बार जब भी आपका मूड लो होना तो सिर्फ और सिर्फ एक ग्लास जूस पी लीजिएगा, क्या पता है ये मैजिकल ड्रिंक आप पर इंस्टेंट काम कर जाए। और तब तक के लिए बस यही कहना चाहूंगी, अपना ख्याल रखिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, दोस्तों से मिलिए, और हाँ अपने आप को ना थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार कीजिए। और इसी के साथ सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Regular running overall body में सिर्फ cardiovascular pulmonary benefit के अलावा muscles, joint और आपके जो bones हैं उनके भी ऊपर भी काफ़ी फायदा देती है, क्योंकि running एक weight bearing exercise है तो बोन्स के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस आता है तो वो बोन डेंसिटी मेंटेन करने में ओवरऑल हेल्प करता है। साइड बाय साइड जब रनिंग हो रही है तो मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी इंक्रीज होती है, जो कि जॉइंट्स के आसपास मोबिलिटी हेल्प करती है इंक्रीज करने में और जॉइंट को स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड। डॉक्टर कॉलिंग।

बहुत सारी मैं बातें यहाँ पर लेकर आती हूँ, लेकिन जब मैं खुशखबरी लेकर आती हूँ तो मुझे खुद को अच्छा लगता है। वेलकम टू रेडियो महारानी, दिस इज आरजे अंजलि और आप सुन रहे हैं 89.6 एफएम पर अंजलि ऑन एयर। तो भाई फरीदाबाद वाले हो, आपके लिए ना एक बहुत पॉजिटिव अपडेट मैं लेकर आई हूँ, लेकिन अभी इस प्लान में थोड़ा सा वक्त लगेगा और ये प्लान अगर अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलाना तो फ्यूचर में दिल्ली टू फरीदाबाद के बीच का जो सफर है वो और भी ज्यादा फास्ट और कन्वीनियंट हो सकता है। तो भाई नमो भारत को लेकर बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं एंड ऑफिशियल रूट्स और स्टेशन लोकेशंस पर काम भी किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से फरीदाबाद के कई सेक्टरों को बेटर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है, यानी कि जितने भी डेली कम्यूटर्स का ट्रेवल टाइम है वो अब कम हो सकता है, खासकर जो लोग डेली फरीदाबाद टू दिल्ली जाते हैं। अब सोचिए अगर आप दिल्ली जा रहे हो ना और मेट्रो से जा रहे हो तो आपको पूरा घूम कर जाना पड़ता है, आपको 2.5 घंटे 3 घंटे आराम से लग जाते हैं। और वहीं सेम अगर आपको गुरुग्राम नोएडा जाने वाला हो ना तो लिटरली इतना टाइम लगता है कि इतनी देर में आप ऋषिकेश पहुंच जाए, 6 घंटे भी लग जाते हैं कभी कभी आने जाने में। तो अगर ये कनेक्टिविटी आ गई तो देखिए कितना फास्ट आपका काम हो जाना है, कितना कन्वीनियंट हो जानी है सारी चीजें। तो भाई स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ सफर नहीं बल्कि हमारे ट्रैफिक और पॉल्यूशन दोनों को भी कम करने में हेल्प करता है। तो भाई ये थी फरीदाबाद की आज अच्छी खबर और ऐसे ही बहुत सारी चीजें मैं लेकर आऊंगी, लेके तब तक के लिए इंतजार कीजिए और एंजॉय कीजिए इस ट्रैक का।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को वो पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

और बस उसी के साथ आज कंचली ऑन एयर यहीं तक था। बहुत सारी बातें की मैंने आज आपसे, बहुत सारी चीजें जानी और बहुत कुछ बताया भी। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि आखिर मैं टिफिन में क्या लेकर आई हूँ। बिकॉज जब मैं ऑफिस आती हूँ ना, तो मेरा पहला सवाल अपने कलीग्स के साथ यही होता है कि भाई आज क्या लेकर आई हो टिफिन में। और जैसे मुझे पता चलता है ना कि टिफिन में कुछ टेस्टी आया, तो मैं खा जाती हूँ उनका सारा टिफिन। कह रहे अगर आज अपने टिफिन की मैं बात करूँ ना, तो आज मेरे टिफिन में है सैंडविच और कोल्ड कॉफी। अब आप बोलोगे कि क्या यार अंजलि, हमें तो फिटनेस वाला फंडा देकर जाती है और खुद सैंडविच खाती हो। तो भाई देखिए, मेरा सैंडविच बड़ा ही हेल्दी है, ब्राउन ब्रेड लेकर आई हूँ, उसके साथ में मैं वेजीज वेज सैंडविच लेकर आई हूँ। अगर कोल्ड कॉफी की मैं बात करूँ ना, तो आलमंड मिल्क में है मेरी कोल्ड कॉफी। देखा कितना हेल्दी और टेस्टी सा लंच लेकर आई हूँ मैं। खैर आप क्या लेकर आए हैं मुझे जरूर बताइएगा। और पता है ना बताने के लिए कहाँ जाना है? जाना है आपको रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर वॉइस मैसेज भेजना है और साथ ही एंजॉय करना है रेडियो महारानी पर शो को। और मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

आज का जो कोट है ना जिससे हम शुरुआत करने वाले वो हमारे आज गेस्ट का एक मिनी इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ और कोट सुनिए। एक नारी जब खुद के लिए खड़ी होती है तो अनजाने में हजारों महिलाओं के लिए रास्ता बना देती है। तो ये जो लाइन है ना कि एक नारी जब खुद के लिए तैयार हो जाती है, वो सोचती है नहीं मुझे ये करना है, तो उसे देख के पीछे 10 और महिलाएं मोटिवेट होके आती हैं उस पाथ में, उनको देख के 10 और, ऐसे एक जो ह्यूमन चेन बेसिकली वुमेन्स की बन जाती है जो मोटिवेशनल बेस पे बस चल रही होती है और लोगों को इंस्पायर करती जाती है कि वो कर रही है तो मैं भी कर सकती हूँ, हमें भी करना चाहिए लाइफ में कुछ ऐसा। तो वो सिर्फ एक नारी शक्ति के साथ होता है, क्योंकि जब मेंस की हम बात करते हैं तो मेंस सामने वाले को देखता है तो कहता है नहीं इससे तो या तो मैं अच्छा करूंगा या तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तो वो जेलसी आ जाती है। बट वुमेन नहीं, वुमेन हर बार वो कॉम्पिटिट लेवल पे आती है कि नहीं इसने ये किया है तो मैं इससे एक स्टेप ऊपर ही दिखाऊंगी, फिर दूसरी वाली कहती मैं इससे ऊपर। तो ये कंपैरिजन में जो ऊपर जाने की चेन है ना, ये वुमेन्स में ज्यादा स्ट्रांग होती है ये मेन के कंपैरिजन। ये एक साइंटिफिक पूरी रिसर्च के अकॉर्डिंग भी कोट लिखा गया है। बट हमारी आज की गेस्ट ने भी ऐसा ही कुछ करा था, वो अकेले चलना शुरू करी थी बट उनके साथ लाखों महिलाएं जुड़ चुकी हैं, क्योंकि 1 बजे से लेकर 2 बजे तक वो गेस्ट आज हमारे साथ होंगी महारानी स्टूडियोज में, ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके

0: छोटा सा ब्रेक है।
1: फरीदाबाद गेम शो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
2: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
1: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
2: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
1: प्लेस एंड प्लेटर्स, ग्रेटर फरीदाबाद में।
2: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
1: उठा लो डांडिया स्टिक और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
2: रास रंगीलो, दिल से दोस्ती क्लब के साथ।

वुमेन्स इन स्पॉटलाइट में इनके अलावा आज कोई जगह ले ही नहीं सकता। इन्होंने जो करके दिखाया है शायद इसका इंतजार पूरी इंडिया कर रही थी एक तरफ से। रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वुमेन्स एशिया कप का ये मैच, और क्या करा है पाकिस्तान वालों ने। मतलब आप हारते ये कोई बात नहीं, बट ऐसे हारोगे। इंडियन वुमेन्स टीम ने जो कमाल करके दिखा दिया है कि भाई इन्होंने पूरे पूरे 10 विकेट उनके उड़ा दिए, और वो भी बहुत कम रन दिए उनको। बहुत कम क्या, ये अभी तक का मेरे को लग रहा है एशिया कप का ये वुमेन्स का किसी भी मैच का सबसे लोवेस्ट होगा। 55 रन पे पूरी टीम को आपने आउट कर दिया। क्या था ये फीमेल्स इन ब्लू, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये किस तरह का मैजिक आप आज पिच में लेके आए थे, या किस तरह से आपने वहां पर जलवा जो है वो बिखेरा था। मैं बॉलिंग की बात करूंगा तो हर एक बॉलर अप लेवल पे जाके खेल रहा था। अब बैटिंग के लिए तो आपके पास इतना बड़ा ग्राउंड हो चुका था कि आप क्या ही बोलोगे जब आपने सामने वाले को 55 पे ही आउट करके रख दिया है। तो बहुत ही अमेजिंग यहाँ पर वो निकल के आया था। और जहां पर 27 रन तक तो इनकी पारी बहुत बढ़िया चल रही थी, ये आउट आउट नहीं हो रहे थे, बट 27 रन से लेके वो 55 रन के बीच में ऐसा क्या हुआ, वो बीच के 28 रन में आपने ऐसा क्या उलटफेर कर दिया कि पूरी टीम ही ढाल पैड आउट कर दिया आपने। तो मेरे को तो ऐसे लग रहा है जितनी भी बाकी टीमें हैं उन्हें फीमेल्स इन ब्लू से थोड़ा सा सतर्क होके खेलने की भाई तैयारी कर लेनी चाहिए। ये पूरी फॉर्म के साथ आई, और कब चुटकियों में आपका खेल खत्म कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या बात है यार, ये होता है एक प्राउड इंडियन वाली फीलिंग जो इस टाइम हम सबको हो रही है। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक पंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हिमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेस होती हैं जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने के बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर कॉलिंग।

ये लाइन तो हम अक्सर कहते हैं ना, शी हैव चेंज द वर्ल्ड, बट आज मैं जिसकी स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, शी हैव मेक द वर्ल्ड। उन्होंने ये पॉसिबल करके दिखाया, वरना शायद एडुकेशन को इतना बड़ा एक, जो मैं कहता हूँ ना, गैप या लैप जो था इतने टाइम तक, वो हमेशा रहता, वो कभी हम कवर कर ही नहीं पाते अगर सावित्री बाई फूले ना होती। हाँ जी, मैं आज उन्हीं की कहानी के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। और सावित्री बाई फूले, ये नाम हम लोग ने अक्सर सुना होगा, बट उनकी कहानी के पीछे का जो संघर्ष है वो हम अक्सर भूल जाते हैं। एक टाइम था जब लड़कियों का पढ़ना पाप माना जाता था, और उस टाइम पे सावित्री बाई फूले ने डिसाइड किया था कि भारत में पहला गर्ल्स स्कूल वो शुरू करेंगी 1848 में, जहां पर लोग लड़कियों को पढ़ने के लिए बिल्कुल इंस्पायर नहीं करते थे, मोटिवेट नहीं करते थे। इन्होंने कहा नहीं, मैं उन्हें पढ़ाऊंगी भी और उन्हें उनके वक्त के साथ कदम से कदम मिला के चलना भी सिखाऊंगी। जब वो स्कूल जाती थी तो उनपे पत्थर फेंके जाते थे, उनपे कीचड़ फेंका जाता था, उनको तमाम बातें बोली जाती थी, और सावित्री बाई शांति से एक एक्स्ट्रा साड़ी अपने बैग में रख के लेके जाती थी और वहां जाके चेंज करती थी, और उसके बाद हिम्मत से लोगों को मोटिवेशन देती थी, शिक्षा देती थी कि नहीं, हमें ये समाज को बदलना है, समाज की सोच को बदलना है। और आज जब लाखों लड़कियां स्कूल जा रही हैं, पढ़ रही हैं, जॉब्स कर रही हैं, अलग अलग फील्ड में सक्सीड कर रही हैं, तो हमें सावित्री बाई फूले के उस बलिदान को नहीं भूलना चाहिए जहां से उन्होंने वो पहला कदम उठाया था, जिस वजह से आज इतनी लड़कियां पढ़ पा रही हैं, अपने लिए कुछ करियर में कर पा रही हैं। तो उन सबके लिए सावित्री बाई फूले जो हैं वो एक मोटिवेशन होनी चाहिए, एक मिसाल होनी चाहिए, वहां से उनको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और हमेशा उनके बारे में लोगों को और ज्यादा से ज्यादा बताना चाहिए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके। Thank you.

कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर वालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहां सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का ये नया अवतार ऑडियंस को कितना सरप्राइज करने वाला है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।

इस घर में जाते ही लोगों के अंदर ऐसे चेंज आ जाते हैं जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं करो कि ये भी ऐसा कर सकता है क्या। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और कल से शुरुआत हुई है बिग बॉस की। और बिग बॉस की शुरुआत होते ही घर के अंदर एंटर हुए हैं बहुत सारे गेस्ट, और आते ही कलेश शुरू। सोने के लिए कलेश हो रहा, भाई कि ये बेड मेरा है, मुझे ये बेड चाहिए, वो बेड चाहिए। और भाई तुम मेरी कॉम से लड़ रहे हो, भाई वो कह रही है मैं लेजेंड हूं, मुझे ये बेड चाहिए। अरे वहां आप क्या, वहां आप कॉमन कंटेस्टेंट बन के गई, वो भी वही लेवल पे आया, वहां वो लेजेंडरी क्यों देखेगा कि आप लेजेंड है तो आपको बेड दे दे, आपको वो दे दे, सीनियर आप सीनियर सिटीजन अलग काट के ले। तो आपको नहीं जाना चाहिए था, अगर आपको ये सब लग रहा है कि नहीं लग रहा है, भाई वो कॉम्पिटिटर है, वो भी अपने लिए लड़ेगा कि मुझे ये बेड चाहिए, मेरे ये 10 रीजन है आपके।

रीजन है, तो वो कह रहा है मैं अगर किसी के साथ सोया तो वो नहीं सो पाएगा, उसके अपने अलग रीजन चल रहे हैं। बट मैरी कॉम ने जाते ही नहीं नहीं ये सिंगल वाला बेड ही लूंगी मैं, बिल्कुल भौकाल के साथ वहां पर बोलना शुरू कर दिया। लोग आ रहे हैं, समझा रहे हैं उनको, कह रही नहीं मैं लेजेंड हूँ। अरे आप लेजेंड हैं, हम सब मान रहे, पूरा इंडिया मान रहे, बट उस घर के अंदर नहीं। उस घर के अंदर आपको अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग, अपने उसके अकॉर्डिंग वहां पर चीजें जीतनी है। आप बाहर जो करके आए उसके अकॉर्डिंग आपको अंदर नहीं जीतना है, क्योंकि अंदर जाने के बाद आप सब एक लेवल पे, आप सबको कॉम्पिटिट करना है। अब वहां पर भी अगर कोई ये देखने लगे नहीं ये लेजेंड है और हम इनको ये नहीं करेंगे, इनको हम खाना बना के देंगे, तो वहां आपका जाने का फायदा क्या? वहां आपको सर्वाइवल ही तो करना है ऐसे लोगों के बीच में जो आपके इक्वल हो चुके हैं। तो एक ये थोड़ा सा मेंटेन करके चलना है घर के अंदर अब हमको। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन सारी चीज के बीच में जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत मजा आने वाला है, तो उनके लिए सीजन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: एक्चुअल
1: वुमेन्स राइट की जो बात है ना, वो आज आर्टिकल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, कौन सा आर्टिकल क्या वुमेन राइट्स पे वर्क कर रहा है। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार है यहाँ पर आपके साथ, और शुरुआत करते हैं आर्टिकल 14 से, इक्वालिटी बिफोर लॉ। जब भी आप किसी भी लॉफुल चीज के सामने जाएंगे तो मेन और वुमेन दोनों इक्वल हैं, दोनों को इक्वल लेवल पे सुना जाएगा, समझा जाएगा, तब कोई डिसीजन लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक मेल है उसे ज्यादा समझा जाएगा या सुना जाएगा, इक्वल वहां पर दोनों जन होने चाहिए लॉ के सामने, कोई भी लॉ वाली चीज के सामने आप जा रहे हैं। आर्टिकल 15 बताता है नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी जेंडर में भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी तरह की चीजों को लेके, कि ये सिर्फ फीमेल्स को मिलेगा, ये सिर्फ मेल को मिलेगा, हर अधिकार दोनों को मिलना चाहिए, जेंडर वाइज डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज, आज के टाइम में जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज मेल के लिए है उतनी ही फीमेल्स के लिए भी होनी चाहिए, पर हो सकता है फीमेल्स के लिए थोड़ी ज्यादा हो वुमेन एम्पावरमेंट वाले ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से, बट इक्वल राइट्स दोनों के लिए होने चाहिए, ये बोलता है आर्टिकल 16। और इसी आर्टिकल को अगर आप अंदर से देखेंगे तो इक्वल पे, इक्वल वर्क स्पेस, वहां पर इक्वल तरह से आपको ट्रीटमेंट मिले, ये भी उस आर्टिकल के अंदर आता है। इसके बाद अगर हम प्रॉपर्टी राइट्स की बात करेंगे तो वहां पर डॉटर को अपने जो घर, जो इनलॉस का घर है वहां भी, और जो उसका रियल घर है मम्मी पापा वाला, वहां भी इक्वल राइट्स हैं अपनी प्रॉपर्टी को लेके। तो ये जो पूरी तरह से एक महिला को सशक्त बनाते हैं कि नहीं, अगर वो सोचे कि मैंने, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने लाइफ में कुछ भी नहीं करा है, एडुकेशन अच्छी नहीं मिल रही है मुझे, तो ये उसका राइट है कि वो घर पे बोले कि अगर बेटा पढ़ने जा रहा है तो मुझे भी जाना है, उसे ये मिल रहा है तो मुझे भी मिलना चाहिए। अब आप इसमें फायदा उठाने लगे कि आपको एक मिला है तो आप कह दो नहीं मुझे दो चाहिए, मुझे तीन चाहिए, मुझे चार चाहिए। इक्वल मींस इक्वल, फिर वो इक्वल बैलेंस होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, किसी भी एक को अबव या किसी भी एक को नीचे हमें नहीं रखना है। ये आर्टिकल्स हमको समझाते हैं, और वुमेन्स को भी अपनी राइट समझ के और उनके बारे में समझ के ही करना चाहिए, उन राइट का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये पावर है लाओ मैं ये बोल देती हूँ ये कर लेती हूँ, नहीं। जहां नीड है, जहां आपको लग रहा है आपके साथ गलत हो रहा है, सिर्फ वहां उन राइट्स का यूज करिए, हर जगह पे विक्टिम कार्ड वाली तरह से उन्हें प्ले करना ना शुरू करिए, वो बाकी वुमेन्स के लिए फिर आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और

आखिर एक मर्द को चाहिए क्या, क्या डिमांड होती है उनकी? देखिए उनकी डिमांड बहुत बड़ी नहीं होती। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार है यहाँ पर आपके साथ। अक्सर हमने सुना है ना, एक महिला को समाज में ये चाहिए, एक महिला को समाज में चाहिए, कभी हम बात ही नहीं करते एक पुरुष को समाज में क्या चाहिए। देखिए पुरुष को बहुत आसान चीजें चाहिए, गर्म खाना चाहिए, टीवी का रिमोट चाहिए और संडे को थोड़ी देर एक्स्ट्रा सोना चाहिए, शायद वो भी थोड़ी देर। लेकिन मैं आपको एक फन फैक्ट से हटके बताता हूँ, एक इंसान को क्या चाहिए, उसे चाहिए कोई उसको सुन ले, उस पे भरोसा कर ले, जब वो मेहनत कर रहा है ना तो उस मेहनत को कोई नोटिस करे और मुश्किल वक्त में उसका साथ दे दे, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और थोड़ी सी एप्रिसिएशन, बस इंसान वहां पर पिघल जाएगा। वो आपके लिए कुछ भी करेगा, वो आपको मूवी नाइट भी ले जाएगा, वो आपको डेट नाइट पे भी ले जाएगा, वो आपको डिनर कराने भी ले जाएगा, वो आपके लिए शॉपिंग भी कराएगा, बट वो जो चीज कर रहा है उसे आप धीरे धीरे अप्रिशिएट करते रहिए, उसकी उस चीज में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाइए, उसको सजेशन देना शुरू कर दीजिए। मेन से बेटर इंसान कोई आपके लिए फिर हो ही नहीं सकता, अगर आप इस तरह से उन्हें सपोर्ट करने लगेंगे। एक इंसान को हमेशा सॉल्यूशन नहीं चाहिए, कभी कभी उसको ये चाहिए कि वो जो बता रहे हैं ना, आप वो सुन लो और सुन के अपने तक रख लो, जाके

आगे ना हो तो बताएं आज इसने कोई अपने तक सुनो, उसे वहीं खत्म करो। मैन से सिंपल और सॉर्टेड इंसान आपको और कोई नहीं मिल सकता। ये एज अ वुमेन का जो मसीहा होता है ना, मैं उनको ये धीरे धीरे टिप देता रहता हूँ ताकि वो अपने जो मेन हैं या अपने जो बेटर हाफ हैं उन्हें और बेटर तरीके से समझ सके। तो आज से कोशिश करिएगा, शायद आपको वो हल्की हैप्पीनेस जो है ना वो और इंक्रीज होती हुई नजर आए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही हैं बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को या किसी के जोड़ों में दर्द रहना लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद।

तो जितने भी फरीदाबाद वाले हैं, ये अपनी फिटनेस के लिए दौड़ने के लिए रेडी हैं कि नहीं है? अभी तक नहीं हुए? अरे मैं आपको बताता हूँ, आपको रेडी होना पड़ेगा। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, क्योंकि फरीदाबाद हाफ मैराथन फिर से एक बार आ रहा है अपने 2026 के एडिशन के साथ, जहाँ देश भर के रनर जो हैं उनमें जोश और जज्बा फिर से उतना ही एंथुसियास्ट के साथ हमको देखने मिल रहा है। 27 सितंबर 2026 सूरजकुंड मेला ग्राउंड से होने वाली है ये मैराथन की शुरुआत, और अभी तक 1,00,000 से ज्यादा इसके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो आप पीछे ना रह जाए तो रजिस्टर अभी कर लीजिएगा। और इसके बारे में डीसी आयुष सिन्हा जी ने भी बताया है कि इवेंट का जो उद्देश्य है वो सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना है, और नशा मुक्त हरियाणा का जो संदेश है वो पूरे हरियाणा तक पहुंचाना है, पूरे फरीदाबाद के लोगों तक पहुंचाना है। मैराथन में जो रेसेस होंगी वो होंगी 21.1 किलोमीटर की मैराथन होगी, 10 किलोमीटर की होगी, 5 किलोमीटर की होगी, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होने वाली है। आपका टाइम जो है वो सब कुछ मेजर करा जाएगा, और कुल 10,00,000 रुपए का प्राइज मनी भी रखा गया है। तो इस प्राइज मनी के लिए ही दौड़ने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट हो जाइए। तो वेट किस बात का कर रहे हैं, अपने आप को अभी रजिस्टर करिए इनकी वेबसाइट पे जाके www.faridabadhalfmarathon.in पर। अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए ये मैराथन में जरूर पार्टिसिपेट करिए, हो सकता है वो एक दिन आपकी रनिंग जर्नी को, आपकी हेल्थ की जर्नी को बिगिन करने में आपकी मदद जरूर करे। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी कुर्सी जमा ली है कि बाकी फिल्म्स को जगह ढूंढनी पड़ रही है। मिर्जापुर द मूवी अभी जो ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, फिल्म को थिएटर्स में आए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन क्रेज भाई अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मजेदार बात यह है कि अब कॉम्पिटिशन भी सामने है। अक्षय कुमार और सैफ की हैवान रिलीज हो चुकी है, लेकिन मिर्जापुर अपनी पकड़ बनाए हुए है। डे 8 तक फिल्म ने इंडिया में करीब 158 करोड़ नेट का आंकड़ा छू लिया है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 225 करोड़ के पार बताया जा रहा है। मतलब कालीन भैया का रूल अभी खत्म नहीं हुआ है बॉक्स ऑफिस पर भी। लेकिन इसी बीच शोभा डे के रिव्यू ने भी खूब अटेंशन खींच लिया है। इन्होंने कहा है कि फिल्म देखते हुए वो करीब 15 मिनट के लिए सो गई थी। अब ऑडियंस बोल रही है मिर्जापुर और शोभा डे बोल रही है थोड़ा आराम करो। सिनेमा का कैप्सूल में एंटरटेनमेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है।
1: માતાજી ને હમ કહીને કહું છું કે વાહ ફરે વાદળ ફરે વાયરો ફરે પણ એક વાર બોલ્યા પછી મારા મિત્રો આ મિત્રો કદી ના ફરે કે હા।

ये जो आईलाइनर है ना यार, ये तुम पे कितना ही सूट कर रहा है, तुम पे कितना अच्छा लग रहा है। अक्सर हम तारीफ में बोल देते हैं, बट ये आईलाइनर आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ। कभी जब इसकी शुरुआत हुई थी ना, तब ये आईलाइनर नहीं था, तब ये सिर्फ एक कोयला था। और मैं आईलाइनर की हिस्ट्री बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत पुराना एक फैशन पार्ट बना हुआ है, जहां पर पहले लोग इसे सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए लगाते थे बहुत सारी चीजों से। और ये आईलाइनर की शुरुआत जो है वो एशियंट इजिप्ट, मतलब 5000 साल पहले हुई थी, जहां पर कोयले का इस्तेमाल किया जाता था इसे अपनी आंखों के ऊपर लगाने के लिए, जहां पर वो तेज धूप से बचाता था, उन्हें बहुत सारी चीजों से राहत देता था, आईज इन्फेक्शन से बचाता था, क्योंकि ये डायरेक्ट आईज पे प्रभाव नहीं पड़ने देता था, तो ये बहुत सारी चीजों से बचा रहा था, तो लोग तब लगाते थे। फिर क्वींस हो गए, किंग्स हो गए, या उसके बाद की जो जनरेशन हो गई, वो मेल और फीमेल दोनों लगाते थे। बट धीरे धीरे फीमेल ब्यूटी का पार्ट बनता चला गया, इसे लगाने के तरीके बदलते चले गए, फिर ये पेंसिल के रूप में आ गया, और उसके बाद आज अलग अलग टाइप पे, जैसे आपको बोल्ड चाहिए, आपको थिन चाहिए, आप उस अकॉर्डिंग यूज करके अपने आईलाइनर्स को लगा सकते हैं और एक ब्यूटी सिंबल सामने वाले इंसान को दिखा सकते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, तुम्हारा वो आईलाइनर यार आज बहुत अच्छा था, वो जो एक्स्ट्रा आई के बाहर तुमने निकाला था वो तो क्या ही लुक दे रहा था। तो आपको ये हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि ये आज से नहीं, 5000 साल पहले से फीमेल्स लगाती हुई चली आ रही हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: एक कहावत है ना, मैं अकेला ही चला था जान बे मंजर मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और ये जो कहावत है ना, ये हमारे आज के गेस्ट पे परफेक्ट सेट होने वाला है। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार है आपके साथ। और आज हमारी जो नारी नंबर वन है वो है निधि सिद्धार्थ खुराना। और ये मैंने लाइन जो बोली है ये इन पे परफेक्ट सिट इसलिए हो रही है क्योंकि ये चली तो अकेले थी बट लोग इनके साथ इतना जुड़ गए हैं कि अब कारवां बहुत बड़ा हो चुका है। निधि, सबसे पहले तो महारानी के स्टूडियोज में आपका स्वागत है। और ये 18 साल की जर्नी कॉर्पोरेट लाइफ की और उसके बाद वो सब छोड़ गए, अपना एक नया पाथ को डिफाइन करना या एक नए पाथ को चूज करना, कितना हार्ड था या कितना इजी था?
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू तुषार। देखिए, 18 साल कॉर्पोरेट्स में, डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में जॉब करी। आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी बाय क्वालिफिकेशन एंड अलग अलग फील्ड्स में काम करने के बाद ये हुआ कि अपना सोचा नहीं था कि कुछ काम स्टार्ट होगा। शुरू से था कि अच्छे पढ़ी लिखी हूँ, पेरेंट्स ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है तो जॉब ही करते रहेंगे। बट कुछ पर्सनल ऐसी सिचुएशन हुई जैसे यूजली मदर्स के साथ होता है, सेकेंड बेबी होने पे आई थॉट अब छोड़ना पड़ेगा, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय किड्स एज वेल। फिर ये सिचुएशन आई कि मैं क्या करूँ, तो बैठे बैठे एक दिन आया दिमाग में, चार पांच औरतों से बात करें कि एक ग्रुप बनाते हैं और हम लोग एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। लेट्स स्टार्ट प्रमोटिंग ईच अदर बिकॉज वी आर सुपर टैलेंटेड, व्हाई टू स्टॉप एंड व्हाई टू यू नो जस्ट होल्ड आवरसेल्व्स बैक। सो ये जर्नी एंटरप्राइजिंग दीवास कम्युनिटी की वहाँ से स्टार्ट हुई, चार औरतों को इकट्ठा करके जो शुरुआत करी, अब जो है 3 लाख से ऊपर महिलाएं जुड़ी हुई हैं।
0: मेरे को लग रहा है आज की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रहने वाली है क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारी वुमेन्स को इंस्पायर किया है उनकी लाइफ में कुछ नया करने के लिए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस। ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

0: मेरा ये जो सवाल है ना, इसका परफेक्ट जो एक एग्जांपल बोलूं या परफेक्ट जो मैसेज है वो हमारी आज की गेस्ट ही दे सकती है। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ, और मेरे साथ आज स्टूडियो में है निधि सिद्धार्थ खुराना। ये एंटरप्राइजिंग दीवास की ओनर भी हैं, फाउंडर भी हैं। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपनी लाइफ में बिजनेस शुरू तो करना चाहती हैं बट कई बार कॉन्फिडेंस नहीं होता, कई बार गाइडेंस नहीं होता, इन सारी चीजों की कमी की वजह से वो नहीं कर पाती। तो एक कदम अगर वो आज आगे बढ़ाना चाह रही हैं तो उन्हें एज अ गाइडेंस पर्सन या एज अ मेंटर आप क्या बताना चाहेंगी?
1: देखिए, सबसे पहली चीज होती है, हर औरत की एक अपनी कहानी होती है। डज नॉट मैटर आपने कितनी पढ़ाई करी है, आपने क्या करा है क्या नहीं करा है। वॉट मैटर्स इज योर करंट सिचुएशन, एंड आप उस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं कि नहीं। अगर आपके अंदर खुद विश्वास है कि मेरे को अपनी करंट सिचुएशन से आगे चल के कुछ काम करना है, वो डेफिनेटली हो जाएगा। बहुत लोग बैठे हैं आपको पुल बैक करने के लिए, बहुत लोग बैठे हैं आपको पुश करने के लिए कि आप बढ़ें या आप पीछे रहें। ये आपने डिसाइड करना है, इट्स योर लाइफ। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कोई काम करना है तो चाहे छोटे स्टेप लेके करिए। कोई नहीं कह रहा लाखों की इन्वेस्टमेंट करिए, हजारों की करिए, करोड़ों की करिए, छोटी छोटी चीज़ों से आप स्टार्ट करिए। एंड इफ यू ट्रूली बिलीव इन योर सेल्फ यू विल अचीव दैट। कोई आपकी एक गाइडेंस दे सकता है, आपको पुश दे सकता है कि आप काम शुरू करें। एग्जाम्पल, जैसे मैं भी अगर किसी को मोटिवेट करती हूँ, मैं उनको खाली बता सकती हूँ कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, करना उन्होंने खुद है। मैं ट्रेन की टिकट जो है किसी को पैसे दे के उनको ट्रेन की टिकट उनके हाथ में पकड़ा सकती हूँ, लेकिन वो ट्रेन का सफ़र उन्होंने खुद करना है, उनके बदले मैं नहीं कर सकती। सो आप अपने पे विश्वास रखिए एंड जो करना है करिए। सबकी सिचुएशन एंड ऑफ द डे इज सेम। ऑल ऑफ अस आर मदर्स, ऑल ऑफ अस आर वाइफ्स, ऑल ऑफ अस आर यू नो डॉटर्स, डॉटर इन लॉज। हमने सारी ड्यूटीज निभानी है, उसके साथ हमने काम भी करना है।
0: थैंक यू सो मच हमारी जितनी भी फीमेल्स हैं उन्हें इस तरह से मोटिवेट करने के लिए, इस तरह से अपनी बात रखने के लिए, ताकि वो भी आगे बढ़ के ऐसे एंटरप्राइजिंग दीवा का पार्ट बन पाए या फिर अपना ही कुछ ऐसा कर दिखाएं जो शायद हमने कभी सोचा ना हो। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा, या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को, या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: ए जय माताजी ने हम कहीं कहूशू के वाह फरे वादल फरे वायरो फरे, पण एक वार बोल्या पछी मारा मित्रों, आ मित्रों कदी ना फरे,

0: 200 से ज्यादा इवेंट, 5000 से ज्यादा ऑनलाइन सेशन, भाई साहब हैट्स ऑफ वाली चीज है हमारी आज की गेस्ट के लिए। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। और निधि, मैं आपसे अब ये जानना चाह रहा हूँ, एंटरप्राइजिंग दीवा ने अपने 200 से ज्यादा फिजिकल इवेंट्स जो हैं वो कवर कर लिए, ऑनलाइन सेशंस आप ले चुके हो, तो ये एक सक्सेस स्टोरी अगर आप मेरे को बताओगे, कौन से वो बड़े इवेंट्स हैं या हम इसे कैसे मैनेज कर रहे हैं?
1: मेरे दोस्त भी मुझे बोलते हैं, मेरे मुँह से कभी ये शब्द नहीं निकलते, मैं थक गई। 24 घंटे सबके पास है, Everybody has 24 hours. You need to make the best out of it. वो 24 घंटे के किसी के पास 22 घंटे या 26 घंटे नहीं हो सकते। आपने देखना है कि वो 24 घंटे आप कैसे डिवाइड कर रहे हैं। मैं पूरे 7 से 8 घंटे सोती भी हूँ, मैं रेगुलर 1.5 घंटा वर्कआउट्स के लिए भी जाती हूँ, बच्चों का होमवर्क, ट्यूशन, काम, सब कुछ एक ही उसमें मैनेज होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं। यू योरसेल्फ नीड टू प्रिपेयर योर ओन कैलेंडर। हमारे स्कूल्स में नहीं होता था, टाइम टेबल मिलता था हर पीरियड का,
0: हर पीरियड
1: कि 40 मिनट्स का ये है, 20 मिनट्स का ब्रेक है, यही हमने अपने लाइफ में करना है, चाहे हम लिख के करें, अपने दिमाग में बिठा के करें।
0: मैम, एंटरप्राइजिंग दीवास के बारे में हम बात करेंगे, और मैं ऐसे ही जब क्रॉस चेक कर रहा था 200 प्लस इवेंट्स, प्लस उसके बाद 50,000 से ज्यादा ऑनलाइन जो हम लोग ने सेशंस करे, कैसे मैनेज हुआ इतना? ये एक 200 भी अच्छा खासा फिगर है इवेंट्स करने के लिए।
1: सो देखिए, आई वुड से कोविड हैज बीन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर एंटरप्राइजिंग दीवास कम्युनिटी मेंबर्स इन टर्म्स ऑफ, पहले याद है कि कोविड से पहले कल्चर था कि ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम होगा, स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस होंगी, हम ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट आया कोविड टाइम से। तो ये शुरुआत इस चीज़ की ऐसे हुई, फिजिकल इवेंट्स एंटरप्राइजिंग दीवास हम लोग करते थे कि बिकॉज इतने सारे वेंडर्स जुड़े हुए हैं, तो हम एग्जीबिशंस कर रहे हैं, राखी की, कभी तीज की, कभी दिवाली की। ऑनलाइन काम स्टार्ट हुआ कोविड से, जब क्या हुआ सारे दरवाजे सबके लिए बंद हो गए, एंटरप्राइजिंग दीवास वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कम्युनिटीज जिसने ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करे। हुआ कि फेसबुक पे फीचर है लाइव, जो हम लोगों ने कभी एक्सप्लोर ही नहीं करा था इतना
0: उससे पहले।
1: एग्जैक्टली, क्योंकि लाइव का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ऑनलाइन शॉपिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हमने स्टार्ट करा, जब तक कोई कुरियर कुछ शुरू नहीं हुआ, मैंने सेशंस कराने अपने मेंबर्स के स्टार्ट करे। कोई अगर टैरो रीडिंग में था तो हम आधे घंटे का उनका फ्री टैरो रीडिंग सेशन कराते थे। कोई बच्चों की आर्ट क्लासेस लेता था, हमने ऑनलाइन आर्ट क्लासेस शुरू करी। करते करते करते जब थोड़ा सा कुरियर्स खुले और पार्शियल लॉकडाउन हटा, तब हमने लाइव सेशंस करे। जो लेडीज अपना प्रोडक्ट्स बेचते हैं, हमने उनके लाइव सेशंस कराए। सो बायर्स उनसे कनेक्ट करके शॉपिंग करना ऑनलाइन स्टार्ट करा, ये वहां से जर्नी सारी स्टार्ट हुई।
0: ये मेरे लिए प्राउड फीलिंग और एक थोड़ा सा वो इमोशनल फीलिंग वाला है ना, कि एक फीमेल जो है वो इतनी अपने आप को एनहेंस कर ले रही है, इतने सारी चीजें मैनेज कर ले रही है, और उसके बाद भी वो कितना रिलैक्स होकर आज मेरे साथ यहाँ पर बैठ के वो चीजें बता रही है, ताकि बाकी जो फीमेल्स हैं वो उस चीज के लिए थोड़ी सी मोटिवेट हो पाए या थोड़ा सा उस चीज से कुछ सीख पाए या गाइडेंस ले पाए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी कुर्सी जमा ली है कि बाकी फिल्म्स को जगह ढूंढनी पड़ रही है। मिर्जापुर द मूवी अभी जो ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, फिल्म को थिएटर्स में आए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन क्रेज भाई अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मजेदार बात यह है कि अब कॉम्पिटिशन भी सामने है। अक्षय कुमार और सैफ की हैवान रिलीज हो चुकी है, भाई अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मजेदार बात यह है कि अब कॉम्पिटिशन भी सामने है। अक्षय कुमार और सैफ की हैवान रिलीज हो चुकी है, लेकिन मिर्जापुर अपनी पकड़ बनाए हुए है। डे 8 तक फिल्म ने इंडिया में करीब 158 करोड़ नेट का आंकड़ा छू लिया है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 225 करोड़ के पार बताया जा रहा है। मतलब कालीन भैया का रूल अभी खत्म नहीं हुआ है बॉक्स ऑफिस पर भी। लेकिन इसी बीच शोभा डे के रिव्यू ने भी खूब अटेंशन खींच लिया है। इन्होंने कहा है कि फिल्म देखते हुए वो करीब 15 मिनट के लिए सो गई थी। अब ऑडियंस बोल रही है मिर्जापुर और शोभा डे बोल रही है थोड़ा आराम करो। सिनेमा का कैप्सूल में एंटरटेनमेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है।

0: time for a trick question for our guest today. 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ और निधि ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ. आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल वुमेन या एंटरप्रेन्योर की मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? एडुकेशन, नेटवर्किंग, लीडरशिप या फिर सेल्फ बिलीव कि मैं कर लूंगी.
1: देखिए हमने बहुत सारे केसेस तुषार ये भी सुने हुए हैं कि एक किसी अनपढ़ ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया. अगर मैं अपने खुद नाना जी की बात करूं, मेरे नाना जी जिसे बोलते हैं अंगूठा छाप, उन्होंने कोई बेसिक पढ़ाई नहीं थी बट उन्होंने उर्दू की किताबें लिखी हुई हैं. मेरे नाना जी को प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला हुआ है प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन से. तो मैं अपने नाना जी का ही अगर एग्जांपल लूँ, एक आदमी जिसने बेसिक एजुकेशन भी ली वो कहाँ तक पहुँच गए. तो मैं यही बोलती हूँ एजुकेशन बाद में आती है. उनको विश्वास था अपने ऊपर कि मुझे काम करना है, मुझे ये करना है. अगर आपके अंदर वो जज्बा है तब आप चाहे जितनी भी हाई एजुकेशन ले लें या बेसिक एजुकेशन भी ले लें आप वहां तक पहुंच जाएंगे. एजुकेशन डेफिनेटली इन टुडेज वर्ल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट वो आपके अंदर पहले होना चाहिए. आपको खुद के अंदर बिलीफ होना चाहिए कि मेरे को ये आगे करना है. एंड लीडरशिप और नेटवर्किंग, इट ऑल फॉल्स इन टू द प्लेस. ये धीरे धीरे सब कुछ आप सीख लेते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एग्जाम्पल जैसे हम तभी बोलते हैं सीनियर सिटीजन्स को, हम सीनियर क्यों बोल रहे हैं, उन्होंने इतने साल का एक्सपीरियंस ले लिया. हम यंग बच्चों को यंग अडल्ट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी वो बच्चे हैं, यंग हैं. तो सीनियर सिटीजन्स को हम इसीलिए अहमियत देते हैं बिकॉज उन्होंने इतने टाइम में अपनी चीजें सीख ली. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस आपको सब कुछ पता चल जाता है कि आपने क्या करना है, प्रोवाइडेड यू बिलीव इन योर सेल्फ. एंड मैं एक चीज जरूर बोलने चाहती हूँ यहाँ पे, आई विल ऐड ऑन मोटिवेशन. आपको कोई एक बार मोटिवेट कर सकता है, आपकी चाहे वो फैमिली हो, बच्चे हो, हस्बैंड हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके सिबलिंग्स हो, एक दो तीन बार. उसके बाद इट इज सेल्फ मोटिवेशन. रोज की लड़ाई आपने अपनी खुद लड़नी है. यू नीड टू चूज योर बैटल्स वाइजली. हर चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, तभी आगे बढ़ पाएंगे.
0: क्या बेहतरीन और सुंदर तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया है कि क्या एक नारी के अंदर वो चीज होनी चाहिए जो उसके बिजनेस को या उसके जो ड्रीम्स हैं उन्हें पूरा करने में उनकी हेल्प करें. 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके.

0: मोटिवेशनल मैसेज अगर हमारे लिसनर्स को और मिल जाएगा ना, तो उनका दिन थोड़ा सा ऐसा बन सा जाएगा। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, निधि सिद्धार्थ खुराना यहाँ पर इस टाइम मेरे साथ हैं। और निधि, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने तो एक सक्सेसफुल ब्रांड यानी कि एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है जिसका नाम है एंटरप्राइजिंग दीवा, जिसमें लाखों लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, बट अगर कोई एक पावरफुल मैसेज आप आज हमारे लिसनर्स को देना चाहें उनकी लाइफ जर्नी को बेटर बनाने के लिए, उनकी लर्निंग को बेटर बनाने के लिए, अपने सपनों को अचीव करने के लिए, या वो हिम्मत ही देने के लिए, तो वो क्या होगा?
1: देखिए, कल तो किसी ने नहीं देखा। अब ये तो वही वाली बात होती है, बहुत बार हम अपने फ्रेंड्स का भी सुनते हैं कि मैं मोटा हो गया हूँ, जिम ज्वाइन करना है, कल से करूंगा। कब तक जिम ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो यही चीज सेम आपकी लाइफ में भी वैलिड होती है। आपने जो शुरू करना है आपने अभी शुरू करना है। देर इज नो टुमोरो, नोबडी हैज सीन कि कल क्या होना है। जो करना है वो आज ही आपने करना है। यू रियली नीड टू थिंक व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू। जैसे मेरे साथ अगर आप मुझे बोले मैं कोई पेंटर हूँ, नहीं, मैं कोई मैं किसी और प्रोफेशन में हूँ, एक्सपर्ट हूँ, नहीं, बट मेरे लिए मेरी क्वालिटी थी लीडरशिप, मैनेजमेंट, जो मैंने इतने साल अपने कॉर्पोरेट्स में सीखा, अपनी पढ़ाई से सीखा, मैंने उसी को चैनलाइज करके एंटरप्राइजिंग दीवास कम्युनिटी क्रिएट करी, जिससे मैं मैनेज करके, नेटवर्किंग करके लोगों को साथ में लाई। अदरवाइज मेरा अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, आई एम नॉट सेलिंग, बट आई एम सेलिंग, आई हैव ब्रॉट फॉरवर्ड माई ओन स्किल्स। तो आपको अपनी जो है वो रिकोगनाइज करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंगली आपने डिसाइड करना है। और जहाँ तक बात रही गाइडेंस कैसे शुरू करें, एंटरप्राइजिंग दीवास में हम लोग बहुत सारे सेशंस करते रहते हैं, वेर इन वी टेल देम कि किस तरीके से आप कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, छोटे तरीके से आप ऑनलाइन अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। वही बात है, टिकट हम दे देंगे, जर्नी तो आपने अपनी खुद ही करनी है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, आई ऑलवेज टेल एवरीबडी, चूज योर बैटल्स वाइजली। जिंदगी में डे टू डे बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, हर चीज़ में टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आपके लिए क्या ज़रूरी है वो आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। सारी 100 की 100 लड़ाइयाँ आप दिन की नहीं लड़ सकते, वो जो उसमें से टॉप 10 आपकी प्रायोरिटी उस दिन के लिए है, आप वो लेके चलिए, एंड यू विल मेक द फुल यूज ऑफ दोज 24 hours दैट गॉड हैज गिवन यू।
0: थैंक यू सो मच निधि हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, ये सारी बातें हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करने के लिए, उन्हें चेयर करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए। और वही कहते हैं ना कि कई बार कोई ऐसी बात हो जाती है जो शायद आपके माइंड में क्लिक हो जाए और आपकी पूरी लाइफ पलट जाए, तो शायद आपके टॉक से किसी की लाइफ आज चेंज हो सकती है। थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और बाकी हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, आपको ये टॉक कैसी लगी, ये इट्स आरजे तुषार के नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा, या फिर रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पे आके भी आप बता सकते हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स.
5: बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स.
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड.

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: हाँ जी फरीदाबाद वालों, क्या हाल चाल है? अच्छा, सितंबर भी बस आज का ही मेहमान है और उसके बाद एंट्री होने वाली है अक्टूबर की, मतलब कैलेंडर का पेज बदलेगा, हवा में फेस्टिवल वाइब्स और थोड़ी थोड़ी ठंड की वो हल्की सी खुशबू भी शुरू होने वाली है। और ऑनेस्टली अक्टूबर का नाम सुनते ही ना मूड थोड़ा ऑटोमेटिकली फेस्टिव हो जाता है। नवरात्रि, दशहरा, दिवाली की प्रिपरेशन, मिठाइयों की खुशबू, घर की सफाई और शादियों के सीजन की भी धीरे धीरे एंट्री शुरू हो जाती है। लेकिन अभी सितंबर को गुड बाय बोलने से पहले क्यों ना इस लास्ट सितंबर आफ्टरनून को थोड़ा फिल्मी बना दिया जाए। तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए, मूड को फ्रेश कीजिए। मैं हूं पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर। लेकिन बातों को आगे बढ़ाने से पहले सुना देती हूं आपको ये गाना, एंजॉय कीजिए ये गाना एंड स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी को छटके।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: फरीदाबाद गेम शो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
2: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
1: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
2: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
1: प्ले सेंट प्लेटर्स ग्रेटर फरीदाबाद में।
2: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
1: उठा लो डांडिया स्टिक और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
2: रास रंगीलो, दिल से दोस्ती क्लब के साथ।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, आपने कभी सोचा है कि जो कैरेक्टर हम घर बैठे टीवी या फोन स्क्रीन पर देखने के आदि हो गए हैं, अगर उन्हें बड़े पर्दे पर देखें तो कैसा लगेगा? मिर्जापुर द मूवी के बाद अब एक और पॉपुलर ओटीटी फ्रेंचाइज को फिल्म में लाने की प्लानिंग की बात सामने आ रही है, जिसका नाम है द फैमिली मैन। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक मनोज बाजपेयी का कैरेक्टर श्रीकांत तिवारी अब बड़े पर्दे पर भी नजर आ सकता है और मेकर्स के अकॉर्डिंग फिल्म बनाने का आइडिया पहले से ही डिस्कशंस में था, यानी इसका प्लान मिर्जापुर की मूवी की सक्सेस के बाद नहीं बना है, लेकिन उससे पहले फोकस रहेगा द फैमिली मैन सीजन 4 पर और इसका बेसिक स्टोरी बोर्ड रिपोर्टेडली रेडी है और सब ठीक रहा तो शूटिंग 2027 के बिगिनिंग में स्टार्ट हो सकती है। मतलब श्रीकांत तिवारी के नॉर्मल फैमिली मैन और सीक्रेट एजेंट वाले डबल लाइफ को थिएटर स्क्रीन पर देखना, ये आइडिया सुनने में ही काफी इंटरेस्टिंग है। फिलहाल फिल्म को लेकर डिस्कशंस चल रही हैं और ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट आपको अभी करना पड़ेगा। और इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर।

Hello everyone, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. तो हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज़ नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी. अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफस्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है. तो व्हाटएवर द लाइफ ही इज चूजिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा. और उसके मन में जो भी सवाल है, एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात, एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ. थैंक यू. Thank you.

अच्छा कॉलेज लाइफ भी कितनी मस्त होती है ना, एक क्रश हो, लेट नाइट पार्टीज हो और ऊपर से लव ट्रायंगल। भाई अटेंडेंस तो वैसे ही कम हो जाएगी ना इन सब चीजों के बाद। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वीर पहाड़िया की अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी प्रेम कीटाणु का ट्रेलर रिलीज हो गया है और स्टोरी है कॉलेज लाइफ, फ्रेंडशिप, लव और रिलेशनशिप की कंफ्यूजन से भरी हुई। और वीर फिल्म में विशाल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो कॉलेज का बैक बेंचर है, क्लास बंक करता है, पार्टीज करता है और फिर सुहानी के प्यार में पड़ जाता है। लेकिन पिक्चर में एंट्री होती है अपार शक्ति खुराना के कैरेक्टर रंजीत की, जो सुहानी को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है और बस फिर क्या भाई, शुरू हो जाता है इनका प्रॉपर लव ट्रायंगल। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अपूर्वा सिंह कार्की ने और कास्ट में है आफिया सैयद, अपार शक्ति खुराना, राकेश बेदी और साथ ही साथ निखिल विजय भी। और ये मूवी आपको देखने को मिलेगी 2 अक्टूबर को थिएटर्स में। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसी दिन अजय देवगन और तब्बू की दृश्यम द कंक्लूजन भी रिलीज होगी। मतलब 2 अक्टूबर को थिएटर्स में सिर्फ लव का कंफ्यूजन नहीं बल्कि ऑडियंस के पास मूवी चूज करने का भी कंफ्यूजन होने वाला है। और इस कंफ्यूजन को देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। और इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का भी, एंजॉय कीजिए ये गाना, शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर, मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ।

कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर वालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहाँ सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का ये नया अवतार ऑडियंस को कितना सरप्राइज करने वाला है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, हॉरर फिल्म देखते वक्त सबसे बड़ा सवाल क्या होता है कि इस फिल्म में जो भी भूत है उससे हम एक्चुअल में डरेंगे या नहीं, है ना? लेकिन अजय देवगन की नेक्स्ट सुपर नेचुरल फिल्म में कहानी सिर्फ डराने तक लिमिटेड नहीं होने वाली है, क्योंकि अजय देवगन एक बार फिर सुपर नेचुरल हॉरर जोन में वापस आ रहे हैं और उनकी अपकमिंग फिल्म का टाइटल रिपोर्टेडली लॉक हो चुका है, जिसका नाम है सूर्य स्पर्श। और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रोहित जुगराज। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्टोरी पूरी जो है ना वो गरुड़ पुराण से इंस्पायर्ड होगी। और आप तो जानते हैं कि गरुड़ पुराण में लाइफ, डेथ, कर्म और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जैसे सब्जेक्ट्स का जिक्र मिलता है। इस टाइटल से पहले इसका एक और टाइटल रखा गया था जिसका नाम था गृह प्रवेश, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स ने सूर्य स्पर्श टाइटल फाइनल किया है और ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट आना अभी बाकी है। और अजय देवगन का सुपर नेचुरल जोन कोई नया नहीं है, क्योंकि शैतान और काल के बाद अब देखना ये होगा कि इस मूवी में जर का लेवल कितना ऊपर जाता है। फिलहाल फिल्म की रिलीज में टाइम है, लेकिन इससे पहले अजय दृश्यम 3 और साथ ही साथ गोलमाल 5 में नजर आने वाले हैं। तो भाई, अजय देवगन आ रहे हैं गरुड़ पुराण की कहानी लेकर। अब भूत से डरना है या उसकी पूरी स्टोरी से ही डरना है, ये तो मूवी देखने के

बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है एक गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ऑनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स,
5: वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स।
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: और अक्टूबर की फेस्टिवल वाइब्स की बात हो ही रही है तो नवरात्रि का तड़का कैसे मिस कर सकते हैं? सूरज बढ़ जाती है की अपकमिंग फैमिली ड्रामा ये प्रेम मोलिया से एक नया नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग रिलीज हुआ है जिसका नाम है जय अम्बे।

और गाना सुनते ही फील आ जाती है कि भाई अब गरबा नाइट दूर नहीं है। आयुष्मान खुराना और शर्वरी वाघ पर फिल्माए गए इस गाने में कलरफुल सेटअप, एनर्जेटिक डांस और फुल ऑन फेस्टिव बीट्स देखने को मिल रहे हैं। गाने को हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया है, श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज दी है और लिरिक्स मयूर पुरी के हैं। मतलब अक्टूबर शुरू होने से पहले ही बॉलीवुड ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब डांडिया स्टिक्स निकालने का टाइम आ चुका है भाई। और वैसे भी सूरज बरजातिया की फिल्म हो, फैमिली सेलिब्रेशन हो और साथ में गरबा, तो फेस्टिवल सीजन का मूड तो बनना ही है। चलिए इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का, गाने के बाद फिर यही लौटूंगी। मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अब अगर आपको प्यार का पंचनामा दे दे प्यार दे और तू झूठी मैं मक्कार टाइप रोम कॉम्स पसंद है ना, तो ये अपडेट बिल्कुल आपके लिए है भाई। क्योंकि लव रंजन एक बार फिर लव रिलेशनशिप्स और ऑब्वियसली थोड़े रेड फ्लैग्स लेकर आ रहे हैं, और इस फिल्म का नाम है पहला प्यार दूसरी बार। और इसी फिल्म के थ्रू कुछ नए चेहरों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिनका नाम है अलीशा चोपड़ा, स्पर्श वालिया, साक्षी वेद, सरगुन कौर, तुषार छिब्बर और कुणाल वेद। जी हाँ, ये सभी नाम आपको मेन रोल्स में नजर आएंगे। और इस फिल्म की टैगलाइन भी काफी इंटरेस्टिंग है। टैगलाइन कुछ इस तरह है कि पुराने क्रश, पापी दोस्त और पहला प्यार, मतलब रेड फ्लैग्स नहीं, पूरा रेड कार्पेट देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं अनुज सैनी, और ये आपको देखने को मिलेगी 23rd October को। और नाम ही बता रहा है कि पहला प्यार है तो दूसरी बार मौका देने में बुराई क्या है, है ना। और इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ, और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

0: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। पेन किलर और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेने से किडनी पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयां ना लें, क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है और किडनी फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकती है। थैंक यू
1: डॉक्टर calling।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, रजनीकांत की फिल्मों और उसका फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर चर्चा में ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इस बार अटेंशन रजनीकांत से थोड़ा हटकर विद्या बालन ने ले लिया है भाई। जी हाँ, जेलर 2 में विद्या बालन का फर्स्ट लुक रिवील हुआ है, जहाँ वो कांता के कैरेक्टर में ब्लू साड़ी पहने, हाथ में सिगरेट लिए, एकदम बोल्ड और इंटेंस अंदाज में नजर आ रही है। और टीजर की अगर बात करूं तो ग्लिम्स में विद्या सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई आती है और बैकग्राउंड में अनिरुद्ध का म्यूजिक है। एंट्री हो तो ऐसी कि कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन याद रह जाए। और फैंस विद्या के इस कम्प्लीटली डिफरेंट अवतार को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। फिल्म में रजनीकांत एक बार फिर टाइगर मुथुवेल पांडियन के रोल में नजर आएंगे। सो नेल्सन दिलीप कुमार के डायरेक्शन में बनी जेलर 2 आपको 15 अक्टूबर 2026 को थिएटर्स में देखने को मिलेगी। अब विद्या का ये कैरेक्टर स्टोरी में क्या ट्विस्ट लेकर आएगा, उसके लिए आपको थिएटर तक तो जाना पड़ेगा भाई। फिलहाल वक्त हो चुका है एक गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूँ आज आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

अब बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्टर स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

हां जी, इसी के साथ वक्त हो चुका है आज के फिल्मी फ्लेवर को यहीं शटर डाउन करने का। सितंबर का आज आखिरी दिन है, कल से अक्टूबर की एंट्री होने वाली है। फेस्टिवल सीजन की वाइब्स और थोड़ी थोड़ी ठंड की वो हल्की सी फीलिंग भी शुरू हो जाएगी। आज भी फिल्मी दुनिया के कुछ नए अपडेट्स मिले, कुछ म्यूजिक की बातें हुई। अब मुझे लेनी पड़ेगी आपसे इजाजत, कल फिर मिलूंगी एक नए महीने नए फिल्मी अपडेट्स और नए किस्सों के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए ये गाना एंड सुनते रहिए 89.6 रेडियो महारानी को छटके।

0: कुछ कुछ कुछ हटके।
1: रोल हो जाएंगे, मत करो।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: सुन जरा, चल करे कुछ मजा।
2: नया घर लेना मतलब नए सपने, नई उम्मीदें और कभी कभी नए मेहमान। एक नया घर लेना लाइफ का बड़ा अचीवमेंट होता है, पर जब घर के साथ एक भूत मुफ्त मिले तो शर्मा फैमिली गोवा शिफ्ट होती है और एक हेरिटेज लुक वाला बंगलो रेंट करती है, नाथ विला। भाई नाम ही इतना क्लासी है तो भूत भी वीआईपी होगा। मोहल्ले वाले वॉर्न करते हैं,

0: ए यार, ये डर क्यों नहीं रहा?
1: कान्हा भूत हूँ।
2: कान्हा भूत नहीं होते? अच्छा, तो तुम यहाँ पर रहने आए हो?
0: धीरे धीरे पता लगता है कि नाथ साहब ही इस घर के असली मालिक हैं और यही अटक गए हैं। ईएमआई का लोन चुकाना पड़ा होता तो पहले ही स्वर्ग सिधार जाते। अब बंकू की मिशन मोड एंट्री होती है, भूत को फ्री करना है। एक तरफ स्कूल का होमवर्क और दूसरी तरफ भूत की मोक्ष यात्रा। बचपन काफी स्ट्रेस में चल रहा था। आखिरकार नाथ अंकल स्वर्ग एक्सप्रेस पकड़ के निकल लेते हैं और घर अब हॉन्टेड नहीं रहा। लेकिन शर्मा जी की टेंशन खत्म नहीं हुई। अब उनको नया टेनेंट ढूंढना है। घर सस्ता मिले तो एक बार चेक कर लो, कहीं घर के साथ भूत मुफ्त ना मिल रहा हो, क्योंकि हर भूत भूत नहीं होता।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है, तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम।
2: प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, कभी कभी इंतजार का नाम भी होता है। सिमरन, सपनों में जीने वाली लड़की।
3: मेरे ख्वाबों में जो आए।
2: राज, मस्ती मजाक और दिल से जीने वाला आशिक।
1: रुक जाओ दिल दीवाने, पूछो तो मैं जरा।
2: यूरोप के एक सफर में मिले, टकराए, लड़ते झगड़ते दोस्ती हो गई, पर प्यार समझने में देर लग गई।
4: कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
2: जब सिमरन एक तय की गई शादी के लिए इंडिया गई, राज ने फैसला किया प्यार को जीतना है, पर परिवार के आशीर्वाद के बिना नहीं। एक तरफ संस्कार, दूसरी तरफ सच्चा प्यार, एक तरफ मजबूरी तो दूसरी तरफ जुनून। राज ने घर से रिश्ता जोड़ा, सबका दिल जीता, लेकिन बाबूजी का पत्थर दिल पिघलाना अभी बाकी था। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया।
5: जा सिमरन, जा, जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: इसलिए कहते हैं

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: गाना बजा दूं।
1: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
2: देखो, बॉयफ्रेंड्स ना फिल्मों की तरह होते हैं, कुछ टाइम पास तो कुछ ब्लॉकबस्टर्स।
3: मोहब्बत हो या म्यूजिक, दोनों अधूरे सुरों में भी खूबसूरत लगते हैं, और यही है ए दिल है मुश्किल की कहानी।
4: आज मुझे लग रहा है कि मैं अपनी फिल्म का हीरो।
3: अयान, एक मस्ती भरा आशिक।
5: जब मैं 2 साल का था, मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई।
2: चली गई?
5: मैं भाग गई।
2: मदर तो इंडिया होती है, तुम्हारी मिल्का निकली, भाग गई।
3: जो प्यार को दोस्ती समझता है, जब तक उसका दिल एलिजे के लिए धड़कना शुरू नहीं करता। पर एलिजे के लिए दोस्ती का एहसास गहरा है, लेकिन प्यार का नहीं। मोहब्बत के इस सफर में आती है सबा, जो अयान को प्यार का दूसरा रंग दिखाती है, खुद से प्यार करने का।
6: अरे वाह, बड़े वफादार है आपके आंसू, आपकी इजाजत के बगैर बाहर भी नहीं निकलते।
3: लेकिन क्या दिल अपने जज्बात बदल सकता है, या कुछ मोहब्बतें सिर्फ दर्द का गीत बनकर ही जी जाती हैं? क्योंकि कुछ कहानियाँ अंजाम से नहीं, सिर्फ जज्बात।

0: दूर हो।
1: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
2: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

तेरा लेके ही तो लेके बेबी किसी से भी पूछ लौटा टू मच बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो

0: क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: मुझे वीराना पसंद है, समझे?
2: कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, शाप बनकर नेटफ्लिक्स के हॉरर सेक्शन की तरह हमेशा जिंदा रहती हैं। एक शापित हवेली, एक राज जो मौत से भी ज्यादा भयंकर था, और एक जैस्मिन जो सिर्फ नाम से मासूम थी। एक दिन उसने एक तांत्रिक से मेकओवर पैकेज ले लिया और बस अब वो सिर्फ लड़की नहीं डायन बन चुकी थी। पर हर बुराई का अंत होता है, पर इस बार शाप लाइफ टाइम वारंटी के साथ आया था। सालों बाद हवेली एक बार फिर जाग गई और इस बार नए मेहमान की तलाश थी।
3: तो आज रात पुरानी हवेली के पीछे झील के किनारे आ जाना।
2: वीराना सिर्फ एक जगह नहीं, एक हॉरर फिल्म का एक्सटेंडेड वर्जन है। जो आया वो गया नहीं, और जो गया उसका लास्ट सीन अब तक एक्टिव है। अगर कभी किसी वीरान हवेली में फ्री स्टे मिले तो समझ लो पेमेंट तुमसे नहीं, तुम पर होने वाला है।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
3: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
4: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
4: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
5: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
6: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता
0: है। अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली को मेरी बस आ गई।

0: 69.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का ओ

0: साल में 12 बार एक चीज़ आती है, नहीं 12 बार, हर बार अलग अलग चीज़ आती है, और वो डेज नहीं है, वो है मंथ एंड, जो क्यों ही आता है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, और रोज शाम को 5 से 9 मैं आ जाता हूँ सोमवार से शुक्रवार। और आज तो मिड वीक है, मिड वीक ही कहेंगे, वीकडे, और ऐसा दिन जब इंतज़ार है वीकेंड का, और इस बार का वीकेंड तो थोड़ा सा लंबा वाला वीकेंड होने वाला है। और जब मैंने मंथ एंड की बात करी दी है, तो मंथ एंड की बात मैं इसलिए भी कर रहा था क्योंकि सैलरी, SALARY, क्या हो रहा है इसके साथ, मतलब जेब में आती है, उससे पहले डिसाइड हो जाता है कि कहाँ कहाँ जाएगी, कुछ बचता है तो उसको हम लोग खर्च कर डालते हैं। और पता है ये सब चीज़ें खर्च कैसे होती हैं, सैलरी कैसे ख़त्म होती है, अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है हमारी। और एक हमारे पेरेंट्स थे जिन्होंने हम लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद की थी, खैर उन लोगों का सेव करने का तरीका भी अलग था, और हम लोगों का तो उड़ाने का ही तरह का अलग हो चुका है, क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, उस टाइम ऑनलाइन शॉपिंग नहीं थी, उस टाइम क्विक कॉमर्स नहीं हुआ करता था, तो लोगों के खर्चे कम हुआ करते थे, इम्पल्सिव बाइंग कोई नहीं करता था। आज की डेट में हम लोग एक चीज़ खरीदने के लिए क्विक कॉमर्स ऐप खोलते हैं, दूसरी सजेशन अपने आप आ जाती है, अगर आप पनीर लोगे साथ में वो बोलेगा प्याज भी ले लो, मसाले भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, नहीं चाहिए हमें। और काफ़ी बार इंसान खरीद भी लेता है, और काफ़ी बार इतनी अच्छी डील मिल जाती है तो हमें नहीं भी चाहिए होगी हम तब भी खरीद लेते हैं, इस वजह से पैसे तो बचते ही नहीं हैं। और इसके अलावा घर में सबके काम 25 है, यानी कि काम बढ़ते जा रहे हैं, जो छुट्टी आ रही है लंबा वाला वीकेंड, घर वाले कह रहे हैं कि उसमें दिवाली की सफाई कर दियो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं दिवाली की सफाई करूं या फिर मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा तो मन है कहीं घूमने निकल पड़ूं, बट फ्राइडे को तो आप लोगों से बात करने आना ही है, सैटरडे को फिर सुबह और आना है, संडे को भी आना है, तो फिर कहाँ जा सकता हूं मैं, कहीं नहीं जा सकता, मगर अभी फ़िलहाल गाना ज़रूर चला सकता हूं आप लोगों के लिए। रेडियो महारानी 89.6 पर अगले 4 घंटों के लिए मैं आप सभी के साथ, और सुनिए इस गाने को, गौरव हूं मैं आप सभी के साथ, और आप शो सुन रहे हैं HR 896।
1: लपड़े हजार खून सर पे सवार चढ़ा नाम पे इनाम लौटे घर से फरार, लपड़े हजार खून सर पे सवार चढ़ा नाम पे इनाम लौटे।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

रेडियो का गौरव है आप सभी के साथ। कैसे हैं आप सब? लंबा वाला वीकेंड, कल की छुट्टी ले लो ऑफिस से, फिर देखो आपके पास कल की छुट्टी है, 2 तारीख की छुट्टी है, परसों की छुट्टी है, फिर उसके अगले दिन की भी छुट्टी है, मतलब 4 दिन की आपके पास छुट्टी हो जाएगी। आज रात को कहीं घूमने निकल सकते हो आप लोग। नियर बाय जयपुर है, नियर बाय आप नैनीताल जा सकते हैं। मैं तो अवॉइड करूँगा, अभी पहाड़ों पर जाना रिस्की हो सकता है, तो इन सब चीज़ों के ज़रा सोचिए और घर वालों से बोलिए चलो कहीं घूमने चलते हैं। घर वाले नहीं जा रहे तो दोस्तों से बोलिए घूमने चलते हैं, और हो सके तो कल की छुट्टी मत करना, कल रात को निकल सकते हो आप लोग। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि लंबा वाला वीकेंड जिसका इंतज़ार हर किसी को रहता है वो आ गया है। तो 2 तारीख की छुट्टी है, उसके बाद सैटरडे की बहुत सारे लोगों की छुट्टी होती है, और जिनकी नहीं होती है उनका दर्द मैं तो समझ सकता हूँ, बट आप लोग कोशिश कीजिए कि इस छुट्टी को यूटिलाइज कीजिए। मेरे घर वाले कह रहे दिवाली की सफाई कर दियो। क्यों क्यों करूं मैं सफाई? पता है आपको काम 25 है, बहुत सारे काम होते हैं। घर वाले सफाई करने के लिए बोल रहे हैं, और फिर उसके बाद मैं जब सफाई कर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना गाना चला दिया जाए, और गाने में सर्च कर रहा था, इतने में मेरे पास आया एक लिस्ट जिसमें पता लगा कि घर के काम करने के लिए भी गाने बना रखे, प्लेलिस्ट बना रखी है स्पॉटिफाई पर। मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ काम 25 है, काम 25 है। तेरे जैसे एक मेरे जैसे 36 है, मतलब ऐसे मेरे जैसे एक तेरे जैसे 36, मैं क्या बोल रहा हूँ, उल्टा बोल गया मैं। तो ये गाने जो बनाए गए, प्लेलिस्ट बनाई गई है जस्ट बिकॉज दिवाली की सफाई आने वाली है नज़दीक, लोगों ने शुरू भी कर दिया वैसे तो, और घर में काम करोगे कुछ सुनने का मन करेगा तो गाने सुन लेना, या फिर रेडियो महारानी चला लेना, हमारा तो ऐप भी है, रेडियो महारानी के ऐप पे जाइए, उसे डाउनलोड कीजिए, उस प्ले का बटन दबा दो, आप आराम से चलते रहेंगे। और आप सभी को पता है हम तो बहुत कम एड ब्रेक चलाते हैं, बातें भी अच्छी अच्छी करते हैं, तो इस लॉन्ग वीकेंड को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, घूमने जा रहे हो घूमने जाइए, नहीं जा रहे तो घर की सफाई के टाइम पे अच्छे अच्छे गाने सुन लीजिएगा। और उन्हीं में से एक अच्छा सा गाना चला रहा हूँ आप सभी के लिए, रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ गौरव आपके साथ।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

गाइस, क्या आपको भी लगता है कि आप लोग सोशल मीडिया से एडिक्टेड हो चुके हैं? क्योंकि देखो, नशा ना किसी भी चीज का हो सकता है, वो सोशल मीडिया का भी हो सकता है और वो बाकी चीज का भी हो सकता है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। एंड आपने सोचा कि कभी क्या मेरा स्क्रीन टाइम कितना होगा? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है यार। स्क्रीन टाइम जब आप सर्च करोगे ना तो आप लोगों को भी पता चलेगा, हम लोगों का भी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। एक्चुअली मैं, आप कभी भी अपने सोशल मीडिया को अकाउंट को खोलिए, उसमें सेक्शंस होते हैं बहुत सारे, सेटिंग्स में जाके आपको मिल जाएगा, अकाउंट सेंटर में आपको पता लगेगा कि आप दिन में कितने घंटे वहाँ पर बिताते हैं। और मैं ये सोच रहा था कि क्या हम लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया हमको यूज़ कर रहा है, क्योंकि एक डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन पता है ना आपको, एंटी स्ट्रेस हार्मोन कह लो इसको, या फिर कह लो फील गुड हार्मोन, जो हम लोगों को अच्छा फील करवाता है। हम लोग रील देखना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद स्क्रॉल करते जाते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं, और ऐसे ही करते करते वक्त का पता नहीं चलता। मैं इमेजिन करता हूँ वो वक्त जब हमारे पास फ़ोन ही नहीं हुआ करते थे, चलो मैं बोलूँगा स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे। उस टाइम एक गेम आया करती थी, वो जो फ़ोन छोटे छोटे नोकिया के फ़ोन थे, उसमें गेम होती थी स्नैक वाली, बॉल वाली, बाउंस वाली, उससे ज़्यादा कितनी देर खेल लेते थे? बहुत देर नहीं, क्योंकि एक टाइम पर इंसान आके बोर हो जाता था। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ बैठे रहते थे, क्या कर सकते थे? किसी का इंतज़ार कर रहे हैं हॉस्पिटल में, मान लीजिए किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोग क्या करते? चेयर गिनते थे, लोगों के चेहरे देख रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ वहाँ पर लिखा हुआ है तो उसको पढ़ रहे हैं, किताबें होती थी। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए बात कर रहा हूँ आज क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी के चक्कर में फंस चुके हैं और बहुत ज़्यादा इसके अंदर घुस चुके हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ये हमारी सहूलियत के लिए बनाया गया था, बट कहीं ना कहीं हम इसके चक्कर में कैद हो गए हैं। और अब तो AI आ गया है, कुछ भी चीज़ हमें जानी है AI से पूछ लेते हैं, कुछ भी चीज़ हमें बनानी है AI से पूछ लेते हैं। देखिए, जितने इसके फायदे हैं उतने इसके नुकसान भी हैं, क्योंकि अगर सोशल मीडिया की लत लग जाए तो वो हानिकारक ही होती है। और मैं नहीं चाहता कि फरीदाबाद की कोई भी पब्लिक किसी भी नुकसान को झेले, क्योंकि काफ़ी बार सोशल मीडिया यूज़ करते करते लोगों को स्ट्रेस हो जाता है कि वो इंसान तो इतना खुश है, हम लोग ही क्यों दुखी है, हमारी ज़िंदगी में सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। होता है ना आप लोगों के साथ भी, सोचिए इस बारे में। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए प्यारे प्यारे गाने मैं चलाता रहूंगा। रेडियो महारानी 89.6।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, फरीदाबाद में चाहे आप सेक्टर 15 से बिलोंग करते हो, या फिर आप सेक्टर 10 से बिलोंग करते हो, या फिर आप सेक्टर 21, या फिर आप ग्रीन फील्ड से बिलोंग करते हो, रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आप लोग रेडियो महारानी सुन रहे हो इस टाइम, कहीं से भी बिलोंग करते हो। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी पर, रेडियो का गौरव है आप सभी के साथ। एंड देखो, चाहे NIT 1 की मार्केट हो, चाहे ओल्ड की मार्केट हो, चाहे NIT 5 की मार्केट हो, बल्लभगढ़ की मार्केट हो, सदर की मार्केट हो, सदर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिल्ली जा रहे हैं लोग दिवाली की शॉपिंग करने अभी से ही। वैसे श्राद्धों के टाइम पे लोग नहीं और शॉपिंग करते हैं, बट स्टिल लोग जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ लोग परेशान भी हैं क्योंकि ट्रैफिक जैम मिलता है। एक नंबर की मार्केट के अंदर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, ओल्ड की मार्केट के अंदर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, बल्लभगढ़ में तो फिर भूल ही जाओ क्योंकि वहाँ पर भी नहीं मिलती जगह कहीं पर भी गाड़ी खड़ी करने की। तो इसमें ना मेरे मन में सवाल आता है कि क्या जब ये मार्केटें बसाई जा रही थी तब किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आने वाले 40-50 साल या फिर अगले 60 साल में या फिर 20 साल में ही बोल लेते हैं कि गाड़ियों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि उस टाइम किसी को लगता नहीं था कि इतनी सारी गाड़ियाँ आ जाएगी, गाड़ी लेना इतना आसान हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम एक लग्जरी स्टेटस माना जाता था गाड़ी को। और आज की डेट में गाड़ी हर एक आम इंसान के पास है, और जिसके पास नहीं है वो सोचता है कि इस दिवाली में ले लूँगा, नए साल पे ले लूँगा, नहीं तो सेकेंड हैंड गाड़ी तो हर कोई ले ही लेता है। तो इसकी वजह से हर मार्केट में जाम हो जाता है, जिसकी वजह से सब लोग परेशान होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गाड़ी लेना बुरी बात है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, दिक्कत ये है। तो इसी के साथ साथ इस पर आप लोगों की भी कोई ना कोई राय होगी, भेजिएगा जरूर 9654896896 पर। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए क्योंकि आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे, उन्हीं में से ये गाना।

0: हेलो, मैं डॉक्टर आकिब हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद से। मेंस हेल्थ के बारे में क्या आपको इन्वेस्टिगेशंस कर लेनी चाहिए, कैसे देखना चाहिए? जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि जब 40-45 की एज के बाद में एक ईयरली आप हेल्थ पैकेज कर लें अपना, जो भी रूटीन इन्वेस्टिगेशन।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: पूरा का पूरा फरीदाबाद इस टाइम परेशान है सिर्फ एक चीज से, और उसे कहते हैं ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक जैम।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: आरजे गौरव है आप सभी के साथ। ऐसा नींद आ रही है मुझे, पता नहीं क्यों, अभी से ही बस गाने चला रहा हूँ तो जोश जगा पड़ा है, और आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो जोश डबल हो जा रहा है। और ट्रैफिक जाम जब होता है ना तो इंसान के मन में एक चीज़ आती है, यार जल्दी से घर पहुँच जाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, निकलना है मुझे यहाँ से, है ना। आप सबके मन में भी आ रहा होगा अगर गाड़ी चला रहे हैं इस टाइम और आगे वाला बहुत धीरे धीरे चला रहा है, गुस्सा आता है। बट उस गुस्से को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि गुस्सा अब आएगा आपको जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ट्रैफिक चालान को ना बिजली बिल के साथ जोड़ दो, क्योंकि बहुत हज़ार करोड़ों का ट्रैफिक चालान बकाया पड़ा है। देखो, लोगों के घर पे चालान भेजने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोग भर नहीं रहे हैं। लोगों ने बोला चलो ठीक है, लोग अदालत में क्लियर करवा लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ एक चीज़, वो कहती है कि बिजली का बिल ट्रैफिक चालान दोनों को मिक्स कर दो और भेज दो लोगों के घर पे। बट यहाँ पर एक दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत ये आएगी कि काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि कंपनी से गाड़ी मिली है लोगों को, मतलब वो जिस कंपनी में काम करते हैं तो ओनर उन्हें गाड़ी दिलवा देते हैं। आप सोचो उस गाड़ी का चालान जहाँ जाएगा कहाँ जाएगा, कंपनी के नाम पे फटेगा और कहाँ फटेगा। फिर उसके बाद वो चालान क्या सैलरी से काटा जाएगा, नहीं ना। तो ये सब चीज़ें भी मुझे लगता है इसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। अभी तो बस सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, इस पर कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ, उन्होंने बोला है देखो ये कर सकते हो आप लोग, अभी सिर्फ एक सजेशन दिया गया है। इस पर वर्क कब तक होगा ये तो वक्त बताएगा, बट मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिजली का बिल एक तरफ और ये चीज़ एक तरफ ट्रैफिक चालान। अब देखो मेरे किसी दोस्त को अगर मेरी कोई बात बुरी लग गई, वो मेरी गाड़ी मेरे से उधार पे लेके जाएगा और फिर उसको रेड लाइट जंप करेगा या फिर कुछ भी करेगा, तो नुकसान किसका होगा, मेरा होगा ना। तो ये चीज़ें भी सोचनी चाहिए, इस पर आप लोगों की भी कोई ना कोई राय बनी गई होगी। गुस्सा आया गया आप लोगों को, मुझे तो बहुत आया था। बताइए अपनी अपनी राय, नंबर है 9654896896, गौरव है मेरा नाम, अभी आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ। फिर से नंबर रिपीट कर देता हूँ, 9654896।

ऑल द विराट फैंस आउट देयर, सबके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी कुछ ऐसी है कि इस बार विराट कोहली के बारे में ही बात करने आ गया हूँ मैं। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, HR 896 सुन रहे हैं आप, मतलब मेरे शो का नाम है ये, रेडियो महारानी पर स्वागत करता हूँ। रेडियो को गौरव बुलाते हैं मुझे प्यार से, और इसी के साथ साथ विराट कोहली के जितने भी फैंस मुझे सुन रहे हैं, अगर आप सच में फैन हैं, चलो बताओ विराट कोहली की पहली गाड़ी कौन सी थी, सच सच बताना, जो मन में आ रहा है वो बताना। मैं बता सकता हूँ, पता आप लोगों को, पहली गाड़ी वो थी जिसे कहते थे टाटा सफारी। यार वो गाड़ी से बेटर गाड़ी मुझे तो कोई नहीं लगी, बट देखो उस टाइम कंप्लेंस बहुत आती थी टाटा की गाड़ियों में, तो उस टाइम लोगों का दिल भी उठ गया था उस गाड़ी से। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ उनका पहला स्पॉन्सरशिप बैट कौन सी कंपनी का था, बहुत ही ज़्यादा फेमस कंपनी है वो, स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट्स बनाती है और उसे कहते हैं बादाम, हम लोग अपनी पर्सनल लैंग्वेज में बादाम कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में वैसे उसका नाम BDM, BDM का बल्ला बोलते नहीं है, ये लेकर आओ BDM का बल्ला। और उनको पहली फ्रेंचाइजी कौन सी मिली थी जिसमें वो आज भी खेल रहे हैं, यानी कि बैंगलोर। बैंगलोर में उनको खरीदा गया था 12 लाख रुपए में, साल 2008 था वो, और उस टाइम किसी को नहीं पता था कि ये छोटा सा दिखने वाला चीकू आगे जाके कमाल करने वाला है और एक दिन RCB को एक ट्रॉफी भी दिलवाने वाला है। तो ये सब चीज़ें तो हो गई, अब आप बताओ उनका पहला TV एडवर्टाइजमेंट कौन सा था, क्योंकि मुझे तो अच्छे से याद है एक चॉकलेट की ऐड थी, और हिंट दूँ वो चॉकलेट चॉकलेट जैसी नहीं लगती थी, वेफर जैसी होती थी। अब इतना तो हिंट दे दिया है तो सोच लिया होगा वैसे आप लोगों ने, तो जब तक आप जवाब दोगे मैं ही जवाब दे देता हूँ। पहली TV ऐड थी उनकी मंच चॉकलेट की। फिर उसके बाद उनकी अगली चीज़ जो मैं पूछने जा रहा हूँ आप लोगों से वो ये है कि उनका पहला बिजनेस वेंचर क्या था, सोचो सरा इसके बारे में। एक क्लोथिंग ब्रांड, एक शू ब्रांड बोल सकते हैं, क्लोथिंग एंड लाइफस्टाइल ब्रांड बोल लो, और उसका नाम है रॉन्ग, WROGN, ये है रॉन्ग। तो ये सब चीज़ें थी विराट कोहली के बारे में, क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? नहीं पता था ना, मैंने बता दिया ना, क्योंकि मैं ऐसी ही चीज़ें लेकर आता हूँ आप सभी के लिए। तो जुड़े रहिए रेडियो महारानी के साथ, अभी आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, गौरव है मेरा नाम एंड आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

है, फन भी है, प्यार भी है, गन भी है, लड़ना तो मन भी है, मिले जे कोई चाहता है।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डेम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

कोई मुझे बताएगा टीवी पे क्या चल रहा है? नहीं, ये जो राइज एंड फॉल है, इसमें सेकंड सीजन चल रहा है इसका। खैर, मैंने तो पहला सीजन ही नहीं देखा, तो सेकंड सीजन के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। एंड सीजन टू ऑफ राइज एंड फॉल क्या है ये? एमएक्स प्लेयर एंड्रॉयड ऐप पे आप लोगों को मिल जाएगा देखने के लिए। और ये रोज दिन में 12 बजे इसका एक एपिसोड आ जाता है। और इसमें होस्ट कौन है इस बार? वीरू बाजी, वीरेंद्र सहवाग, जिनको क्रिकेट ग्राउंड में देखा गया, फिर उसके बाद कमेंट्री बॉक्स में देखा गया, और अब ये दिख रहे हैं होस्ट करते हुए शो को। 42 दिन का ये पूरा का पूरा शो है, जिसमें 15 कंटेस्टेंट्स हैं, जिन्हें बोलूं अगर सौरभ भास्कर, करण पटेल, प्रियंका चाहर चौधरी और शहजाद पूनावाला, जो इनकी लड़ाई हो गई थी अभी सिवित चौहान करके, कोई एक लड़का सिवित करके, और गौतम गुलाटी है इसमें, काजल राघवानी, तेज प्रताप यादव, सारा गुरपाल, जिन्होंने कुछ चैट्स दिखाई थी। आप सभी को पता है किसकी चैट्स थी वो? क्योंकि मुझे भी नहीं पता। मतलब वीरू बाजी को चैट दिखाई कि क्रिकेटर मुझे मैसेज करते हैं। और इसके अलावा अनीश भगत, निहारिका तिवारी, सिवित तोमर, जिनको बाहर निकाल दिया गया क्योंकि लड़ाई हो गई थी शहजाद पूनावाला के साथ। इनके अलावा कायरा अनु और राज ग्रोवर एंड मनीष कश्यप। तो ये सारे के सारे लोग एक घर के अंदर हैं, राइज एंड फॉल, मतलब एक तो लग्जरी वाले जीवन जी रहे हैं, दूसरे नीचे रहते हैं, ऐसे करके कुछ था। ऐसा ही तो था, पहला सीजन भी तो यही था। पहले सीजन में एक दिल्ली का लड़का भी था, आप सभी को याद होगा। खैर, ये सब तो चलता ही रहता है। तो मुझे दो चीज़ें समझ नहीं आती, एक तो ये राइज एंड फॉल, एक स्प्लिट्स विला। तीन चीज़ें बोल देता हूँ, बिग बॉस भी समझ नहीं आता। तो मैं तो बस इतना बोलूँगा कि बिग बॉस क्या देखना है, अपने ही घर का कलेश देख लो, क्योंकि घर में कलेश बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि गाने आप सभी के लिए चलते रहेंगे। रेडियो महारानी 89.6 पर।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी कुर्सी जमा ली है कि बाकी फिल्म्स को जगह ढूंढनी पड़ रही है, मिर्जापुर द मूवी। अभी जो ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, फिल्म को थिएटर्स में आए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन क्रेज भाई अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मजेदार बात यह है कि अब कॉम्पिटिशन भी सामने है। अक्षय कुमार और सैफ की हैवान रिलीज हो चुकी है, लेकिन मिर्जापुर अपनी पकड़ बनाए हुए है। डे 8 तक फिल्म ने इंडिया में करीब 158 करोड़ नेट का आंकड़ा छू लिया है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 225 करोड़ के पार बताया जा रहा है। मतलब कालीन भैया का रूल अभी खत्म नहीं हुआ है बॉक्स ऑफिस पर भी। लेकिन इसी बीच शोभा डे के रिव्यू ने भी खूब अटेंशन खींच लिया है। इन्होंने कहा है कि फिल्म देखते हुए वो करीब 15 मिनट के लिए सो गई थी। अब ऑडियंस बोल रही है मिर्जापुर और शोभा डे बोल रही है थोड़ा आराम करो। सिनेमा का कैप्सूल में एंटरटेनमेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

क्या आप लोगों ने अभी तक हनुमान अंश देख ली? अगर आपने हनुमान अंश अभी तक नहीं देखी है तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं आप। और उसका एक गाना तो सुनी लिया होगा जो कि सुधीर लोधी ने गाया है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। वो गाना किसी रीजन से मैं यहाँ चला नहीं सकता, बट काहे की वह नाव बनाई, काहे की पतवार। ही इज ब्लाइंड, मतलब ही कांट सी, और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तौर पे, मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा, बहुत ही अच्छे से एक पूरा गाना बनाया। ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नहीं हार दी, तो सब कुछ छोड़ दिया उनके ऊपर। और इस चीज़ का ना फल भी मिलता है, कर्म भी करे उन्होंने साथ साथ, और उनको फिल्म मिली, फिल्म में गाना मिला, और गाना इतना वायरल हुआ कि सब लोगों ने जानना चाहा कि ये सिंगर आखिर में है कौन। सबको पता लगा सुधीर लोधी इनका नाम है, और एमपी के रहने वाले हैं ये, और दृष्टिबाधित हैं। साथ ही साथ इनकी आवाज़ की चर्चा हो रही है हर जगह, और सब ने ये बोला कि ये गाना लिख के किसने दिया इन्हें, तो पता चला कि इन्होंने खुद से ही गाना लिखा है। लिखा भी क्या है, अब देख नहीं सकते तो लिख भी नहीं सकते, तो इन्होंने ये खुद से याद किया, मेमोराइज किया, और फिर उसके बाद इन्होंने इस गाने को कंपोज भी खुद किया, और फिर एक फिल्म में इस गाने को ले लिया गया। और अब जो होने जा रहा है वो शायद एक चमत्कार ही मान लीजिए, क्योंकि हनुमान अंश मूवी खुद चमत्कार से कम नहीं है। और इसके बाद अब इस फिल्म में इस गाने को लिया गया, तो इस फिल्म की जो प्रोड्यूसर हैं अनुप्रिया जी, उन्होंने बोला है कि इनका ट्रीटमेंट कराया जाएगा, इनकी आंखों का ट्रीटमेंट मुंबई में कराया जाएगा। तो हनुमान अंश सिंगर टू गेट आईज ट्रीटमेंट, ये चीज़ मैंने पढ़ी तो आई वॉज लाइक टू मच हैप्पी, बहुत ज़्यादा, मतलब रोंगटे खड़े हो गए मेरे। मैंने कहा यार, एक इंसान जो सड़क पर गाना गाता था और उसको इतनी बड़ी रिकग्निशन मिली पहले, और अब वो जल्द ही हनुमान जी को अपनी आंखों से देखने वाले हैं। तो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने इनको सपोर्ट किया। और साथ ही साथ रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, अभी मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, बट हाँ गाना ज़रूर चलाऊंगा आप सभी के लिए। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना मैं हूँ।

0: फरीदाबाद गेम छो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
1: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
0: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
1: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
0: प्ले सेम प्लेटर्स ग्रेटर फरीदाबाद में।
1: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
0: उठा लो डांडिया स्टिक्स और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
1: रास रंगीलो, दिल से दोस्ती क्लब के साथ।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Warm up at least 5 to 10 minutes minimum होना ही चाहिए running से पहले. उसमें आप brisk walk कर सकते हैं, jogging कर सकते हैं, gentle stretches कर सकते हैं. दूसरा point hydration का है. Hydration considering depend करेगा मौसम कैसा है, गर्मी कितनी है. पर्सन टू पर्सन वेरिएबिलिटी है, उनको स्वेटिंग कितना आता है. हाइड्रेशन के लिए ये भी चीज़ फोकस करना जरूरी है. ये सडनली कोई न्यू एनर्जी ड्रिंक्स या कोई और ट्रायल नहीं करना है. जो रूटीन में आपका हाइड्रेशन की स्ट्रेटजीज है उसी को फॉलो करें. डॉक्टर कॉलिंग.

0: मौसम का कुछ पता चला आप लोगों को? नहीं नहीं, आगे आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है इसका कुछ पता चला आप लोगों को? क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार अक्टूबर स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा गर्म रहेगा, बट अक्टूबर के मिड के बाद ठंडक शुरू हो सकती है।
1: रेडियो का गौरव।
0: अक्टूबर का अगर हम लोग वेदर प्रेडिक्शन करें ना, तो ऐसा है कि इंडिया में थोड़ी सी गर्मी बढ़ सकती है स्टार्टिंग के दिनों में, और फिर बाद में ठंड शुरू हो जाएगी। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ गौरव आपके साथ। एंड देखो, मौसम विभाग का तो कहना है कि अब आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों को मैक्सिमम टेम्परेचर 38 तक दिख सकता है और रात को 19 डिग्री तक पहुंच जाएगा। और बोला तो ये भी जा रहा है कि स्टार्टिंग के जो अक्टूबर के दिन है वो थोड़े से गर्म रहेंगे, थोड़े से गुनगुने मजाक में बोले तो गुनगुने टाइप के रहेंगे, वार्म रहेगा, ह्यूमिड रहेगा। और उसके बाद मिड टू लेट अक्टूबर जो मेन है, जहां पर हमारी नवरात्रे चालू हो जाएंगे, नवरात्रे खत्म होने वाले होंगे, तब आपको मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री तक ही दिखाई देगा और मिनिमम टेम्परेचर 16 तक शिफ्ट हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो रेनफॉल की अगर बात करें तो मॉनसून ऑफिशियली खत्म हो चुका है, डाउन की तरफ जा चुका है, तो ड्राई और सनी रहेगा दिल्ली एनसीआर में। ह्यूमिडिटी स्टार्टिंग में थोड़ी सी रह सकती है। तो ये है पूरा का पूरा हाल कि अक्टूबर में क्या होने वाला है, क्योंकि कल से ही अक्टूबर शुरू हो रहा है। मेरे दोस्त, क्या कर रहे हो आप? नहीं नहीं यार, क्या कर रहे हैं आप? मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये क्योंकि देखो, बारिश मुझे बहुत पसंद है, जो कि इस साल तो आई नहीं। और उसके साथ साथ फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, नोएडा हो, दिल्ली एनसीआर हो, कोई भी जगह हो, सब जगह सूखा सूखा सूखा सूखा सा ही दिखाई दिया। और अब बारिश का कोई चांस नहीं है, तो आप लोग अच्छे से अपनी चीज़ें प्लान कर सकते हैं। और वैसे भी लंबा वाला वीकेंड आ रहा है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्लान कीजिए। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी 89.6 FM सुनते जाइए, क्योंकि गाने और बातें तो आप सभी के लिए चलते रहेंगे मेरे दोस्त।

सिनेमा का कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर वालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहां सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का ये नया अवतार ऑडियंस को कितना सरप्राइज करने वाला है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

क्या आप लोग भी बिना कुछ सोचे समझे सोशल मीडिया पर कुछ भी अपलोड कर देते हैं? तो मेरे दोस्त, आपके साथ कुछ ना कुछ घपला हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली एक इन्फ्लुएंसर ने अपने सोने चांदी जवाहरात कैश सब कुछ सोशल मीडिया पर दिखाया। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। और उसके बाद जो हुआ ना, वो सुन के आप लोग भी बोलोगे ये तो होना ही था। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं गौरव आपके साथ। सोशल मीडिया पर काफ़ी बार हम लोग कुछ भी चीज़ दिखा देते हैं। एक इंसान है, एक व्लॉगर है, जो अपने पूरा घर दिखा रखा है। उसने दिखा रखा है मेरे पास कितनी गाड़ी है, उसने दिखा रखा है इतना बड़ा घर है मेरा, मेरे सामने वाला प्लॉट भी खेल लिया, लेफ्ट वाला भी, राइट वाला भी, सामने एडवेंचर जोन बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। समझ तो गए होंगे आप लोग। खैर, मैं उनको ट्रोल नहीं कर रहा हूं, बट मैं बात करना चाह रहा हूं कि उनको देखा देखी लोगों ने अपने घर की चीज़ें एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। अरे मेरे दोस्त, वो व्लॉगर है, वो उसने उसी से ही अपना सब कुछ कमाया है एंड वो डेली वीडियोस बनाता है। बट आप ये सब मत कीजिएगा। अगर आप भी ऐसा कुछ करेंगे तो आपके साथ भी यही हो सकता है जो इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ हुआ। अब हुआ ये कि एक लेडी इन्फ्लुएंसर है, वो वीडियोस बना के डालती थी, और एक दिन अभी शायद दिवाली की सफाई कर रही होंगी, सोना चांदी जेवर कैश सब कुछ दिखा दिया वीडियो में, देखो जी मेरे पास ये है, देखो जी मेरे पास वो है। अब वो वीडियोस डालती थी हमेशा से, तो लोगों को पता था कि वो रहती कहाँ है, और लोगों को ये तक पता होता था कि वो कहाँ जा रही है, क्योंकि वो हर चीज़ अपडेट करती थी कि अब मैं यहाँ जा रही हूँ, कल मैं वहाँ जाऊँगी, परसों मैं वहाँ जाऊँगी। तो उन्होंने ऐसे ही अपडेट डाल दिया कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। एंड जिस दिन वो घर पर नहीं थी, तो फिर चोरों ने लगा दी थी सेंध, मतलब चोर उनके घर में घुस गए, उनके सारे हीरे जवाहरात ज्वेलरी सब कुछ उठा के ले गए, कैश भी। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि किसी की देखा देखी अपनी सारी डिटेल्स डिस्क्लोज मत कीजिएगा। और जिस भी ब्लॉगर को आप देखते हो ना, जो फेमस हो चुके हैं, जिनकी वीडियोस आप लोग देखते हो गए, हे गाइज वेलकम बैक टू माई रेडियो, मतलब मैं तो ऐसे नहीं बोल सकता, बट वो इंसान हमेशा 2 से 3 दिन की बैक की वीडियोज़ बना के डालता है। तो आप लोग कभी देखते हो ना उनकी वीडियोज़, जब रोज़ आती है, वो रोज़ की चीज़ें नहीं दिखाते हैं ब्रो। तो सोचिए इसके बारे में, और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि बातें और गाने चलते रहेंगे, उन्हीं में से ये गाना आप सभी के लिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट वॉट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डिम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

0: हाल है मेरे दोस्त, क्या हाल है। वक्त हो चुका है उस सेगमेंट का जब हम लोग आपसे पूछते हैं कि क्या हाल है। आप बस ये मत बोलना सब ठीक। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। और वक्त हो चुका है उस सेगमेंट का जिसे कहते हैं क्या हाल है। और आज मैंने सोचा क्यों ना बात की जाए उस आशिक दोस्त की जिसका हमेशा ही दिल आशिकी में डूबा रहता है। उससे कभी भी पूछ लो क्या हाल है, वो बोलेगा भाई मैं तो ठीक हूँ, बस उसका आजकल थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है और हर्ट भी कर रहा है। उसका मैसेज आ गया तो हमारा दोस्त अब दुनिया में किसी और चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके अलावा उससे पूछ लो क्या हाल है, वो बोलेगा फ़ोन की बैटरी 2% है लेकिन उसका रिप्लाई आने तक फ़ोन चार्ज पे नहीं लगाऊंगा। देख रहे हो आशिकी ये होती है। और मेरा दोस्त ऐसे बोलता है भाई उसने बोला कुछ नहीं हुआ और मेरा दोस्त 45 मिनट से डिटेक्टिव बना हुआ है। ऐसे भी लोग होते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड का मूड ख़राब है तो भाई का मूड भी नेशनल इमरजेंसी है, मतलब अपने आप ही मूड ख़राब हो जाएगा इसका भी। क्यों होते हैं ऐसे दोस्त। अभी कभी भी आप अपने दोस्त से पूछ लो, आशिक दोस्त से, कि क्या हाल है, वो बोलेगा भाई डेट पे जा रहा है। कपड़े ऐसे पहने हैं जैसे उसकी शादी खुद की हो। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता, डेट पे जाना और शादी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, मगर इन लोगों को क्यों नहीं समझ आता। उसका नाम फ़ोन पे किसी और नाम से सेव्ड है। प्राइवेसी नहीं भाई, घर वालों से सर्वाइवल की स्ट्रेटेजी है ये। क्योंकि कुछ लोग ऐसे करते हैं ना, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम कालू प्लम्बर के नाम से भी रख देते हैं। उसके अलावा भाई उसकी डीपी चेंज नहीं हुई और उसकी डीपी चेंज हुई है तो मेरा दोस्त भी 20 मिनट से एनालिसिस कर रहा है कि किसके लिए की है उसने डीपी चेंज। काफ़ी बार ऐसा होता है ना, शक्की दोस्त, और दोस्त पहले 24 घंटे में 23 घंटे उससे बात करता है, बाकी 1 घंटा उसके रिप्लाई का वेट करता है। तो सिंगल साइड आशिकी है, कब तक चलेगी भगवान जाने। मगर अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर एक गाना जरूर चलेगा, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर। ये था आज का क्या हाल है।
1: Young money.

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

कभी कभी जब मैं गाने सुनता हूँ ना तो मेरा दिल तो खुश हो जाता है, बट फिर उसके बाद मेरे मन में सवाल ये आता है कि ये गाने बनाने का दिमाग आता कहाँ से है, कहाँ से ये राइमिंग करते हैं और कहाँ से ये धुन पकड़ते हैं और कहाँ से धुन बना देते हैं। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। और जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी कि लोग गाने बना कैसे देते हैं, तो फिर मुझे पता चला कि बॉलीवुड ने भी गाना पहला कौन सा बनाया था, सिंगर थे वजीर मोहम्मद खान और फिरोज शाह मिस्त्री का म्यूजिक था, और पता है कौन सा म्यूजिक था, वो गाना था दे दे खुदा के नाम पर, और ये फिल्म थी आलमारा। और आप सभी को पता है आलमारा इंडिया की पहली टॉकी फिल्म माना जाता है उसको, मतलब जिसमें बोल थे, शब्द थे, और ये आया था गाना 1931 में। सोचिए इतना ज़्यादा

पुराना गाना, मतलब मैंने तो सुना भी नहीं है, बट अगर मैं अभी चलाऊंगा शायद ही कोई सुनने में इंटरेस्टेड भी होगा, क्योंकि उस टाइम की ट्यून्स डिफरेंट थी, उस वक्त कुछ और ही हुआ करता था, उस वक्त सिंगर स्क्रीन पर खुद नहीं आते थे, बहुत कम गाने बनाते थे, और क्योंकि प्लेबैक सिंगिंग का सिस्टम उस टाइम डेवलप हुआ नहीं था, तो वो बस आके चुपचाप गाने गा के चले जाते थे। और एक और चीज़ आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अब साल 2026 की अगर हम लोग बात करें तो राइट नाउ क्या हो रहा है, राइट नाउ गाने रिक्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के पास ना अब नए गाने बचे ही नहीं हैं। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के गाने ले आते हैं या तो, या फिर खुद से कोशिश करते हैं और रिक्रिएट कर देते हैं। जैसे कि अभी सबसे लेटेस्ट गाना जो रिक्रिएट हुआ है वो है आँखों से तूने ये क्या कह दिया, सुना ये गाना आँखों से तूने 2.0, ये करेंटली रिक्रिएट किया गया है, और असलियत में ये फिल्म गुलाम का था, 1998 में फिल्म आई थी गुलाम, और कुमार सानू और अलका याग्निक का ये गाना था, जतिन ललित के म्यूज़िक पे ये गाना बना था, और अब भाई तेरा स्टार है साल 2026 की ये मूवी, उसमें इस गाने को रिक्रिएट किया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है देखो कहीं ना कहीं अभी भी पुराने गानों का दौर चलता ही जा रहा है। तो ये था आज का म्यूज़िक डीकोड, जहां पर म्यूज़िक को डीकोड तो नहीं किया बट हाँ एक नए गाने के बारे में मैंने आप सभी को ज़रूर बताया। ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मैं हूँ गौरव आपके साथ।

बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्टर स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेन

गाइस, क्या आपको भी लगता है कि आप लोग सोशल मीडिया से एडिक्टेड हो चुके हैं? क्योंकि देखो, नशा ना किसी भी चीज का हो सकता है, वो सोशल मीडिया का भी हो सकता है और वो बाकी चीज का भी हो सकता है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। एंड आपने सोचा कि कभी क्या मेरा स्क्रीन टाइम कितना होगा? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है यार। स्क्रीन टाइम जब आप सर्च करोगे ना तो आप लोगों को भी पता चलेगा, हम लोगों का भी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। एक्चुअली मैं, आप कभी भी अपने सोशल मीडिया को अकाउंट को खोलिए, उसमें सेक्शंस होते हैं बहुत सारे, सेटिंग्स में जाके आपको मिल जाएगा अकाउंट सेंटर में, आपको पता लगेगा कि आप दिन में कितने घंटे वहाँ पर बिताते हैं। और मैं ये सोच रहा था कि क्या हम लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया हमको यूज़ कर रहा है, क्योंकि एक डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन पता है ना आपको, एंटी स्ट्रेस हार्मोन कह लो इसको, या फिर कह लो फील गुड हार्मोन, जो हम लोगों को अच्छा फील करवाता है। हम लोग रील देखना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद स्क्रॉल करते जाते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं, और ऐसे ही करते करते वक्त का पता नहीं चलता। मैं इमेजिन करता हूँ वो वक्त जब हमारे पास फ़ोन ही नहीं हुआ करते थे, चलो मैं बोलूँगा स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे। उस टाइम एक गेम आया करती थी, वो जो फ़ोन छोटे छोटे नोकिया के फ़ोन थे उसमें गेम होती थी स्नेक वाली, बॉल वाली, बाउंस वाली, उससे ज़्यादा कितनी देर खेल लेते थे? बहुत देर नहीं, क्योंकि एक टाइम पर इंसान आके बोर हो जाता था। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ बैठे रहते थे, क्या कर सकते थे? किसी का इंतज़ार कर रहे हैं हॉस्पिटल में, मान लीजिए किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोग क्या करते? चेयर गिनते थे, लोगों के चेहरे देख रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ वहाँ पर लिखा हुआ है तो उसको पढ़ रहे हैं, किताबें होती थी। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए बात कर रहा हूँ आज क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी के चक्कर में फंस चुके हैं और बहुत ज़्यादा इसके अंदर घुस चुके हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ये हमारी सहूलियत के लिए बनाया गया था, बट कहीं ना कहीं हम इसके चक्कर में कैद हो गए हैं। और अब तो AI आ गया है, कुछ भी चीज़ हमें जानी है AI से पूछ लेते हैं, कुछ भी चीज़ हमें बनानी है AI से पूछ लेते हैं। देखिए, जितने इसके फायदे हैं उतने इसके नुकसान भी हैं, क्योंकि अगर सोशल मीडिया की लत लग जाए तो वो हानिकारक ही होती है। और मैं नहीं चाहता कि फरीदाबाद की कोई भी पब्लिक किसी भी नुकसान को झेले, क्योंकि काफ़ी बार सोशल मीडिया यूज़ करते करते लोगों को स्ट्रेस हो जाता है कि वो इंसान तो इतना खुश है, हम लोग ही क्यों दुखी है, हमारी ज़िंदगी में सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। होता है ना आप लोगों के साथ भी, सोचिए इस बारे में। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए प्यारे प्यारे गाने मैं चलाता रहूँगा। रेडियो महारानी थी ना?

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो आयशा।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो, सो बी कॉन्फिडेंट।
2: तुम जितनी कोशिश कर लो आयशा, तुम सारा होगा कोई।
3: Ladies and gentlemen, you are not

टू ऑल द विराट फैंस आउट देयर, सबके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी कुछ ऐसी है कि इस बार विराट कोहली के बारे में ही बात करने आ गया हूँ मैं। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, HR 8 9 6 सुन रहे हैं आप, मतलब मेरे शो का नाम है ये, रेडियो महारानी पर स्वागत करता हूँ। रेडियो को गौरव बुलाते हैं मुझे प्यार से, और इसी के साथ साथ विराट कोहली के जितने भी फैंस मुझे सुन रहे हैं, अगर आप सच में फैन हैं, चलो बताओ विराट कोहली की पहली गाड़ी कौन सी थी, सब सच बताना, जो मन में आ रहा है वो बताना। मैं बता सकता हूँ, पता आप लोगों को, पहली गाड़ी वो थी जिसे कहते थे टाटा सफारी। यार वो गाड़ी से बेटर गाड़ी मुझे तो कोई नहीं लगी, बट देखो उस टाइम कंप्लेंट्स बहुत आती थी टाटा की गाड़ियों में, तो उस टाइम लोगों का दिल भी उठ गया था उस गाड़ी से। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ उनका पहला स्पॉन्सरशिप बैट कौन सी कंपनी का था, बहुत ही ज़्यादा फेमस कंपनी है वो, स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट्स बनाती है और उसे कहते हैं बादाम, हम लोग अपनी पर्सनल लैंग्वेज में बादाम कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में वैसे उसका नाम बीडीएम का बल्ला बोलते नहीं है, ये लेकर आओ बीडीएम का बल्ला। और उनको पहली फ्रेंचाइजी कौन सी मिली थी जिसमें वो आज भी खेल रहे हैं, यानी कि बैंगलोर। बैंगलोर में उनको खरीदा गया था 12 लाख रुपए में, साल 2008 था वो, और उस टाइम किसी को नहीं पता था कि ये छोटा सा दिखने वाला चीकू आगे जाके कमाल करने वाला है और एक दिन RCB को एक ट्रॉफी भी दिलवाने वाला है। तो ये सब चीज़ें तो हो गई, अब आप बताओ उनका पहला TV एडवर्टाइजमेंट कौन सा था, क्योंकि मुझे तो अच्छे से याद है एक चॉकलेट की एड थी, और हिंट दूँ वो चॉकलेट चॉकलेट जैसी नहीं लगती थी, वेफर जैसी होती थी। अब इतना तो हिंट दे दिया है तो सोच लिया होगा वैसे आप लोगों ने, तो जब तक आप जवाब दोगे मैं ही जवाब दे देता हूँ। पहली टीवी ऐड थी उनकी मंच चॉकलेट की। फिर उसके बाद उनकी अगली चीज़ जो मैं पूछने जा रहा हूँ आप लोगों से वो ये है कि उनका पहला बिजनेस वेंचर क्या था, सोचो सरा इसके बारे में। एक क्लोथिंग ब्रांड, एक शू ब्रांड बोल सकते हैं, क्लोथिंग एंड लाइफस्टाइल ब्रांड बोल लो, और उसका नाम है रॉन्ग, WROGN, ये है रॉन्ग। तो ये सब चीज़ें थी विराट कोहली के बारे में, क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? नहीं पता था ना, मैंने बता दिया ना, क्योंकि मैं ऐसी ही चीज़ें लेकर आता हूँ आप सभी के लिए। तो जुड़े रहिए रेडियो महारानी के साथ, अभी आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, गौरव है मेरा नाम एंड आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

भी है, प्यार भी है, गन भी है, लड़ना पैमान भी है, मिले जे कोई चाहता है।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डेम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

कुछ लोग जिम ज्वाइन करते नहीं है मगर उससे पहले ही प्रोटीन पाउडर ले आते हैं, उससे पहले ही क्रिटीन ले आते हैं, उससे पहले ही प्री वर्कआउट ले आते हैं। सबका अपना अपना एक महत्व होता है, मगर पहले जिम तो ज्वाइन करो, पहले कंसिस्टेंसी तो दिखाओ, उसके बाद ये सब कुछ ले आना। रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। वक्त हो चुका है जिम ब्रो का, और जिम ब्रो आप सभी के साथ बैठा है। अगर आप लगता है मैं जिम नहीं जाता, मैं जाता हूँ, डेली जाता हूँ जिम, मैं मिस नहीं कर सकता। आई एम सो पंक्चुअल अबाउट जिम, आई एम सो डिसिप्लिन अबाउट जिम। देखिए, जिम जाने वालों के लिए मैं एक बस बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग जिम ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो अपने मन से पहली चीज़ ये निकाल दो कि जिम जा रहे हैं तो प्रोटीन की ज़रूरत होगी ही होगी। अगर आपका खाने से ही प्रोटीन आपका इनटेक पूरा हो रहा है, देन नो नीड टू बाय प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर इज अ सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब पता है ना, जो सप्लीमेंट्री टीचर आती थी हम लोगों के, जब हमारी क्लास टीचर एब्सेंट होती थी, सप्लीमेंट्री टीचर नहीं आती थी दूसरी, तो उसी तरह से प्रोटीन के सोर्स को सप्लीमेंट करता है सप्लीमेंट पाउडर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले जिम जाइए, कंसिस्टेंसी दिखाइए, डाइट को रेगुलर कीजिए, अपनी डाइट से ऑयल को रिड्यूस कीजिए और प्रोटीन को मतलब बढ़ाइए, और इसी के साथ साथ खाने पीने पे ध्यान दीजिए, वाटर इंटेक पे ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। अब आपको प्रोटीन पाउडर सेलेक्ट कैसे करना है, बहुत सारे टाइप के आते हैं, वे प्रोटीन है, हाइड्रोलाइज्ड है, फिर उसके बाद प्लांट प्रोटीन है। तो सबसे पहले आपको अपने गट हेल्थ के बारे में चेक करवाना है। अगर चेक करवा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप एक सैंपल लेकर आ सकते हैं प्रोटीन का, और उस सैंपल को ट्राई कीजिए और चेक कीजिए कि कहीं आपको ब्लोटिंग तो नहीं हो रही है, कहीं गैस तो ज़्यादा नहीं बन रही है। तो इन सब चीज़ों को चेक कीजिए, उसके बाद ही आपको प्रोटीन पाउडर खरीदना है। और किसी और के कहने पर कभी भी प्रोटीन पाउडर मत कीजिए, मत खरीदिए, क्योंकि सबका बॉडी टाइप डिफरेंट है। अगर उसके शरीर पर असर अच्छा चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आपके शरीर पर भी अच्छा ही असर होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा चेक कीजिए। और मैं तो ये बोलूँगा, देखो ज़्यादा प्रोटीन इंटेक भी नहीं करना है, बट हाँ, जितनी बॉडी की नीड है उतना प्रोटीन तो आप लोगों को चाहिए ही होगा। अब ये कैसे पता करेंगे बॉडी को कितनी नीड है? चैट जीपीटी अपने पास, जेमिनाई अपने पास, उनसे पूछिए एक बार, वो सब कुछ बता देंगे। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी एंजॉय कीजिए। आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे और उन्हीं में से ये गाना रेडियो।

सिनेमा का कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर वालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहाँ सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का ये नया अवतार ऑडियंस को कितना सरप्राइज करने वाला है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

रेडियो का गौरव तो है आप सभी के साथ। बहुत देर से 5 बजे से 9 बजे तक सोमवार से शुक्रवार मैं आता हूं, और एक चीज मैं अभी आप सभी को याद दिला देना चाहता हूं। जो भी लोग अभी अभी मेरे साथ जुड़े हैं उन सबको बता दूं, लंबा वाला वीकेंड इज वेटिंग फॉर यू गाइज। छुट्टी ले लो ना कल की, आज ऑफिस में मेल डाल दो, या फिर कल सुबह सुबह उठते ही सर को बोल देना मैं नहीं आ रहा मैं ऐसे बोल देना उनको, फिर शायद वो बोलेंगे कभी मत आना। और देखो कल पहली तारीख है, किसी लोगों की सैलरी आने वाली है, किसी की सैलरी आज भी आ जाती है। मेरा एक दोस्त है उसकी मंथ एंड पे सैलरी आती है, सोचो कितना खुश नसीब है वो। बट नहीं, मैं तो बोलूँगा बदनसीब है वो, क्योंकि जब मेरी सैलरी आती है उस टाइम तक उसकी खत्म भी हो जाती है। मेरी सैलरी आपको पता है मिड मंथ में आती है, सिर्फ मेरी टीम की नहीं, सिर्फ मेरी, पता नहीं क्यों बट होता है मेरे साथ ऐसा। और इसके अलावा मैं आप सभी से बात करूँ तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में मैंने आज बात करी, और मैंने बताया कि कैसे अपने घर की सारी डिटेल दे रही थी इंस्टाग्राम पे, सब चीज़ें कि मैं यहाँ जाने वाली हूँ, मैं वहाँ जाने वाली हूँ, मेरे पास इतना सोना है, इतना कैश है, इतना चांदी है, सब गायब हो गया घर से। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पर कुछ भी डालने से पहले 10 बार सोचे उस चीज़ को, और फिर उसके बाद उसको अपलोड कीजिए। और इसी के साथ साथ मौसम की अगर हम लोग बात करें तो अक्टूबर आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा होने वाला है। स्टार्टिंग के दिन थोड़े से गर्म रह सकते हैं, बट मिड अक्टूबर में आप लोगों को बहुत ही अच्छा वाला प्लेजेंट मौसम देखने को मिलेगा, और उसके बाद और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा 20 अक्टूबर के बाद, दशहरा के बाद। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप लोगों को नहीं लगता कि ये जो अक्टूबर एंड वाला मौसम होता है ये हमेशा रहना चाहिए? उस टाइम मेरा बर्थडे आता ना एक्चुअली, तो मौसम अच्छा हो जाता है अपने आप ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे साल भर ऐसा मौसम रहना चाहिए, ना गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, ठीक ठाक मौसम है, पंखे से काम चल जाता है, और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी खर्च नहीं होती है कि नहीं, ज़्यादा मोटे मोटे कपड़े भी नहीं पहनने पड़ते। चलिए अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, ऐसी बातें तो होती रहेंगी, मगर मेरा हो गया जाने का टाइम। सो दिस इज आरजे गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ अच्छा।

रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी में ना इतने गहरे उतर जाते हैं कि उनके बाद ये सवाल नहीं रहता कि हम उन्हें भूल पाएंगे कि नहीं। सवाल ये होता है कि उनके बिना जीना सीखने में कितना वक्त लगेगा। और शायद प्यार की सबसे मुश्किल घड़ी यही होती है जब इंसान चला जाता है लेकिन उसके साथ बिताई हुई जिंदगी जाने से मना कर देती है ना। वेलकम टू इश्क बाजिया, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके रात के इस हिस्से में जहाँ हम मिलते हैं इश्क शायराना में, जहाँ शायरी किसी शायर के अल्फाजों में नहीं होती बल्कि उन लोगों की आवाजों में होती है जो अपनी फीलिंग्स को ठीक से समझा नहीं पाते हैं। तो आज की रात का एक शेर है, एक समंदर है जो मेरे काबू में है और एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता, एक उम्र जो बितानी है उसके बगैर और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता। कितनी अजीब बात है ना, कभी कभी इंसान पूरी जिंदगी किसी के बिना जीने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन उसके बिना एक शाम बिताना मुश्किल हो जाता है। हम फ्यूचर के बड़े बड़े फैसले लेते हैं लेकिन प्रेजेंट का एक छोटा सा खालीपन हमसे सहा नहीं जाता। शायद इसीलिए मोहब्बत मुश्किल नहीं होती, मोहब्बत के बाद बची हुई जिंदगी मुश्किल होती है। मैं हूँ आपके साथ इश्क वाली गीत। तो आज की रात बात करेंगे उसी खाली जगह की जो किसी के जाने के बाद सिर्फ दिल में नहीं पूरी जिंदगी में बन जाती है। स्टे ट्यून्ड, अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: फरीदाबाद गेम छो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
2: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
1: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
2: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
1: प्लेस एंड प्लेटर्स ग्रेटर फरीदाबाद में।
2: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
1: उठा लो डांडिया स्टिक्स और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
2: रास रंगीलो, दिल से दोस्ती क्लब के साथ।

आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। और आज का शेर कहता है, एक उम्र जो बितानी है उसके बगैर और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता। कितनी आसानी से कह देते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग, लेकिन कुछ लोग वक्त के साथ कम नहीं होते, वो बस हमारी आदतों में शामिल हो जाते हैं। उनके बिना जीना पॉसिबल तो होता है लेकिन नेचुरल नहीं लगता। और यही फर्क है किसी की कमी और किसी की जगह में। कमी पूरी हो सकती है लेकिन जगह नहीं। कुछ लोग चले जाने के बाद भी हमारी जिंदगी में मौजूद रहते हैं, बस उस पल में जहाँ हम सोचते हैं अगर वो होता तो शायद ऐसा होता। और शायद यही प्यार है, किसी को अपने पास रखने की जिद नहीं बल्कि उनके बिना भी उसकी मौजूदगी का महसूस होना। स्टे विद मी, अब ये गाना और उसके बाद बात उस खतरे की, जैसे संभालना सबसे मुश्किल होता है। मैं आपके साथ गीत हूँ।

0: Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारे चीज, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत जरूरी है. ये सब चीजें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है.
1: डॉक्टर कॉलिंग.
2: गुमसुम गुमसुम गुपचुप.

वेलकम बैक टू इश्क बाजिया, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। और कहते हैं ना कि एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता, और शायद यही लाइन सबसे ज्यादा सच है, क्योंकि जिंदगी का पूरा समंदर हम पार कर लेते हैं लेकिन किसी एक इंसान की याद का एक छोटा सा कतरा हमें डुबो देता है। हम मुश्किल वक्त से निकल आते हैं, लोगों के बदल जाने को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ तक कि खुद को भी बदल लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात, एक नाम, एक एहसास, और हम वहीं लौट जाते हैं जहाँ से निकलने में हमें साल लग गए थे। शायद इंसान मजबूत होता है लेकिन दिल हमेशा नहीं, और शायद यही हमारी सबसे खूबसूरत कमजोरी है कि हम पूरी दुनिया संभाल सकते हैं लेकिन जिस इंसान को दिल ने अपना मान लिया हो उसकी कमी का एक खतरा भी नहीं। और यही तो है शायरी, लेकिन उनके पीछे एक पूरी उम्र खड़ी होती है। गाना सुनते हैं क्योंकि कुछ एहसासों को समझाने के लिए शब्द नहीं बल्कि म्यूजिक चाहिए, क्यों है ना।

बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्टर स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

उम्र जो बितानी है उसके बगैर और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता। कितनी बड़ी बात है। कभी कभी हमें पूरी जिंदगी से डर नहीं लगता, बस उस एक पल से डर लगता है जिसमें हमें उसके बिना होना पड़ता है। मैं हूँ आपके साथ इश्क वाली गीत, और आज का ये था इश्क शायराना सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर। रात बाकी है, एहसास बाकी है, और इश्क बाजिया भी बाकी है। रेट्रो इश्क लेकर आऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए।

कभी कभी ना सबसे खूबसूरत लव स्टोरी वो होती है जिसके बारे में दुनिया को कम पता होता है। ना कोई फिल्मी डायलॉग, ना कोई ग्रैंड प्रपोजल, बस एक इंसान दूसरे इंसान को याद करता है और अपनी वो याद एक कागज पर लिख देता है। वेलकम टू इश्क बाजियां, मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, और ये है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेकंड सेगमेंट रेट्रो इश्क, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। आज की कहानी किसी सुपरस्टार की नहीं, आज की कहानी है धीरू मिस्त्री और कुसुम की। 1966 में धीरू की सगाई कुसुम से हुई। कुसुम अहमदाबाद में थी और धीरू वडोदरा में। उस टाइम ना व्हाट्सएप था ना वीडियो कॉल, और रेगुलर फोन कॉल भी कोई आसान चीज नहीं थी। तो दोनों ने कुछ ऐसा रास्ता चुना जो शायद आज बहुत पुराना लगता है, और वो रास्ता था चिट्ठियाँ यानी कि खत। एक लेटर गया, फिर उसका इंतजार, फिर जवाब आया, फिर अगले जवाब का इंतजार, और धीरे धीरे ये लेटर्स सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं रहे, ये दोनों की जिंदगी का हिस्सा बन गए। 1967 में दोनों की शादी हो गई, लेकिन मोहब्बत की वो चिट्ठियाँ बंद नहीं हुई, क्योंकि कुछ रिश्तों में बात करना जरूरत नहीं होता, एक दूसरे की जिंदगी में बने रहना जरूरी होता है। तो आज की रात हम इसी छोटी सी मगर बहुत गहरी सी मोहब्बत की कहानी सुनेंगे रेट्रो इश्क पर। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगली कड़ी में मिलते हैं उन चिट्ठियों के साथ जिन्होंने दो लोगों के बीच की दूरी को छोटा कर दिया। आप बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर।

0: छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

स्वागत है उस मोहब्बत की कहानी में जहां आई मिस यू लिखने के लिए कोई टाइपिंग बॉक्स नहीं था, पूरा एक कागज हुआ करता था। धीरू और कुसुम की शादी हो चुकी थी, लेकिन उनकी लव स्टोरी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शायद शादी के बाद भी चलता रहा। धीरू काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करते थे और जब दूरी बढ़ती थी तो एक चिट्ठी दोनों के बीच का ब्रिज बन जाती थी। धीरू बताते हैं कि जब कुसुम की चिट्ठी आती थी तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो उनके सामने बैठकर बात

कर रही हूँ। सोचिए आज हमारे पास किसी को याद करने के लिए बस एक सेकंड लगता है, एक मैसेज, एक कॉल, एक वीडियो कॉल, लेकिन उस दौर में किसी की आवाज सुनने से पहले शायद कई दिन इंतजार करना पड़ता था और फिर भी लोग रिश्ते निभाते थे। कुसुम चिट्ठियां भेजती, धीरू उन्हें पाने का इंतजार करते, कभी उन्हें लेने के लिए मुंबई तक जाना पड़ता। आज हम कहते हैं रिप्लाई नहीं किया, मतलब इंटरेस्ट नहीं है। उस दौर में रिप्लाई आने में दिन लग जाते थे और फिर भी प्यार कम नहीं था। शायद फर्क टेक्नोलॉजी में नहीं था, फर्क पेशेंस में था। उन दोनों ने 58 साल साथ बिताए और धीरू के पास आज भी उन दोनों के बीच के एक्सचेंज्ड 1000 से ज्यादा हैंड रिटन लेटर्स हैं। कुछ लोग मेमोरीज को फोटोग्राफ्स में रखते हैं। उन्होंने अपनी मोहब्बत को कागज पर संभाल कर रखा और अब इस खूबसूरत एहसास के साथ एक खूबसूरत गाना हो जाए। स्टे ट्यून्ड रेडियो महारानी 89.6 FM पर। रेट्रो इश्क में कहानी अभी बाकी है।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेस होती है जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने की बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो ज़रूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर कॉलिंग।

मैं कभी कभी सोचती हूँ, अगर किसी रिश्ते की असली कीमत जाननी हो तो उसके ग्रैंड मोमेंट्स मत देखिए, उसकी छोटी छोटी आदतें देखिए। कौन किसकी चिट्ठी का इंतजार करता था, कौन किसकी पसंद याद रखता था, कौन दूर होकर भी दूसरों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाए रखता था। धीरू और कुसुम की कहानी में रोमांस कुछ ऐसा ही था। उनकी मोहब्बत कोई एक बहुत बड़ी घटना नहीं थी, वो सैकड़ों हजारों बातों से बनी थी। एक लेटर में शायद दिन भर का हाल था, कहीं कोई छोटी शिकायत, कहीं कोई याद, और शायद कहीं बस इतना ही, आज तुम्हारी बहुत याद आई। और यही तो प्यार है ना, हर बार आई लव यू बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी बस ये पूछ लेना खाना खा लिया, दूर रहकर भी दूसरों की जिंदगी में मौजूद रहना। और सबसे खूबसूरत बात कि ये शादी के बाद भी उन्होंने लेटर्स लिखना छोड़ा नहीं था। 58 साल साथ रहने के बाद कुसुम चली गई, लेकिन उनकी आवाज़ उन कागजों में रह गई। आज धीरू उन लेटर्स को अपने पास संभाल कर रखते हैं, क्योंकि कुछ चीजें पुरानी नहीं होती, स्याही फीकी पड़ सकती है, कागज पीला हो सकता है, लेकिन जिस इंसान ने वो शब्द लिखे थे उसकी याद कभी पुरानी नहीं होती। और शायद इसी को कहते हैं मोहब्बत का बचे रह जाना। और अब कुछ देर के लिए इन शब्दों को खामोश करते हैं और म्यूजिक को बोलने देते हैं। आप जुड़े रहिए मेरे साथ इश्क बाजिया में।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को वो पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

तो ये थी आज की रेट्रो इश्क की कहानी, एक ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई क्लाइमेक्स नहीं था, बस दो लोग थे, दो शहर थे, कुछ दूरियां थी, उन दूरियों के बीच आती जाती चिट्ठियां थी धीरू और कुसुम। रेट्रो इश्क में कहानी थी धीरू और कुसुम की। आज कुसुम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन धीरू के पास उनकी लिखी हुई पूरी एक दुनिया है, हजार से ज्यादा लेटर्स की दुनिया, और शायद यही बात इस कहानी को इतना ज्यादा खूबसूरत बनाती है। हम अक्सर कहते हैं काश वो वक्त वापस आ जाए, लेकिन वक्त वापस नहीं आता। हाँ, उसकी कुछ निशानियां रह जाती हैं किसी पुरानी तस्वीर में, और शायद प्यार की सबसे खूबसूरत डेफिनेशन यही है, इंसान चला जाए लेकिन उसकी मौजूदगी आपकी जिंदगी में पूरी तरह से न जाए। किसी पुराने कागज को खोलो तो उसकी लिखावट में उसकी आवाज सुनाई दे, कोई पुराना गाना बजे तो वो इंसान अचानक आपके पास बैठा हुआ लगे, यही है रेट्रो इश्क, पुराने वक्त की कहानी लेकिन एहसास बिल्कुल आज का। मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब इस कहानी को एक खूबसूरत धुन के साथ विदा करते हैं, कुछ कहानियां सुनाई नहीं जाती, संभाल कर रखी जाती है, और ये कहानी उन्हीं में से एक थी। स्टे ट्यून्ड, अगली

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

वेलकम बैक, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। और आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे वर्ड की जो सुनने में बड़ा मॉडर्न सा लगता है, लेकिन इसने बहुत सारे दिल जो है वो कंफ्यूज किए हैं। नाम है सिचुएशनशिप। आपने सुना भी होगा, वैसे बहुत लोग जानते हैं सिचुएशनशिप के बारे में। अब सवाल ये है, आखिर सिचुएशनशिप होती ही क्यों है? क्योंकि क्या होती है ये हमें मालूम है, लेकिन होती क्यों है? देखिए, कई बार वजह बहुत बुरी नहीं होती है। कभी किसी को कमिटमेंट का डर होता है, कभी कोई अपने करियर पर फोकस कर रहा होता है, कभी किसी का दिल पहले ही टूट चुका होता है, और कभी लोग बस किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना? बहुत अजीब सी है ना ये सिचुएशनशिप। यानी भाई, आपको बेनिफिट्स पूरे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बाद में कर लेंगे। और यहीं से कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। रोज बात होगी, केयर भी होगी, जेलसी भी होगी, वीकेंड्स प्लान भी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है, बस वहीं साइलेंस आ जाता है। और याद रखिए, क्लैरिटी को डिले करना भी कभी कभी एक आंसर होता है। इसीलिए अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है, तो सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कंसिस्टेंटली कर क्या रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में बटरफ्लाईज हो सकती है, लेकिन रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और थोड़ी देर में मैं बात करूंगी, अगर आप सिचुएशनशिप में हैं तो उसे पहचानना और हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप की। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे वाला केस भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रिश्ता लेबल मांगे ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। अगर आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं है, थोड़ा सोचिए। अगर हर वीकेंड प्लान तो आपके साथ है, लेकिन फ्यूचर का एक भी प्लान आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। और अगर आप दोनों कपल वाली सारी चीजें कर रहे हैं, बस हम रिलेशनशिप में हैं ये कहने से एलर्जी है, तो बॉस रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही कह रहा है। वैसे आजकल लोग आई नीड स्पेस इतनी बार बोलते हैं कि लगता है डायरेक्ट नासा से रिक्रूटमेंट चल रही है। स्पेस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन किसी को इतना भी स्पेस मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी से ही आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाए। और एक बात याद रखिए, जहाँ आपको अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करनी पड़े, वहाँ रुककर सिर्फ उम्मीद बढ़ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ते वो होते हैं जहाँ बातें गैस नहीं समझी जाती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये चल रहा है रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा, या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को, या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद डॉक्टर।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है, और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपके इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब रखा।

0: पता है ना इस वाले के?
1: किसे नहीं पता,

सिनेमा का कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर वालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहाँ सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का ये नया अवतार ऑडियंस को कितना सरप्राइज करने वाला है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।

बदला है, रिश्ते बदले हैं और उनके साथ बदल गई है उनकी डिक्शनरी भी। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सेगमेंट का, रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ ना किसी को पास करना है ना किसी को फेल, यहाँ हम सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कि आखिर आज के रिश्तों में चल क्या रहा है। क्योंकि आजकल रिलेशनशिप से ज्यादा जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो ट्रेंडिंग है, कभी होस्टिंग, कभी ब्रेड क्रमिंग, कभी लव बॉम्बिंग और कभी एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर लगता है यार ये क्या है एग्जैक्टली, लेकिन असल में होता कुछ और है। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अ सिचुएशनशिप। और आपने सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ हाँ बोल दिया हो तो टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आप सिर्फ इस वर्ड का मतलब ही नहीं बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड के नए पन्ने और देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशनशिप आखिर है क्या। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

रहे हैं कृष्ण वाणी। काम क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्मस्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: से आज तक कभी किसी का मंगल नहीं हुआ है। यह आपके समस्त गुणों का नाश कर देता है।
1: सत्य है ना, जैसे सूर्य प्रकाशित हुआ तो अंधकार हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, ऐसे आप सत्य को धारण केवल कीजिए, फिर आप देखिए प्रकाश में हो जाए।
0: इसलिए क्रोध की संगति से दूर रहें। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल गुरु प्रेमानंद जी के विचार।
2: एक ही उपाय है, गुरुदेव की शरण। जैसे हित हरिवंश विचारी के मनुज देह गुरु चरण गए, सकहित तो सब परपंच तजी कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, विचार करके देख लो सार क्या है। जितना तुम कुछ जो भी कर रहे हो इसमें सार क्या है? यदि भजन नहीं हो रहा तो आप निशान है, व्यर्थ है तुम्हारा जीवन। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान त्रिप्यामी। वो मरा हुआ डोल रहा है, मुर्दा है। आप कहोगे किसी जीवित को मुर्दा कैसे कह सकते हो? जो विषयों के अधीन है, भोगों के अधीन है, मलिनता को लिए हुए विचर रहा है, वो मरा हुआ ही तो है। जीवित तो तभी माना जाए जब वो निर्विषय हो जाए, सच्चिदानंद भगवान के रस में डूब जाए। तो कैसे इससे हम आगे बढ़े? माया प्रपंच से कैसे आगे बढ़े? हमारा मन तो बड़ा मलिन हो गया, और भजन साधन निर्मल मन से होता है। तो बोले गुरुदेव की शरण लो, विचार करो, कोई और उपाय नहीं। जैसी हरिवंश विचार कहे मनुज देह गुरु चरण गए। ये मनुज देह की सार्थकता गुरु चरणों में क्या? बहुत दुर्लभ है सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होना। आप लोगों को अनुभव भी नहीं आ रहा इसलिए कि आपके अंदर भूख नहीं है प्रियालाल की। अगर भूख होती ना तो फिर आपको जो स्वाद मिलता फिर आप कह देते पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवाय। उपदेश दे देना, मंत्र दे देना कृपा का लक्षण है। आपके ऊपर कृपा है इसलिए मिल गई। लेकिन हाथ पकड़ के श्री जी के हाथ में दे देना बड़ा दुर्लभ विषय है। ये एक सदगुरु भगवान ही ऐसी कृपा करते हैं कि अपने जैसे अधमों को उपदेश, मंत्र, नाम और शासन और दुलार, इसके द्वारा हमारे मन को अधीन करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देते हैं। इस मल को केवल सदगुरु रूपी रीठा ही साफ कर सकता है, दूसरा नहीं। हरि आपको डांटेंगे नहीं, हरि तो

तदस्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुम करोगे भोगोगे। लेकिन सदगुरु ऐसा नहीं, करो तुम भोगेंगे हम, चिंता मत करो, ये बात कहीं नहीं मिलेगी। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, मां प्रभु हरिवंश गुरु है, गुरु हरिवंश क्या कह रहे, तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, है शरणागत तू चिंता मत कर, चिंतन कर मेरी प्रियाजू का, अगर भूल चूक से अपराध बन जाएंगे मैं उसे भोगूंगा, तुम चलो श्री जी के पास। ये त्रिभुवन में ऐसा दयालु कोई नहीं गुरुदेव जैसा, वो हमारे क्षुद्र दोषों को ना देख करके अपनी कृपा से हमें वो महान रस देते हैं जो किसी साधना से नहीं मिलता है। अगर गुरु सानिध्य मिल गया है तो प्रमाद मत करना कभी, बहुत बढ़िया अवसर मिला है निकल जाओ, आपको विशेष साधना नहीं करनी पड़ेगी। नौका में बैठे हो, हिलो डुलो मत, उसका बैलेंस मत बिगाड़ो। यद्यपि डूबेगी नहीं, अविनाशी नौका है, पर तुम भयभीत हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। नाविक बड़ा खिलाड़ी है, उसको कोई परेशानी होने वाली नहीं, नाव सच्चिदानंद में वो डूबेगी नहीं, तुम परेशान हो जाओगे। नाव में बैठे बैठे तुम घबरा जाओगे, तुम भयभीत हो जाओगे, तुम अशांत हो जाओगे। अपने हृदय में एक बात ठान लो, देखो जीवन तो लोग तुच्छ चीजों में दे देते हैं, पता नहीं कैसा तुम्हारा व्यापार है, कैसा तुम्हारा बुद्धि का विचार है, एक साधारण संबंधों में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो आप, पति पुत्र परिवार नाना प्रकार के, एक एक में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो। प्रियालाल की शरण में आने पे तुम्हें डर क्यों लग रहा है, वो तो निर्भय है, इनकी शरणागति का स्वरूप ही है निर्भय, निश्चिंत, निशोक और सनातन हमारे अंशी हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं। बहुतों को प्यार करके जीवन का जीवन दे दिया, एक बार इनका पाणिग्रहण स्वीकार करो। देखो आप लोग पाणिग्रहण स्वीकार करते हैं, कैसा भी हो जीवन निर्वाह करते हैं, इनके तो वेद यश गाते गाते थकते नहीं हैं, ये तो अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल है, इनके हाथ में हाथ देने में तुम्हें क्या परेशानी हो रही है। चाहे जितना भटक लो अनंत जन्मों में, विश्राम तो यही मिलेगा आके, काहे को लंबी यात्रा करोगे, इसी जन्म में विश्राम गृह में पहुंचो, श्री वृंदावन विश्राम, महाप्रभु कह रहे हैं विश्राम स्थल कहां है, श्री राधा जुग चरण निवास, प्यारी जू के गोरे चरणारविंद के समीप। जब हम विचारधाराएं देखते हैं तब लगता है तुम समर्पित क्या हो, शरणागत क्या हो, हम श्री जी के आश्रित होने के लिए व्याकुल हैं, श्री जी से मिलने के लिए व्याकुल हैं, ये तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। अपने लोग तो विषय भोग के लिए व्याकुल हैं, कहलाते हैं श्री जी के और चाहते हैं विषय सुख, चाहते हैं संसार का अनुकूल भाव, कैसी विपरीतता है, कैसी विपरीतता, बड़ा विचित्र माया का आकर्षण है। अब इस विचित्रता में भारी विचित्रता गुरुदेव की कृपा है, बस ऐसी दुरंत माया को परास्त करके आपको निकाल के श्री जी से मिला दे, वो एक ही शब्द है केवल, वाहे गुरु बोलो, सदगुरु बोलो, गुरु बोलो, गुरुदेव जय गुरुदेव कुछ भी बोलो, वो एक ही है जो आपको बचा सकता है, दूसरा नहीं। बड़े कृपाल, कृपा की मूर्ति, कृपा रूप जो वप धरो, साक्षात प्रिया प्रीतम की कृपा मूर्तिमान देह धारण करके हमें उस महासुख में निमग्न करने के लिए घसीट रहे। अपने लोग